न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है। शक संबत 1948 के श्रवण मास की तिथि 16, तदनुसार 7 अगस्त 2026 ईस्वी। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:49 होने ही वाले हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन, आलेख एवं वाचन सुरेंद्र झा का।
1: मनुष्य आ पशु में एकटा प्रमुख अंतर ई होई छे जे मनुष्य अनका सुख सा सुखी होई छे आ पशु मात्र अपने सुख के सुख बुझे छे। अनका सुख दुख सा वो सर्वथा निर्लिप्त रहे छे। पर दुख कातरता मनुष्यक एहन गुण थिक जे ओकरा आन सब जीव में श्रेष्ठता प्रदान करे छे। अनका सुखक लेल अपन व्यक्तिगत हानिक चिंता नहीं केनिहार मनुष्य मनुष्य कहबाक अधिकारी अछि। अपन भारत भूमि में एहन अगणित मनुष्य रत्न भेलाह अछि जे अनका लेल अपन स्वत्व त्याग देलनि। कने गंगा पुत्र देव व्रतक त्यागक स्मरण करू। पिता राजा शांतनु धीवर कन्या मत्स्य गंधा पर आसक्त रहती। हुनक उत्कट इच्छा छलनि वही अप्रतिम सुंदरी सा विवाह करबाक। मुदा देवव्रतक ममता बाधक होइन। सोचथि मत्स्य गंधाक संतान उत्तराधिकार प्राप्त करबा में देवव्रत के बाधा देतन। जानि बुझि कऽ देवव्रत सन आज्ञाकारी विनयी आ शीलवान पुत्रक भविष्य के संघर्षपूर्ण बनायब उचित नहीं। राजा एही द्वंद्व में खिन्न विषन्न भेल जाय थे। देवव्रत के पिताक मनोव्यथा ज्ञात भेलन। ओ मत्स्य गंधाक पिता लग गेला आ बजला, हमर पिता महाराज शांतनु अहाँक कन्या मत्स्य गंधा सँ विवाह करय चाहे छथि, अहाँक अनुमति चाही। उत्तर भेटलनि, अपने लज्जित करै छी, शांतनु छथि नृपति, हम छी साधारण धीवर, ई संबंध कोना संभव। देवव्रत बजला, अहाँक पुत्री राज महिषी बनती, संबंधक उपरांत विभेद स्वतः समाप्त भ जायत, अहाँ आ हमर पिता समतुल्य भ जायत। अहीक दौहित्र राज्यक उत्तराधिकारी हेताह, हम प्रण करै छी। धीवर बाजल, मानलौ अहाँ निष्प्रिय छी, राज नहि लेब, मुदा अहाँक संतान तँ उत्तराधिकारक लेल दावा कऽ सकै छी। देवव्रत बजला, हम विवाह नहीं करब, अहाँक दौहित्र निष्कंटक राज करता। वही दिन सँ देवव्रत भीष्म कहबऽ लगला, आजीवन अविवाहित रह मत्स्य गंधाक संतानक समुन्नतिक लेल प्रयासरत रहला। त्याग मूर्ति भीष्मक चरित्र एखनहु मानव जातिक लेल प्रेरणाक अजस्र स्रोत अछि।

0: प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम कृषि चर्चा। कृषि चर्चा में आज का विषय है सम्मिश्री कंद की आधुनिक खेती। लेखन एवं वाचन देव नारायण यादव का।
1: नमस्कार, आज कृषि चर्चा के संग हम छी देवनारायण यादव। किसान श्रोता लोकन, आज कृषि चर्चा में चर्चा कर रहल छी मिश्रित कंद की आधुनिक खेती पर। किसान श्रोता लोकन, मिश्रित कंद जकरा गाम घर में केसौर सेहो कहल जात अछि, एकर खेती करबा से पहिने हमरा लोकन को माटक चुनाव कर लेबाक चाही। जब माटक गप करी ता मिश्रित कंद के खेती लेल बलुआही दोमट माटि को उपयुक्त मानल गेल अछि। संग संग खेतक ढलवा आ जल निकासी वाला हेबाक चाही। किसान श्रोता लोकन, मिश्री कंद के खेती करबा से पहिने हमरा लोकन को प्रभेदक चुनाव सेहो कर लेबाक चाही। एकर प्रभेद अछि राजेंद्र मिश्री कंद एक, राजेंद्र मिश्री कंद दू अछि। उपज क्षमता 300 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अछि। रोपनी का समय थिक जुलाई से सितंबर धरि। किसान श्रोता लोकन, बिया दर का सेहो हमरा लोकन को ध्यान रखबाक चाही। ओहि लेल जुलाई माह में 15 से 20 किलोग्राम, अगस्त माह में 30 से 40 किलोग्राम आ सितंबर माह में 50 से 55 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर से व्यवहार करबाक चाही। बाग करत काल दूरी कतार से कतार आ पौध से पौधक दूरी जुलाई मास में 30x30 आ अगस्त मास में 30x15 सेंटीमीटर आ सितंबर मास में 15x15 सेंटीमीटर रखबाक चाही। खाद उर्वरक के गप करी त कंपोस्ट 200 क्विंटल, नेत्रजन 80 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम, पोटास 80 किलोग्राम। बाग काल नेत्रजनक आधा मात्रा, फास्फोरस आ पोटासक संपूर्ण मात्रा दऽ देबाक चाही। शेष नेत्रजनक आधा मात्रा बाग के 40 से 45 दिन बाद दऽ देबाक चाही। निकाय गोराई के गप करी त रोपनीक 30 दिन बाद खरपतवार भेला पर दोसर कमठान 50 से 60 दिनक बाद करबाक चाही। कंद वाला फसिल में फूलक छटाई करबाक चाही। जो कली निकले ता ओकरा तोड़ देबाक चाही। ओकर बाद 240D 50 PPPM बा 0.004% घोल का छिड़काव फूल पर कृषि वैज्ञानिक सलाह अनुसार करबाक चाही। पटौनी के गप करी तो माटि में नमी का कमी भेला नवंबर से जनवरी में नमी के देखत 1 से 2 पटौनी करबाक चाही। संग संग खेत में पानी के जमाव नहीं रखबाक चाही। किसान श्रोता लोकन, फसल सुरक्षा लेल हमरा लोकन के सेहो ध्यान रखबाक चाही। ओहि लेल पत्र लांछन रोग से बचाव लेल इंडोफिल M45 0.25% घोल बना कर छिड़काव करबाक चाही। छीमी छिद्रक कीट से बचाव लेल डाइमोथेएट 30 EC दवा का छिड़काव 1 मिली

0: प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 50% पुष्प आ फली वाला पर करबाक चाही। किसान श्रोता लोकन मिश्री कंद के खेती के संग फसल चक्र सेहो अपना सकै छी। ओहि लेल मक्का मिश्री कंद प्याज, मक्का मिश्री कंद गेहूँ, मूंग। किसान श्रोता लोकन एकरे संग कृषि चर्चा संपन्न भेल। आप देवनान यादव के आज्ञा देल जाओ। नमस्कार।
1: कृषि चर्चा अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दरभंगा से।

श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हिंदी समाचार सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत के स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था।
1: 7 अगस्त 1905 को देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आपने जो भारत की नींव डाली गई थी, अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सब ने फ्रेंडशिप डे मनाया, मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
0: श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों और अपने हाथों से कपड़े बनाने वाले कारीगरों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया।
1: हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार, जो अपने हाथों से अपने छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं, और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना।
0: 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करना होगा। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में 2 प्रकाशन अर्थ रूट और मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बेहारा चरियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। देश ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना के प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में 2रे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए

0: ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर और भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हो। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है। इस कदम का स्वागत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने जैसा बताया। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। राजधानी रांची में 6 प्रदर्शनकारियों की भूख हड़ताल जारी है। छात्र नेताओं का दावा है कि उन्हें कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से बातचीत का कोई नियंत्रण नहीं मिला है। विरोध प्रदर्शन का असर कल झारखंड विधानसभा में भी देखा गया, जहां विपक्षी विधायकों ने मानसून सत्र के पहले दिन ही नारेबाजी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारियों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा, जबकि अश्मिता चालिहा का सामना जापान की हिना केची से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर, यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में। आज का विषय है मोतियाबिंद, कारण और लक्षण। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रमण कुमार वर्मा।

0: स्वास्थ्य चर्चा के इस अंक में हम हाजिर हैं डॉक्टर रमन कुमार वर्मा जी के साथ, जो प्रख्यात नेत्र रोग चिकित्सक हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि अगर किसी को मोतियाबिंद हो जाए तो उसका उपचार वो कैसे करे। डॉक्टर साहब,
1: देखा जाए मोतियाबिंद का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दवा से संभव नहीं हो पाया है, हालांकि दावे किए जाते हैं लेकिन उसका कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। मोतियाबिंद जब मरीज को होने लगे या हो गया है और मरीज को अपना काम करने में कठिनाई हो और चश्मे से आँखों की रोशनी दृष्टि उतनी न बढ़े जिससे कि वो देख पाए, तो उसे नेत्र विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए और ऐसी स्थिति में ऑपरेशन ही उपचार रह जाता है, चाहे मोतियाबिंद कच्चा हो या पका हो। ये पुराना कंसेप्ट है कि जब मोतियाबिंद पूरी तरह पक जाए तभी उसका ऑपरेशन कराना चाहिए।
0: यानी कि चश्मा आपके काम लायक नहीं रह गया, कितना भी पावर बढ़ा लो आपकी दृष्टि अगर नहीं आ रही है, आप चीजों को सही ढंग से नहीं देख रहे हो, तो आप तय मानो कि आपका ऑपरेशन कराना ही एकमात्र विकल्प आपके पास बचता है मोतियाबिंद का।
1: जी हाँ, पकने तक इंतजार नहीं करना चाहिए और अब तो यह ऑपरेशन बहुत ही सुरक्षित हो गया है।
0: क्या इसमें मौसम का भी कुछ असर होता है? कुछ लोग कहते हैं जाड़े में ऑपरेशन कराना चाहिए या गर्मी में नहीं कराना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या?
1: नहीं, वैसी बात नहीं है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन 12 महीने हो सकता है, लेकिन हाँ, चूंकि मरीजों को हिदायत दी जाती है सभी मरीजों को, मोतियाबिंद के मरीजों को, कि ऑपरेशन के बाद 10-15 दिन सर से न नहाए, इसलिए कुछ मरीज कठिनाई अनुभव करते हैं और उनकी मंशा होती है कि जाड़े में ही ऑपरेशन कराएं, लेकिन ये कोई मोतियाबिंद के ऑपरेशन को टालने का कारण नहीं है कि सिर्फ जाड़े में ही इसका ऑपरेशन कराया जा सके।
0: आजकल लेंस वगैरह प्रत्यारोप

0: किया जाता है, उससे क्या आंखों को नई दृष्टि मिल जाती है?
1: हाँ बिल्कुल, मोतियाबिंद के ऑपरेशन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है विगत 2-3 दशकों से, और अब लेंस प्रत्यारोपण के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन होता है और इसके साथ ही एक नए विजुअल वर्ल्ड की शुरुआत हो जाती है मरीज के लिए। पहले जो ऑपरेशन होता था उसमें मरीज को मोटा चश्मा लगाना पड़ता था, बाएं दाएं देखने के लिए उसे सर घुमाना पड़ता था, हर चीज़ें बड़ी नज़र आती थी, लेकिन अब जो ऑपरेशन हो रहा है लेंस प्रत्यारोपण के साथ उसमें ऐसी बात नहीं रह गई है। लेंस प्रत्यारोपण में हमारे देश में, हमारे राज्य में लगभग सभी जिला और अनुमंडल स्तर पर विशेषज्ञों द्वारा यह ऑपरेशन बहुत ही कुशलता से और सफलता के साथ हो रहा है, और उसमें भी एक नई पद्धति आ गई है जिसके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए, वो है फेको इमल्सिफिकेशन पद्धति। ये नवीनतम पद्धति है लेंस प्रत्यारोपण का।
0: इसमें क्या होता है?
1: इसमें मोतियाबिंद ऑपरेशन में चीरा जो लगाते हैं इंसिजन, वो बहुत छोटा लगाने की जरूरत होती है, 2 या 3 मिलीमीटर, और ऑपरेशन के बाद टांके की जरूरत नहीं पड़ती। एक बहुत ही पतला 1 मिलीमीटर का टिटेनियम नीडल होता है जिसमें प्रति सेकंड 40,000 कंपन पैदा होते हैं, इसके द्वारा ही यह ऑपरेशन संपन्न किया जाता है। अंदर से कॉर्टिकल मैटर न्यूक्लियस निकाल देने के बाद फोल्डेबल लेंस डाल देते हैं, मरीज को 2 घंटे के बाद घर भेज दिया जाता है, मरीज को कोई कठिनाई नहीं होती है, इसमें समय भी पहले के मुकाबले कम लगता है और रोगी का पहला रिहैबिलिटेशन बहुत जल्दी हो जाता है।
0: और कुछ क्या ऑपरेशन के पहले या बाद में कोई सावधानी बरतनी पड़ती है क्या?
1: जी हाँ, ऑपरेशन के बाद हम लोग आमतौर पे रोगियों को हिदायत देते हैं कि उन्हें काला चश्मा पहनना है और जो दवाई विशेषज्ञ उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं उन्हें आँख में अवश्य डालना चाहिए, आँखों को कभी नहीं मलना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए कि आँखों में चोट न लगे। ऑपरेशन किए गए आँख की तरफ करवट लेकर 2 या 3 सप्ताह तक सोने से हम लोग मना करते हैं और भारी वजन उठाने से भी हम लोग मरीज को रोकते हैं।
0: तो अभी आपने डॉक्टर आर के वर्मा से सुना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन अगर आप कराते हैं तो क्या क्या सावधानी रखें, और इस ऑपरेशन की जो नवीनतम तकनीक है वो भी हमारे पास अब उपलब्ध है। सबसे अच्छी बात यह है कि अनुमंडल स्तर तक इसके विशेषज्ञ जो कृत्रिम लेंस है उसका प्रत्यारोपण करते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मोतियाबिंद कारण और लक्षण, ये था स्वास्थ्य चर्चा का विषय, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया। आनंद लीजिए भक्ति संगीत का। तो सुनते हैं कार्यक्रम वंदना, सबसे पहले ये देशगान।

सावन का महीना, ऐसे में चहुं ओर शिव की महिमा का गुणगान किया जा रहा है। शिव भक्ति में सब डूबे हुए हैं। यदि अनुराधा प्रोडवाल की आवाज हो और शिव भजन हो तो क्या कहने हैं। आइए सुनते हैं अनुराधा प्रोडवाल की आवाज में ये सुंदर सा भजन।

अभी आप सुन रहे थे शर्मा बंधु की आवाज़ों में शिव भजन। आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में ये सुंदर सा भजन।

0: अनुराधा प्रोडवाल के इसी भजन के साथ भक्ति संगीत का हमारा ये कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। प्रस्तुत है रामचरित मानस गान, स्वर सुरेश वाडेकर और कविता कृष्णमूर्ति की।
1: एपिसोड नंबर 52।

माया नगरी के राजा शीलनिधि की कन्या अनिंद्य सुंदरी विश्वमोहिनी के रूप पर आसक्त होकर देवर्षि नारद के मन में उसे प्राप्त करने का घोर मोह उत्पन्न हो गया था। अपनी कार्य सिद्धि के लिए उन्होंने श्रीहरि का अनुपम रूप मांगा और जो रूप प्राप्त हुआ उसे लेकर बड़े अभिमान और विश्वास के साथ स्वयंवर में जा विराजे। वहां शिवजी के दो मनमौजी गण भी थे जिन्हें सब भेद मालूम था। ब्राह्मण का रूप धारण करके वे दोनों भी नारद जी की पंक्ति में बैठ गए। मुनिवर को अपने कल्पित रूप पर जितना गर्व हो रहा था शिवजी के गण उतना ही प्रसन्न होकर हंस रहे थे। देवर्षि नारद का बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर राजकुमारी विश्वमोहिनी के अतिरिक्त और किसी ने नहीं देखा। भय के साथ उसे क्रोध भी हो आया। हाथों में जयमाल लिए उधर से दृष्टि फेर कर वो सभा में घूमने लगी। नारद जी की ओर फिर उसने भूलकर भी नहीं देखा। ये सारी माया रचाने वाले भगवान भी राजा के वेश में वहां उपस्थित थे। विश्वमोहिनी ने जाकर जयमाल उनके गले में डाल दी। नारद जी की घोर निराशा और पराजय देखकर शिव जी के गणों ने कहा, जाकर दर्पण में अपना रूप तो देखिए। मुनि ने जल में झांककर जो अपना बंदर सा रूप देखा तो उनके क्रोध की सीमा न रही और उपहास करने वाले शिवजी के गणों को उन्होंने शाप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने मेरी हंसी उड़ाई उसका फल भोगो, फिर किसी मुनि की हंसी न उड़ाना।

रामचरितमानस गान अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दरभंगा से। अब जानकारी प्राप्त कीजिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। 9:50 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। दिन के 11 बजे आज आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण समय होगा 11:30। दिन के 12 बजे आप सुनते हैं नए फिल्मी गाने। देशभक्ति हम आपको सुनवाएंगे 1:10 पर।

फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश आज आप सुनेंगे 1:15 पर। 2:10 पर आप सुनते हैं रोजगार सूचना। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे 2:30 पर।

अपनी दूसरी सभा के साथ हम उपस्थित होंगे शाम 5 बजे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम लेकर युववाणी। नए फिल्मी गीतों का आनंद एक बार आप पुनः ले सकेंगे 5:40 पर। विद्यापति गीत हम आपको सुनवाएंगे 6:15 पर। आप सुनेंगे मैथिली संवाद हमारे पटना केंद्र से गांव घर। यह कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। किसान श्रोताओं का कार्यक्रम खेती गृहस्थी का प्रसारण समय होगा शाम 7 बजे। संसद समीक्षा आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार का प्रसारण समय होगा रात्रि 8:15।

9:30 पर आप सुनेंगे साहित्य की कार्यक्रम जो होगा साहित्य पर आधारित। सूत्रधार होंगे अमलनाथ ठाकुर, प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। तो ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे समाचार, पहले संस्कृत में फिर हिंदी में, हमारे दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: प्रश्नपत्रे प्रकाशितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं राज्यस्य जनजातीय समुदायानां दीर्घकालस्य अपेक्षां पूरयन् निर्वाचनक्षेत्रस्य पुनः समायोजनस्य आरक्षणस्य च प्रक्रियां समर्थयन् ह्यः अधिनियमः प्रवृत्तः अभवत्। भारत ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य मध्यप्रदेशे, राजस्थाने, केरलराज्ये, माहे प्रदेशे, ओडिशाराज्ये, तटीय दक्षिणान्तर्गत कर्णाटके च मेघावृष्ट्या प्रचण्ड बातेन विद्युत् प्रभावेन च सह प्रचण्डतः अतिप्रचण्डायाः वर्षायाः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। अद्य अण्डमान निकोबार द्वीपेषु, झारखण्ड प्रदेशे, लक्षद्वीपे, पश्चिमबंग प्रदेशे, मध्यप्रदेशे, तमिलनाडु प्रदेशे, पुदुच्चेरी प्रदेशे, कारैकल प्रदेशे, उत्तराखण्ड प्रदेशे च एतादृशी स्थितिः भविष्यति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य तन्वी शर्मा अद्य असन नगरे कोरिया मास्टर्स क्रीडायाः महिला सिंगल्स इत्यस्यां प्राग उपान्तचक्रीय क्रीडायां स्वस्याः देशवासिन्या रक्षिता रामराज इत्यनया सह क्रीडति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत के स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था और समाज के हर वर्ग के लोगों ने एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। उन्होंने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पादन खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
2: मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
1: 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करना होगा। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में 2 प्रकाशन अर्थ रूट और मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। ये अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है। इस कदम का स्वागत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने जैसा बताया। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। राजधानी रांची में 6 प्रदर्शनकारियों की भूख हड़ताल जारी है। छात्र नेताओं का दावा है कि उन्हें कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से बातचीत का कोई निमंत्रण नहीं मिला है। विरोध प्रदर्शन का असर कल झारखंड विधानसभा में भी देखा गया, जहां विपक्षी विधायकों ने मानसून सत्र के पहले दिन ही नारेबाजी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारियों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान

0: संस्थान तथा विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना के प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और पर्यटन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। ओवल ऑफिस में बोलते हुए ट्रंप ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निराशा व्यक्त की। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा, जबकि अश्मिता चालिया का सामना जापान की हिना अकेची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला।
1: नमस्कार श्रोता लोकन, आजुक नमस्कार मिथिला कांक में हम रंजीत और हमारे संग स्टूडियो में छथि नूतन हुकमर। नमस्कार।
0: नमस्कार रंजीत जी और श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: और जना कि श्रोता लोकन के बुझल छन कि कार्यक्रमक शुरुआत हम अपन करै छी सबसे पहले सुविचार से, तो आजुक सुविचार
0: जी, जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसा ही मंजिल मिलता है। स्वामी विवेकानंद।
1: निश्चित तौर पर नूतन देखू जे आचार्य स्वामी विवेकानंद के जे शब्दक बुनल जाल थिक ओ कतौ ने कतौ हमरा लोकनिक लेल प्रेरणा स्रोत। और जिंदगी में किछु बनल बनायल नहीं भेटै छै, आदमी के मेहनत कऽ कऽ बनबऽ पड़ै
0: छै।
1: ताहि लऽ कऽ कहै छै जे अगर कामयाबी हासिल करबाक अछि तऽ कामयाब होबऽ से पहले नाकामयाबी से नहि डराय, मेहनत करी। और आजुक नमस्कार मिथिला के अंक में एक डेग आगा और बढ़ै छी और जानकारी साझा करै छी आजुक दिनक इतिहास के बारे में, जे आजुक दिन की खास महत्व रखते छै हमरा राष्ट्र में, हमरा समाज में, हमर जे मिथिलांचल क्षेत्र के हमर सुन्दर सुन्दर श्रोता लोकन छथि तिनका नजर में आउ जानकारी साझा कऽ रहल छथि नूतन
0: जी। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में जाना जाता है
1: जी।
0: आज के इतिहास में 7 अगस्त 1905 को ही कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसने देश में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने का संदेश दिया था। 7 अगस्त की विशेषताएं हैं। 1942 में बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस कार्य समिति की ऐतिहासिक बैठक हुई, जिससे अगले दिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की रूपरेखा तैयार हुई। 1990 में बीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की, जिसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज ही के दिन 2019 में संसद में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निष्प्रभावी करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का विधेयक पारित हुआ था। जन की बात करें तो हरित क्रांति के जनक और प्रसिद्ध भारतीय कृषि वैज्ञानिक M.S. स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था।
1: तो इच्छा आज दिन के चाहे हमारे लोगों से श्रोता लोगों से जानकारी साझा करूं, चर्चा करूं।

0: आओर बहुत रास आजुक दिनक इतिहास छै जकरा अपन लोकन अध्ययनके माध्यमसँ सेहो पता कऽ सकै छी। आओर आजुक नमस्कार मिथिलाक अंकमे लोकनके आब समय भऽ रहल अछि जे सबसँ पहिले श्रोता लोकनिके हमरा लोकनि मैथिली सङ्गीत सुनबियनि, लेकिन हम श्रोता लोकनि अपनसँ कही जे आजुक मैथिली सङ्गीतके अंकमे हमरा लोकनि अपने लोकनिके लेल आकाशवाणी दरभंगा परिवारके तरफसँ हुनका नमस्कार मिथिला कार्यक्रममे प्रस्तुत कऽ रहल छी। ई महेश वाणी
1: जी बिल्कुल।

0: सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
1: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है, कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: तो रंजीत जी, अब हम लोग कार्यक्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और श्रोताओं को आपके द्वारा सुनवाते हैं हालचाल।
3: धन्यवाद, नमस्कार। बिहार में इस्पात, कपड़ा और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में 51,000 करोड़ रुपया सौ बेसी के निवेश कैल जाए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के उपस्थिति में गुरुवार का लोक सेवक आवास में आयोजित समारोह में उद्योग विभाग और विभिन्न औद्योगिक समूह में लगभग 51,600 करोड़ रुपया के निवेश के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया गया। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिहार के देश के प्रमुख स्टील हब के रूप में विकसित किया जाए। एक स्टील, टेक्सटाइल, क्लीन और परमाणु ऊर्जा, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा जैसे क्षेत्र में

नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन मैं करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं।

में गुरुवार का लोक सेवक आवास में आयोजित समारोह में उद्योग विभाग और विभिन्न औद्योगिक समूह में लगभग 51,600 करोड़ रुपया के निवेश के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया गया। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिहार के देश के प्रमुख स्टील हब के रूप में विकसित किया जाए, एकरा लेल स्टील, टेक्सटाइल, क्लीन और परमाणु ऊर्जा, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा जैसन क्षेत्र में निवेश के बढ़ावा देकर राज्य में रोजगार उत्पादन और आर्थिक गतिविधियां के विस्तार से समृद्ध किया जा रहा है। बिहार के प्रत्येक जिला में चल रहल नगर निगम समेत राज्य के सब नगर निकासी इकाई के पिछला 8 दिन से जारी सफाई कर्मी के हड़ताल गुरुवार के शाम समाप्त हो गए। नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा के संगे सफाई कर्मी के प्रतिनिधिमंडल के वार्ता के संगे हम हड़ताल समाप्ति के सहमति बनल। 3 सूत्री मांग के लगभग पूरा कला के बाद लिखित आश्वासन के बाद सफाई कर्मी हड़ताल वापस लेबाक लेल राजी भेला है। अब सरकारी विद्यालय सैनिक आधा दिन चलत, शिक्षा विभाग गुरुवार का एक अधिसूचना जारी कर दिलक है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक घोषणा कलन है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी बतौलन कि सरकारी विद्यालय सोम और शुक्र तक पूर्वत 9:30 बजे से लकर संध्या वेला के 4 बजे तक चलत, जखन कि शनि के दिन विद्यालय भोरे के 9:30 बजे से लकर दिन के 1 बजे तक संचालित है। डाक विभाग देश भर में डाक घर के कामकाज के समय समय पर समीक्षा के पूरा तरीका से डिजिटल बनाव के दिशा में एगो अहम फैसला लेलक है। एकरा लेल डाक विभाग संचार मंत्रालय के ओर से एगो केंद्रीयकृत ऑनलाइन रेव्यू पोर्टल तैयार कलक है, जे अंतिम चरण में चल रहा है और 1 सितंबर से एकरा पूरा देश में लागू करवा के लेल संसाधन तैयार कल जा रहा है। अई समीक्षा के तहत मुख्य रूप से आकलन कल गया कि कोनो डाकघर में कार्यरत कर्मचारी के संख्या ओतो के कुल काज के दबाव के हिसाब से उचित अछि कि नहीं पोर्टल पर एकर समीक्षा कल जाए और ओहिठमन समावेशी नीति के तहत सबके अधिसंचरण कल जाए। पहला चरण में तबादला के लिए 73,151 शिक्षक आवेदन करें हैं, इस सर प्लस शिक्षक शामिल छे। ई जानकारी शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी देने हैं। वो गुरुवार को विकास भवन से सभागार में संवाददाता सम्मेलन के संबोधित कर ई बात बजला। वो कहलन कि अई चरण में जे आवेदन नहीं कर सकला है वो अगला चरण में फिर से आवेदन कर सके छे। दूसर चरण में वो ऐच्छिक तबादला सेहो कर चाह सके छे। राज्य सरकार 31 अक्टूबर तक शिक्षक के तबादला से जुड़ल सब समस्या के समाधान करत। सरकार के लक्ष्य है कि अई अवधि के बाद शिक्षक पूरा ऊर्जा के संगे विद्यार्थी के पठन पाठन पर ध्यान केंद्रित कर सके छे। बिहार सरकार के तमाम कोशिश के बावजूद आम जनता के लिए जमीन से जुड़ल काज अखनो अंचल कार्यालय में तय समय पर नहीं भ पा रहा है। जमीन संबंधी 5 लाख से अधिक मामला में लंबित में और जैमे आधा से बेसी अधिक मामला निष्पादन तय सीमा के भीतर नहीं भ सकल है। सबसे बेसी मामला दाखिल खारिज से जुड़ल है। कुल 5,48,000 आवेदन में से अखन तक 3 लाख से बेसी आवेदन लंबित पड़ल है, जाहि में 1.25 लाख मामला निष्पादित नहीं भ सकते थे। जमीन से जुड़ल सब कार्य के निष्पादन अधिकतम 75 दिन के भीतर केनाइ सुनिश्चित कल गया छल। आवेदन ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए कुल 5,48,000 मामला में से लगभग 1.25लाख 2 लाख के निपटारा कल गया और 2 लाख मामला अखनो भीतर लंबित है। माँ श्यामा न्याय मंच के और श्रम माधेश्वर परिसर मंदिर परिसर में बाहरी गेट पर श्यामा मंदिर के और व्यवस्था के लिए धरना प्रदर्शन कल गए। विशेष कारण श्रद्धालु के भरल असुविधा और माँ श्यामा सेवा समिति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगावे उच्च स्तरीय जांच के मांग कल गए। संगे बिना निविदा के भवन निर्माण के लिए न्याय समिति के कोष से पैसा के निकासी के ऊपर सेहो सवाल उठाओल गए। एकरा अलावा श्यामा माई मंदिर परिसर में उत्कृष्ट रूप से स्वास्थ्य और स्वच्छ रख रखाव और श्रद्धालु के सुविधा सहित 14 सूत्री मांग रखल गए। कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे प्रियंका कुमारी बतौलन कि श्यामा माई न्याय समिति मनमाना रूप से कार्य कर मंदिर और वक्ता कहलन कि कतौ ने कतौ सरकार के द्वारा जे धार्मिक न्यास बोर्ड के अंतर्गत श्यामा माई मंदिर के अधिग्रहण कैल गेल है, ओहि अधिग्रहण से श्यामा माई मंदिर के मुक्त कैल जाए, कारण श्यामा माई मंदिर पहले से राजभंगा परिवार के शमशान स्थल रहल है।
दरभंगा के सदर SDO गौरव कुमार गुरुवार को अपना कार्यालय कक्ष में राशन कार्ड से संबंधित कार्य की समीक्षा कैलन। बैसार के दौरान वो नवका राशन कार्ड निर्माण कार्य

0: प्रगति के समीक्षा से वो कहें 100 BSO के अधिक सौ अधिक पात्र लाभुक के राशन कार्ड शीघ्र बनवाओ के निर्देश हो दिले हैं। ओ जन सहयोग शिविर सौ प्राप्त राशन कार्ड संबंधित आवेदन के समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करवा के लिए जोर से हो दिले हैं। बैसार में बताया गया कि पात्र लाभुक राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड में आवेदन कर सके छी। नबके राशन कार्ड के संगे संगे लोग राशन कार्ड में अपन नाम सेहो जुड़वा सकै छथि और मृत व्यक्ति के नाम सेहो कटाबो के लेल आवेदन एहि शिविर में दे सकै छथि। दरभंगा शहर के विश्व के सबसं तेसर शोध संस्थान में शामिल कमला घाट स्थित मिथिला संस्कृत शोध संस्थान के कायाकल्प के दिशा में तेजी से काज भ रहल अछि। करोड़ों रुपया की लागत से प्रस्तावित भव्य भवन निर्माण, बाउंड्री वॉल सुंदरजीकरण और अन्य विकास योजना के अंतिम रूप देवा के प्रक्रिया तेज कर देल गेल। दरभंगा ग्रामीण विधायक सह जगदीश जिला अध्यक्ष राजेश कुमार उर्फ ईश्वर मंडल गुरुवार को संस्थान परिसर में स्थल निरीक्षण कर निर्माण कार्य के प्रगति के जायजा से हो लेलन। संबंधित अधिकारी के कार्यव्यापी एजेंसी के गुणवत्ता के संग निर्धारित समय के सीमा के अंदर 100 कार्य करवा के पूर्ण आदेश स्थानीय विधायक के द्वारा देल गेल। मखाना के खेती आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत लाभकारी और रोजगार परक है, लेकिन एक विस्तार केवल उतने के को जवाब चाहिए जब तक पर्याप्त क्षति जल संसाधन उपलब्ध हुए। भू जल के अत्यधिक दोहन पर आधारित मखाना खेती भविष्य में पेयजल के संकट बढ़ा सकते है। ये बात राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के दरभंगा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार आसाम के गावालपारा जिले के कल्याणपुर पंचायत में 50 किसान कृषि केंद्र विज्ञान परसौनी पूर्वी चंपारण के ऑनलाइन अवस्था में कहलन। वित्तीय वर्ष 2025-26 में मनरेगा मद से क्रियान्वित योजना के सामाजिक अंकेक्षण बहादुरपुर प्रखंड में 7 अगस्त से लौकर 31 सितंबर तक कैल जाए। एक पंचायतवार अंकेक्षण कैलेंडर तैयार कैल गया है। सामाजिक अंकेक्षण के शुरुआत बहादुरपुर प्रखंड के दिकली गांव से कैल जाए। सहायक निदेशक नियोजन अवर प्रादेशिक नियोजन नियोजनालय के द्वारा बताया गया है कि निःशक्त जन के लिए नियोजित सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्यांग जन के लिए 31 अगस्त तक नियोजन सह मार्गदर्शन शिविर के आयोजन किया जाए। शिविर में पात्र दिव्यांगजन और हुनक आवश्यकता के अनुरूप नियोजन सहायता किट उपलब्ध कराए जाए, जहां से कि रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। किट प्राप्त करवा के इच्छुक पात्र दिव्यांगजन के 20 अगस्त तक अवर प्रादेशिक नियोजनालय कार्यालय में अपन आवेदन जमा करो पड़ते हैं। राज्य सभा सदस्य डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता स्पेशल मेंशन के माध्यम से राज्य सभा में बिहार में मिथिला के क्षेत्र में बाढ़ एवं कटाव के गंभीर समस्या के प्रमुखता से उठौलन है। वो कहलन कि नेपाल से आव वाला नदी में अत्यधिक जल प्रवाह और लगातार बढ़ रहा गाइड के कारण वर्षा के स्थिति में अधिक भयावह हो जा रहा है। परिणाम स्वरूप हजारों गाँव जलमग्न हो गए, लाखों परिवार के घर छोड़कर राहत शिविर में शरण लेव पड़ रहे हैं और किसान के खरीफ फसल से नष्ट हो रहे हैं। बाढ़ से सड़क पुल विद्यालय स्वास्थ्य केंद्र बिजली पेयजल आदि के भारी क्षति पहुंचते हैं। एक अस्थायी समाधान के लिए उठाओ जाए। ई हाल चाल अखन अपने लोकन आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे छी।
1: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन मैं करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
2: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है, कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
0: बोन एंड ज्वाइंट युग के अवसर पर बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन और इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क बोन मिनरल डेंसिटी BMD जांच और हड्डी स्वास्थ्य जागरूकता शिविर के आयोजन कैल गए, जाहि में विशेषज्ञ चिकित्सक हड्डी के स्वस्थ रखबा के बारे में विस्तार से आम जनता के जानकारी देलन। प्रोफेसर SN सर्राफ और सुधा सर्राफ के नेतृत्व में लगाए गए शिविर में बड़ी संख्या में लोग निःशुल्क BMD जांच तथा परामर्श प्राप्त कैलन। कुशेश्वर स्थान के दोनों प्रखंड के विभिन्न गांव में पानी से डूबा वाला जागो वाला गांव के 4 गो आश्रित के आपदा प्रबंधन विभाग के ओर से भेटो वाला 4-4 लाख रुपया के अनुग्रह राशि सहायता के लाभ देल गेल। दोनों प्रखंड मुख्यालय में आयोजित अलग अलग कार्यक्रम के विधायक

0: अतिरिक्त कुमार लाभुक चेक दिलन। अय अवसर पर विधायक अतिरिक्त कुमार के संगे संगे बिहार सरकार के खजाना पर सब सौ पहले अधिकार आपदा प्रभावित लोग के अच्छे हुई परिजन के सांत्वना दे धैर्य बनाकर जीवन आगा बढ़ेबाक अनुशंसा कैल गेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विभाग में गुरुवार को स्तनपान सप्ताह पर जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन कैल गेल। अध्यक्षता करत कुल सचिव सह विधान विभाग अध्यक्ष डॉक्टर दिव्या रानी हंसा कहलन कि माँ के दूध नवजात बच्चा के लिए संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास के आधारशिला है। जन्म के पश्चात पहला छह महीना तक केवल स्तनपान शिशु के सौ आवश्यक पोषण तत्व प्रदान करत है। ओ कहलन कि विभिन्न प्रकारक संक्रमण से सेहो स्तनपान बचाबत है, प्रत्येक माँ के जागरूकता होब के लिए आवश्यकता है। कार्यक्रम में यूपी कॉलेज पूसा के डॉक्टर प्रियंका कुमारी विषय पर विस्तार से जानकारी दिलन। हनुमान नगर में मद्य निषेध सा निबंधन मंत्री मदन सहनी गुरुवार को बिशनपुर थाना क्षेत्र के भरौल गांव में तालाब से डूबी के मृतक बाबू शाहिर के पुत्री मिंटू यादव के माता मानो देवी के 4 लाख रुपया के चेक दिलन। मंत्री गहरी संवेदना व्यक्त करत कहन के अई मौका पर अंचलाधिकारी समाज सेवी लाल बाबू राय पैक्स अध्यक्ष राम नरेश राय से उपस्थित छला है। अई के संगे आजुक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि सम्पन्न होते। नमस्कार।
1: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन मैं करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
2: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है, कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
0: हालचाल के बाद एक बार फिर अपने लोगों का स्वागत है अपने के पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार मिथिला में। हम रंजीत और हमारा संग उपस्थित है
3: मैं हूं नूतन।
0: देखो नूतन जी, सबसे पहले आप हमारे लोगों श्रोता लोगों से यातायात संबंधी जो जानकारी साझा कर लेते हैं तो श्रोता लोगों अपने के बताबे चली कि यातायात संबंधी में जो अपना क्षेत्र में 3 गो साधन थी, सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई सफर। तो सड़क मार्ग में जे 1-way सिस्टम सब दिन लागू रह आइयो लागू है, ओमे कतौ कोनो जिला प्रशासन यातायात थाना प्रभारी के तरफ से कतौ कोनो फेरबदल नहीं कैल गया अखन तक। जो कोनो VVIP मूवमेंट के कारण ओमे फेरबदल कैल जाए तो जानकारी अपने लोगन के आकाशवाणी दरभंगा परिवार के तरफ से जरूर देल जाए। जो हमारा लोगन बात करी ट्रेन सफर के, तो रेलवे बोर्ड के द्वारा जाहि गाड़ी के आगमन के समय निर्धारित है और जाहि गाड़ी के प्रस्थान करवा के समय निर्धारित है ताहि में रेलवे बोर्ड के द्वारा कतौ कोनो फेरबदल नहीं कैल गया है। और श्रोता लोगन इहो बताबे चली कि जखन भोरे भोर हमारा लोगन अपना आवास से आकाशवाणी दरभंगा केंद्र के लिए आ निकलै छलहुँ हैं तो मौसम बुझाएल छलै बड़ा सुंदर छलै, तो मौसमो खराब नहीं, तो ओहिमे कतौ ट्रेन के गाड़ी के लेट लतीफा होबय कोनो प्रश्न नहीं उठैत अछि। या उल्टे नियम लागू होइत अछि हवाई अड्डा अथॉरिटी पर, जाहि विमान के जे आगमन करबाक समय अछि और जे उड़ान भरबाक समय अछि और जे लैंड करबाक समय अछि निर्धारित, ओहिमे हवाई अड्डा अथॉरिटी के तरफ से कोनो फेरबदल नहि कयल गेलै। मौसम ठीक रहल तो समय अनुसार ओकर परिचालन हैत, जँ मौसम में कतौ कोनो खराबी हैल तो 5-10 मिनट एम्हर ओम्हर भऽ सकैए, तकरो जानकारी आबय वाला समय में अगला कार्यक्रम में आगा समय में आकाशवाणी दरभंगा के द्वारा अपने लोगन के देल जाए। लेकिन हाँ, लेकिन एक बात हम श्रोता लोगन से जरूर कहबे नूतन, जो आई हमारा श्रोता लोगन के कतौ सफर करवा के योजना हो तो चाहे हवाई अड्डा अथॉरिटी हो, रेलवे हो या बस हो, ओहिठमन का जो इंक्वायरी नंबर देल गेल छै ओहि नंबर पर एक बेर अपने लोगन क्वेरी कऽ ली, ओकरा बाद अपन सफर के शुरुआत करी। और नूतन आप हमारा लोगन नमस्कार मिथिला के आजुक अंक के सफर के एक डेग और आगा बढ़ाबे छी और सबसे पहले हमारा लोगन एकटा फिल्म संगीत के आनंद ले छी, ओकरा बाद फिर श्रोता लोगन से हमारा लोगन बातचीत करब, चर्चा करब। और श्रोता लोगन के बुझल छन कि आई शुक्र दिन के हमारा लोगन साप्ताहिक कार्यक्रम सेहो प्रस्तुत करै छी, तो ई सब आगा करब, मुदा ताहि से पहले हमारा लोगन अखन ही सुंदर सन फिल्म संगीत के आनंद ले छी।
3: जी बिल्कुल।

0: ई फिल्म संगीत के आनंद अखन वाला नूतन जी लै छलहुँ हैं। और अब बात करब श्रोता लोकनि से जना कि अहाँ आजुक इतिहास में चर्चा कयने छलहुँ जे आइ 7 अगस्त ठीक और आइ हमरा लोकनि हथकरघा दिवस
1: जी
0: सेहो मना रहल छी और स्वदेशी आंदोलन के जोर सेहो आइ के दिन सँ देल गेल रहे। देखियौ जे स्वदेशी आंदोलन में हथकरघा कहियो और ओकरा हम चरखा सेहो कहि सकै छी।
1: जी बिल्कुल,
0: हथकरघा हिंदी शब्द भऽ गेलै, चरखा मैथिली शब्द कहल जाइ छै। लेकिन चरखा काटबाक ओहि समय में जे उन्मादिता रहे, ओहि समय में जे लोग के सकारात्मक सोच रहे स्वदेशी नारा अयला के बाद,
1: जी
0: ओ सोच आइ के डेट में आब ओ नहीं भऽ सकैए,
1: सवाल ही नहीं उठता है। आज के लोग तो एकदम आधुनिक हो गए हैं, आधुनिक कह लीजिए।
0: गांधी जी के जे स्वदेशी के नारा रहे ओहिमे की रहे कि हम अपना देश में कोनो वस्तु के निर्माण करब, उद्योग लगाब और अपने देश के बनायल गेल वस्तु के हम उपयोग करब अपना जीवन में, दैनिक जीवन में ओकरे टा उपयोग करब। और स्वदेशी के नारा अही दर लगाएल गेल जे हमरा देश के पैसा हमरे देश में रह जाए, जैसे कि हमर आर्थिक उन्नति हैत, लोग के रोजगार भेटतन।
1: जी
0: और ओहि समय में लोग एकरा बड़ा सुंदर सकारात्मक रूप से लेलखिन। और ओहि समय में अहाँ के खादी कपड़ा आई के डेट में आजुका जे हमर नयका जेनरेशन है तकरा अगर हम खादी कपड़ा कहिए तो ओकरा सुनो में थोड़े
1: अजीब लगता है,
0: अतिशयोक्ति लगती जी खादी होई छे की। लेकिन देखियो खादी कपड़ा के निर्माण ओहि समय हमरा लोगन के लिए घरेलू सकल उत्पाद के तरफ से देखल गेल रहे। बांग के खेती हुई जकरा कपास कहल जाय छे,
1: हाँ उसी से बनता था, उसी से रुई का बनता था, उसी से धागा का निर्माण होता था,
0: उसी से धागा बनायल जाय छले और लकड़िए के ओकर हथकरघा मशीनो होय छले, जैसे कि कपड़ा बुनल जाय छले और सूत तैयार करबा के लेल। तहन हमरा अहाँ के छलखिन घर में माता और बहिन अपन घरक नृत्य क्रिया से निवृत्त भ क अपन जिम्मेदारी निभा लेला के बाद ओ हाथ से एना के घुमा घुमा के चरखा काटे छलखिन और ओहिसे सूत निर्माण कयल जाय छल। और ओ सूत कतौ बिकाय छल तो प्रत्येक गांव में एगो केंद्र बनाओल गेल छलै, जाहि केंद्र पर जाकर ओ परिवार के कोनो सदस्य जे छलखिन ओहि सूत के बेच अबै छलखिन और ओहिठमन ओकरा भेटैत छलै। हम सब ओ सीन अपना आँखि से देखने छियै।
1: अच्छा,
0: ओहिठमन अहाँ के सूत के बदला में कपड़ा सेहो देल जाय छलै, शॉल चादर अनाज वगैरह ओहि सूत के बदला में देल जाय छलै,
1: लिया जाता था।
0: तो ई ओहि समय में गांधी जी
1: पारिश्रमिक कह लीजिए,
0: हाँ गांधी जी के जे दूरदर्शिता कहल जाए चाहे जे कहल जाए, ई ओहि समय में खास कर महिला के रोजगार से चीज जोड़कर देखल गेल छलै जे महिला अपन घरेलू सब काज के खत्म कर लै छला है, ओ अपन फुर्सत के क्षण में चरखा चला कर सूत के तैयार करी छला है,
1: घर के आर्थिक उन्नति में सहयोग देती थी,
0: अपन सहयोग दे छलखिन है। अरे घरे गृहिणी, गृहिणी है ना घर,
1: हाँ गृहिणी से ही घर है, घर से गृहिणी है,
0: ये सच है
1: बिल्कुल।
0: ओहि समय में एकर बड़ा तेजी से विस्तार भेले, अपनो सब के क्षेत्र में भांग के खेती बड़ा उन्नत किस्म के भांग के खेती कैल जाय छले, हर एक पंचायत में एकर बिक्री सूत बिक्री के केंद्र बनाओल गेल छले और ओहिठमन से सब संचालित होइत छले। तो स्वदेशी के नारा हथकरघा के दृष्टिकोण से ओहि समय में अहाँ के बड़ा जोर पकड़लक। लेकिन जेना जेना हमरा लोकन विज्ञान पर आधारित होइत गेलहुँ, मशीन पर आधारित जीवन जीवित चल गेलहुँ, तेना तेना हमरा लोकन एहि सब चीज सँ दूर होइत
1: दूर होते चले गए, विलुप्त तो सा हो गया है लगभग मानिए तो।
0: अब देखियौ नूतन जी, सबसँ पैघ बात छै जे विलुप्त नहि भेलै यऽ खादी, तऽ अखनो मानि जे खादी के दुकान अखनो छै, कपड़ा अखनो बुना रहल छै कि बिका रहल छै, लेकिन ओहि समय में जे खादी के महत्व छलै आय के समय में खादी के महत्व नहीं रह गेले। कारण जे भेल हुए लोक के अब खादी कपड़ा पहिरो में अब की महसूस होय से नहीं जान, हमरा लोकन तखनो बड़ा सुंदर कपड़ा उपयोग करै छी।
1: महत्व की बात करें तो स्थानीय कारीगरों का समर्थन करने और भारत की पुरानी सांस्कृतिक बुनाई परंपरा को बचाने का ये प्रेरणा देता है ये दिवस हम लोगों को, उद्देश्य भी है कि हमारे कारीगरों को काम मिले, रोजगार मिले।
0: हाँ देखियो ना, देखियो लोग अब खादी के सूती के चाहे जे कह देथिन, आइयो हमरा अहाँ के मिथिला के खादी और सूती के मांग बहुत तेजी से बढ़ रहल छे,
1: हम लोग पसंद करने लगे हैं।
0: अच्छा, वही हथकरघा के बुनाई के अहाँ के बात करू तो भागलपुर में अहाँ देख लियो जो सिल्क के कपड़ा वही हथकरघा से बनाल जाय छले, रेशम के कीड़ा से तैयार कयल जाय छले। आइ लोग कहै छथिन जे बनारस के साड़ी सिल्क बड़ा सुंदर होइ छै, पूरा विश्व में फेमस छै, ओ कतौ से अबै छलै यऽ, ओ हथकरघे मशीन से तैयार कयल जाइ छलै, ओकरा लेल बड़का हैंडलूम मशीन और बड़का बड़का फैक्ट्री

0: संसाधन तो नहीं चले
1: नहीं।
0: अब दोसर बात देख ले जाओ जो हमारा लोकन आइए के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात के देखे छे कि खादी के कपड़ा किया प्रासंगिकता चले और स्वदेशी के आंदोलन में जुड़ गया वो हमारा लोकन के आर्थिक उपयोगिता के सेहो केलक आर्थिक के उपयोग बढ़ेलक नहीं
1: हाँ शरीर को भी आराम देता है
0: शरीर के सेहो आराम
1: बहुत आराम देता है।
0: उज्जर कपड़ा सूर्य के रोशनी के संशोधक नहीं होइ छिए गर्मी में लोग उज्जर कपड़ा पहिनना बेसी पसंद करै छथिन सूर्य के रोशनी का अवशेष नहीं करते। खादी कपड़ा लोग थोड़े फैल आजकल लोग चुस्त कपड़ा पहन रही है
1: फिर से आ गया है परंपरा रंजीत जी अब लोग ढीला ढाला पहनना पसंद करते हैं महिलाएं भी ढीला ढाला ही पहनना पसंद करती हैं।
0: वायु हवा के आदान प्रदान हो चलिए
1: जी
0: गर्मी कम लागे चलिए
1: खादी से हवा का आर पार जाना पास करना होता है और वही टेरिकॉटन या पॉलिस्टिक लीजिए
0: नहीं होता
1: है पसीना को सोखता है
0: पसीना के सोखे चलिए मुदा आज कल के कपड़ा कि स्थिति की है से सब गोटे हमारा लोग देखे छे तो निश्चित तौर पर जे ओई समय में जे स्वदेशी आंदोलन में खादी के उपयोगिता आयल रहे वो बड़ा चरम पर ओई समय में रहे और हमारा लोग उम्मीद करे छी कि फिर एक बार हमारा लोग खादी के वही चरम पर लौ जेबाक लेल अपन अपन प्रयास सुनिश्चित करब और जे हमर आज़ादी के लड़ाई में एक अहम भूमिका स्वदेशी बहुत पैघ भूमिका निभेने रहे
1: जी
0: आइयो हमारा लोग स्वदेशी आत्मनिर्भरता के और जोड़ कर रखे छे आइयो हमर प्रधानमंत्री कहे छथिन आइयो हमर प्रधानमंत्री कहे छथिन जे आत्मनिर्भर बनू स्वदेशी ज्यादा से ज्यादा अपन उत्पाद करू नौकरी के तलाश में नहीं रहू नौकरी के संभावना नहीं तलाशू नौकरी देवो वाला बनू ओहि समय में ततेक संसाधन नहीं रहे आई संसाधन के अभाव नहीं छे सरकारों पिटारा खोल देने छे रोजगार के संसाधन के लिए लेकिन जाहि समय में ये स्वदेशी आंदोलन के तैयारी कैल गेल रहे खादी के माध्यम से ओहि समय में हमारा देश में अतिक वैज्ञानिक संसाधन नहीं रहे अतिक अथी नहीं रहे लेकिन ओहि स्वदेशी आंदोलन में खादी बड़ पैघ अहम भूमिका निभलक जे ककरो छिपाओल नहीं छे चर्चा हमारा लोग आगा सेहो करब
1: जी
0: मुदा अब हमारा लोग के समय भ गेल अछि जे साप्ताहिक कार्यक्रम सुनवा
1: गांधी कथा
0: जी जी जी अब हमारा लोग सुनै छी अखन साप्ताहिक कार्यक्रम
1: चलिए सुनवाते हैं श्रोता को।

गांधी कथा में प्रस्तुत है गांधी जी के संस्मरण। अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे भारतवर्ष के राजनीतिक जीवन में हलचल पैदा कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी राजनीतिक जगत में प्रवेश कर गए। विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और उसके गठबंधन द्वारा तुर्की को इसलिए दंडित किया गया क्योंकि उसने जर्मनी का साथ दिया था। वहां के सुल्तान के खलीफा का ओहदा, जिसका अर्थ अरबी भाषा में शासक होता है, को समाप्त कर दिया गया। ये पद सुन्नी मुसलमानों के प्रमुख का होता था। इसके विरोध में दिल्ली में एक विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसका नेतृत्व दो भाई मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली ने किया। ये प्रदर्शन खिलाफत आंदोलन, जो कि खलीफा शब्द से बना, के नाम से मशहूर हुआ। नवंबर 1919 में गांधी जी को दिल्ली में खिलाफत के लिए बुलाई गई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया गया, जिसमें अनेक हिंदू भी सम्मिलित हुए। इस सभा में विचार किया गया कि आगे की कार्रवाई क्या होनी चाहिए। फिर इस सभा में ब्रिटिश कपड़े का बहिष्कार करने का प्रस्ताव रखा गया। इन सब के दौरान गांधी जी मंच पर बैठे हुए एक ऐसे नाम की तलाश कर रहे थे जिसमें सारे कार्यक्रम का निचोड़ भी व्यक्त हो जाए और जो नारे के रूप में भी प्रयोग किया जा सके। उनके दिमाग में एक नाम आ गया और जब वो मंच पर बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने सबसे पहले कहा, असहयोग। सन 1919 के अंत में सरकार ने जलियांवाला बाग के निकट ही कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के लिए अपनी अनुमति

दी। इस अवसर पर अली बंधुओं को भी छोड़ दिया गया। इस अधिवेशन से एक दिन पहले सम्राट ने मोंटेग्यू सुधारों की घोषणा की। यह घोषणा सबके लिए असंतोषजनक होने पर भी गांधी जी ने इसे स्वीकार किया। 9 फरवरी 1921 को मोंटेग्यू सुधार योजना को सन 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के रूप में भारत का नया संविधान बना दिया गया। अप्रैल 1920 में गांधी जी होम रूल लीग के अध्यक्ष बने। 30 जून को गांधी जी के मार्गदर्शन में खिलाफत आंदोलन ने असहयोग की नीति स्वीकार की, जिसे 31 जुलाई को उपवास और प्रार्थना के बाद 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आरंभ करने की घोषणा की। उसी दिन यानी 1 अगस्त को भारत के एक महान नेता लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई। राष्ट्र समर्थ नेता की खोज में था। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष करने वाले सत्याग्रह के नेता महात्मा गांधी की ओर भारतीय लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ और स्वाभाविक तौर पर गांधी जी का नेतृत्व प्राप्त हुआ। इस आंदोलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा था विदेशी कपड़ों की होली जलाना। कांग्रेस सेवा दल के सदस्य घर घर जाते, विदेशों में बने कपड़े एकत्र करते और सार्वजनिक स्थल पर उन्हें इकट्ठा कर आग लगा देते। ये लोग विदेशी कपड़ों की दुकान के बाहर भी धरना देते। बहिष्कार का एक और तरीका शराब की दुकानों पर धरने पर बैठना था। इसके माध्यम से लोगों को शराब पीने से रोका गया। इस आंदोलन की सबसे प्रभावी बात यह थी कि इसमें समाज के हर वर्ग की आवाज शामिल थी। 1920-21 में कांग्रेस के हजारों लोगों को सदस्य बनाया गया। अब ये विशाल पार्टी बन गई थी। सितंबर 1921 में गांधी जी ने सादगी और खादी पर बल दिया। इसके लिए उन्होंने अपनी टोपी, जैकेट और पाजामा त्याग कर लंगोट धारण कर लिया। 20 मार्च 1922 को जब गांधी जी पुणे के यरबदा सेंट्रल जेल में बंद थे, तब हिंदू मुसलमान झगड़े शुरू हो गए। धार्मिक उन्माद के कारण अनेक घायल हुए और अनेक मारे गए। ये सुनकर गांधी जी को गहरा आघात लगा। उन्होंने जेल में ही अपने पुत्र देवदास को बुलाकर कहा, जाओ, जहां जहां भी हिंदू मुस्लिम लड़ते हों, उन्हें कहो कि यह द्वेष भावना ठीक नहीं है। उन्होंने यदि तुम्हें मार भी डाला तो कोई बात नहीं, मुझे खुशी होगी कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मैंने बेटे की आहुति दी। सरकार ने 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। उनकी जेल यात्रा के दौरान पहली बात तो ये हुई कि गांधी जी जिस हिंदू मुस्लिम मैत्री की नींव पर स्वतंत्र भारत की इमारत बनाना चाहते थे, वह नींव हिल चुकी थी। खिलाफत आंदोलन मर चुका था। उसे ब्रिटेन ने नहीं बल्कि कमाल पाशा ने मारा था। दूसरी बात यह हुई कि असहयोग आंदोलन ठंडा पड़ गया था। चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और उनके सहयोगी म्यूनिसिपल, प्रांतीय और राष्ट्रीय विधान मंडलों में वापस जाने के पक्षधर हो गए थे। इसके लिए मोतीलाल नेहरू ने 1922 के अंत में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की, जिसका लक्ष्य साम्राज्य के भीतर औपनिवेशिक स्वराज्य की प्राप्ति था। गांधी जी अभी तक असहकारिता आंदोलन के पक्ष में थे, इसलिए वे शालाओं, महाविद्यालयों, न्यायालय और कानून का बहिष्कार करते थे। दूसरी ओर स्वराज्य पार्टी की नीति आकर्षक थी, अतः गांधी जी कुछ समय के लिए राजनीति से दूर हो गए।

0: धर्मालो कहना खानी साप्ताहिक कार्यक्रम दोनों सुने चलू हैं
1: जी गांधी कथा
0: चर्चा हमारे लोग करी चलू हैं जे हथकरघा
1: जी
0: और ओकर आत्मनिर्भरता के समय में जे जीवंत के प्रतीक रहे आई परिदृश्य बदल गए गुलामी के बेड़ी तोड़ कर भारत आई बहुत आगा चल ले है और अब अठम तक रोजगार के लिए आत्मनिर्भर बनवा के लिए ढेर रास संसाधन उपलब्ध हो गए सरकार से एक कमर कस के तैयार थी चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो
1: लोन भी तो सरकार दे ही रही है
0: जी जी,
1: तो।
0: जी जी जी जी चाहे चलूँ है और वो एक क्षेत्र में नहीं
1: प्रत्येक क्षेत्र में
0: प्रत्येक क्षेत्र में वही समय में हमारा पास अत संसाधन नहीं छल जा समय स्वदेशी के नारा बुलंद कैल गए रहे तो हमारा लोगन खादी और हथकरघा तक सीमित रह गए ओह समय में छे इससे बेसी छे पशुपालन आई के डेट सौ वही समय में बेसी हो कृषि के क्षेत्र में आई से बेसी संभावना वही समय में छल लेकिन आप जखन सरकार आम जनता के संगे सुर में सुर और ताल में ताल मिला कर चलवा के लिए तैयार है तो चाहे अहाँ देख लियो कृषि के क्षेत्र हुई ओहिठाम अहाँ अपन रोजगार जे साध सकै छी सरकार सब्सिडी पर लोन उपलब्ध करा रहल छै
1: विकल्प भी अनेक हो गया है
0: पशुपालन के क्षेत्र छै मक्खी पालन छै मछली पालन छै मखाना उद्योग छै मखाना के खेती करू और बहुत सारा चीज छै छोट छोट उद्योग लगा लिया सकर घरेलू उद्योग लगा लिया सिक्की ग्लास छै चित्रकला छै भीति कला छियै मिथिला पेंटिंग
1: सिलाई छै
0: कढ़ाई छै बुनाई छै
1: खाना बनाने तक में भी
0: जी जी
1: महिलाएं खाना बना के भी अपना रोजगार चला रही है
0: हाँ हाँ तो पहले हमारे कहने सुनू जो रोजगार लेवा के प्रयास में आई हमारे लोग बेसी अपन समय व्यतीत करी छी रोजगार देवा के अलिल अग्रसर हमारे लोग कखनो नहीं होबय चाहे छी किएक सरकार के अतेक तमाम कोशिश के बावजूद हमारा लोग ओई लक्ष्य के प्राप्त नहीं कर रहा छी जे लक्ष्य के प्राप्त करवा के लिए हमारा लोग वर्षों से कार्यशील छी कार्यान्वयन छी लेकिन ओत तक नहीं पहुँच पाब रहा छी ओकर कारण की छे ओकर कारण छे कमजोर इच्छा शक्ति
1: का अभाव है
0: हमरा इच्छा शक्ति का अभाव है लोग अठमन आत्मनिर्भरता के लेल जे कदम बढ़ाबे के बात होइ छे तो रोजगार के नाम पर लोग बुझे छथिन जे हमरा नौकरी सरकारी भेट गेल हमरा रोजगार भेट गेल अब हम आत्मनिर्भर भ गेलौ
1: आ दूसरा है कि लोग किसी भी काम को छोटा समझकर शर्म के मारे भी आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं इच्छा अंदर से रहती भी है तो लोग नहीं बढ़ पाते हैं कि लोग क्या कहेगा
0: हम अहाँ के बता भी नूतन जी ईश्वर विद्या ईश्वर विद्या सागर जी कहने रहते हैं कोनो काज
1: छोटा नहीं होता
0: है तो पढ़वा के बेर में

0: हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के तो पढ़ल
1: लेकिन उनको
0: लेकिन हुनकर कथनी की छलन तेकरा आत्मसात नहीं
1: नहीं कर पा रहे हैं।
0: तो एहन पढ़नाई कौन बात की जखन हम आत्मसात नहीं कर सकलिए तो एहन पढ़नाई कौन बात के। ताहि लक काज कोनो ने छोट होइ छै ने पैघ होइ छै, हमर इच्छा शक्ति मजबूत होबाक चाही। छोटे छोटे काज एक दिन जाकर नमहर काज में तब्दील भ जाइ छै, बदल जाइ छै।
1: होता ही है
0: किनको वहां देखलिए ना जे कई बेरो आसमान मुड़ के चल गेलखिन है।
1: कोई नहीं गया है, नीचे से ही शुरुआत होती है।
0: पहला मंजिल से दोसर मंजिल, दोसर मंजिल से तेसर मंजिल। तो अहाँ पहले कदम चढ़वा के प्रयास तो करियो, अहाँ निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करब। और एक सफल व्यक्ति समाज के लिए उदाहरण होइ छथिन, हुनका देखा देखी दोसरो व्यक्ति शुरू करै छथिन, तेसरो व्यक्ति शुरू करै छथिन और ओ एगो अभियान बनि कऽ आगा बढ़ै छै और ओहिठमन खुशहाली पैदा होइ छै।
1: तैं
0: एहि मानसिकता सँ अहाँ हटि जाउ जे लोक की कहत और काज ई छोट भेलै और काज ई नमहर भेलै। जाहि समय स्वदेशी आंदोलन के नारा देल गेल रहै और लकड़ी के बनाओल चरखा बनाओल गेल रहै, ओहि समय केओ कहने रहै जे खादी अतः तक पहुंच जेते, खादी भारत के एगो पहचान बन जेते,
1: पहचान बन गया है,
0: भारतीय अस्मिता के पहचान बन जेते, ओहो क्षेत्रीय तौर से लौकर राष्ट्रीय तौर तक। आई हम अहाँ मिथिला के क्षेत्र में जीवन अपन व्यतीत कर रहल छी, हमरा अहाँ के ओहिठमन मिथिला के खादी भेटत अछि। उड़ीसा चल जाओ, संबलपुर के खादी संबलपुरी सूती आई विश्व के सबसे महंगा सूती बिकाई छै। दक्षिण भारत में चल जाओ, अपन सूती बनाबै छै, भागलपुर के नाम कहलूँ हैं, बनारस के नाम कहलूँ हैं, ओ आई जीवंत छै।
1: क्षेत्रीय रूप में भी बनने
0: क्षेत्रीय रूप में भी राष्ट्रीय पहचान बना लेलकै। ताहि लऽ कऽ छोट काज से है बड़का काज भ सकै छै, हम श्रोता लोकनि से कहबनि। और एकटा और अपील, नमस्कार मिथिला कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी दरभंगा परिवार से हम समस्त श्रोतागण से विनती करै छियनि, अपील करै छियनि जे सावन के महीना थिक, महादेव के महीना थिक, महादेव के पूजा अर्चना नीक जकाँ करू, सकारात्मक जीवन जीवू। लेकिन एहि प्रकृति के बचाबऽ के लेल एकटा के गाछ
1: पेड़ जरूर लगाए,
0: जरूर लगाबी, जाहि सँ कि हमर प्रकृति बचल रहे। अही शब्दक संग आजुक नमस्कार मिथिला के अंक सँ हमारा लोकन आब लैत छी विदा। नमस्कार मिथिला।

0: कार्यक्रम नमस्कार मिथिला, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दरभंगा से।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय,
2: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
3: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatnacom@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
4: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना।
0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आप तक पहुंच

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं।
4: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेन देन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की रक्षिता रामराज से। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है।
5: भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम 6 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है। इससे राज्य की अनुसूचित जनजाति समुदायों की लंबे समय से प्रलंबित मांग पूरी हुई है और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन तथा सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति समुदायों को लंबे समय से अपेक्षित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉ. सावंत ने इस कानून को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सबका साथ सबका विकास की भावना को प्रतिबिंबित करता है। महेश सोप्रेक, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
4: लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान साधनों के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है।
6: सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर मामूली शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं पीएसपी और डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली भुगतान और संरचना फर्मों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है। सदन द्वारा पारित संशोधन में उस मौजूदा कानून प्रावधान को हटाने का प्रयास किया गया है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर व्यापारी छूट दर एमडीआर वसूलने से रोकता है। वहीं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर NEFT के माध्यम से किए गए रियल टाइम भुगतानों पर पहले से ही ऐसा शुल्क लगता है। UPI लेन देन अब तक ऐसे शुल्कों से मुक्त रहे हैं। भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित परिवर्तन कराधान पर व्यापक कानून का हिस्सा है जिसे मंगलवार को सदन में पेश किया गया। सदन की कार्यवाही के पहले स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर लोकसभा में विधेयक पारित किया गया। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
4: पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के

0: बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार कई अहम कदम उठा रही है।
1: देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसी के आधारित अगले दिनों पर हम ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ब्यूरो ऑफ नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी गठन करेंगे, जिससे जनता की अपेक्षा के मुताबिक हम अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में हम जो तरक्की की है आज दुनिया ने देखी है। पोर्ट्स इंडस्ट्री मैरिटाइम एक्सपर्ट टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म।
0: देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने इस मुद्दे को सुलझाने में राज्य सरकार से बातचीत करने के लिए 11 सदस्यीय दल का गठन किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में चल रहा आंदोलन एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है।
2: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 14वें दिन भी जारी है। राजधानी रांची में 6 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कल शाम आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फ्लैशलाइट मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद रांची सदर के SDM रजत कुमार और ADM धनंजय कुमार ने धरना स्थल पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की। छात्र नेताओं का कहना है कि कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से वार्ता का कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला था। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातचीत के लिए दरवाजे खुलने के बयान के बाद छात्रों ने सरकार से वार्ता के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्षी NDA विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर CBI जांच की मांग की। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यदि 13 अगस्त तक राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो वो भी छात्रों की भूख हड़ताल में शामिल होंगे। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार होगा। कुल 22 बुनकरों को उनके शिल्प कला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करने में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। 2 प्रकाशन अर्थ और रूट तथा मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर पारंपरिक कानी बुनाई और वॉल हैंगिंग बुनाई की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से शिल्पकला, कौशल और देश के हथकरघा बुनकरों के समर्पण का उत्सव मनाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
4: मैं आज आग्रह करता हूँ, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता, हमने उत्साह और उमंग के साथ

0: हैंडलूम डे मनाना है, हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और केवल बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से अमेरिका जाने वाले पर्यटकों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी आव्रजन प्रणाली के दुरुपयोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। एक रिपोर्ट।
2: व्हाइट हाउस के अनुसार आदेश में विदेशी नागरिकों के उन बच्चों की श्रेणियों की पहचान की गई है जो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक अपवादों के तहत जन्मजात नागरिकता के पात्र नहीं होंगे, जबकि दूसरा आदेश देश और गृह सुरक्षा विभागों को जन्म पर्यटन को समाप्त करने का निर्देश देता है, जिसमें विदेशी नागरिक मुख्य रूप से अपने बच्चों के लिए नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका की यात्रा करते हैं। समाचार कक्ष से मनोज।
1: मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम, माहे, उड़ीसा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा हो सकती है। असम में इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार करगोलाघाट और उदालगुरी जिलों में बाढ़ से एक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। राज्य में अब तक 480 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। शिवसागर, गोलाघाट, चोरहाट और सरायदेव जैसे सर्वाधिक प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। बाढ़ के बाद की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य शिविरों और चिकित्सा सेवाओं को तेज कर दिया है। जल जनित बीमारियों की रोकथाम और प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा। अश्मिता चालिया का सामना जापान की हिना अकेची से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद प्रियंका। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में लागू नहीं हो सकती क्रीमी लेयर प्रणाली। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के हलफनामे को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। मंत्रिमंडल के फैसलों पर भी अखबारों की नजर है। हिंदुस्तान ने लिखा है बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन योजना को मंजूरी। सीएनजी और पीएनजी में क्रमिक तरीके से 5% तक बायोगैस को मिलाया जाएगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है देश में डीप फेक कंटेंट से निपटने के लिए नए आईटी नियम लागू। अब 36 नहीं 3 घंटे में हटाना होगा एआई से बना फर्जी वीडियो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है बीमा दावा निपटान में देरी पर 2% ब्याज के साथ दावे की रकम दी जाएगी। दावे की प्रक्रिया पारदर्शी, आसान और जवाबदेह बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए गए। जेंजी हमारी पीढ़ी से अधिक ईमानदार, उनकी बात सुननी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को अमर उजाला सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। 2013 के दुष्कर्म मामले में तहलका के पूर्व संपादक तेजपाल को 10 वर्ष कैद की सजा मिलने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों ने दिया है। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है तरुण तेजपाल के प्रति नरमी बरतने का आधार नहीं है, महिला सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं उनका पालन होना ही चाहिए। वायुसेना की पहली महिला टॉप गन बनी भावना कंठ। राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि स्क्वाड्रन लीडर भावना ने ग्वालियर स्थित टेक्सटिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का प्रतिष्ठित लड़ाकू प्रशिक्षण कार्यक्रम फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा कर ये उपलब्धि हासिल की।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दो

0: कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Centre notifies Act paving way for reservation for ST community in Goa Assembly. Lok Sabha passes bill to authorise government to permit banks to levy charges on UPI transactions. Prime Minister Narendra Modi calls upon people to celebrate National Handloom Day today, showcasing India's rich and diverse handloom heritage and promote handloom products. Protesting Jharkhand students form 11-member team to hold talks with state government. US President Donald Trump signs two executive orders aimed

0: से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध कर। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदे।
1: हथकरघा का कौमी दिन 1905 में इसी दिन स्वदेशी तहरीक के आगाज के याद में हर बरस 7 अगस्त को मनाया जाता है। टेक्सटाइल की वजारत आज हथकरघा का 12वां कौमी दिन मनाने के लिए राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में कौमी तकरीब का इनेकाद करेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इसमें मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगी, जबकि टेक्सटाइल्स के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह और वजीर ममलुकत पवित्रा मार्गरेटा भी इस प्रोग्राम में शरीक होंगे। टेक्सटाइल की वजारत ने कहा है कि इस तकरीब का मकसद भारत की मालामाल हथकरघा विरासत का जश्न मनाना है और मुल्क की सकाफती और इक्तसादी तरक्की में हथकरघा बुनकर बिरादरी के तआवुन को तस्लीम करना है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: तकरीबात की एक अहम खसूसियत साल 2025 के लिए संत कबीर हैंडलूम अवार्ड की पेशकश होगी। भारत की हैंडलूम रिवायत के तहफ्फुज में उनकी कारकर्दगी, जिद्दत, तराजी और ताउन के एतराफ में बुनकरों को कुल 22 अवार्ड दिए जाएंगे, जिनमें 3 संत कबीर हैंडलूम अवार्ड और 19 नेशनल हैंडलूम अवार्ड शामिल हैं। इस मौके पर मुल्क की मालामाल और मुतनवे हैंडलूम बुनाई की रिवायात का जश्न मनाने के लिए 4 यादगारी डाक टिकट जारी किए जाएंगे। तकरीब के दौरान 2 मतबूआत अर्थ रूट थ्रेड ऑल डाइड हैंडलूम टेक्सटाइल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया और हैंडलूम अवार्ड्स बुक 2025 का भी इजरा अमल में आएगा। अवार्ड याफ्ता हैंडलूम मसनूआत के अलावा शायकीन को रिवायती कनी बुनाई और वॉल हैंकिंग बुनाई के लाइव मुजाहरे देखने का भी मौका मिलेगा, जिससे भारत की हैंडलूम रिवायात के तनव और बेहतरीन कारीगरी की एक झलक देखने को मिलेगी। 1905 में इसी दिन शुरू की गई स्वदेशी तहरीक की याद में हर साल 7 अगस्त को कौमी हैंडलूम डे मनाया जाता है। टेक्सटाइल की वजारत के मुताबिक 2015 में अपने आगाज के बाद से ये दिन मुल्क के हैंडलूम बुनकरों के फन, महारत और लगन का जश्न मनाने का एक खास मौका फराहम करता है। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। झारखंड में एहतजाज कर रहे तलबा ने मामले को हल करने की खातिर रियासती हुकूमत के साथ बातचीत के लिए एक 11 रुकनी टीम तश्कील दी है। JPSC और JSSC भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाब्तगियों में एहतजाज अहम मरहले में दाखिल हो गया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: रांची में JPSC और JSSC भर्ती इम्तिहानात में मुबीना बेजब्तगियों के खिलाफ एहतजाज का आज 14वां दिन है, जबकि 6 तलबा अपनी भूख हड़ताल जारी रखे हुए हैं। कल शाम उम्मीदवारों ने रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से एक फ्लैशलाइट एहतजाजी मार्च किया। बाद में रांची सदर के SGM रजत कुमार और ADM धनंजय कुमार ने एहतजाज कर रहे तलबा से मुलाकात की। नामा निगारों से बात करते हुए SGM रजत कुमार ने कहा कि इंतजामिया अपने नौजवानों से बात करने आई है ताकि मुस्तकबिल की उनकी तैयारियों में मदद पर बातचीत हो सके। तलबा लीडरों ने कहा, कल शाम तक रियासती हुकूमत की जानिब से बातचीत के लिए बाजाब्ता तौर पर मधु नहीं किया गया था, ताहम वजीर आला हेमंत सोरेन के इस बयान के बाद की बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। तलबा ने एक 11 रुकनी टीम तश्कील दी है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस अलीम।
1: भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज साहिली कर्नाटक, मशरकी मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम और माहे, ओडिशा और जनूबी अंदरूनी कर्नाटक के हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। आज शुमाल मशरक के हिस्सों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार जजायर, गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी औसत से शदीद बारिश का इम्कान है। इस साल आसाम में सैलाब के सबब मजमूई हलाकतों की तादाद बढ़कर 97 हो गई है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक रियासत के 15 अजला में 1,68,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। 480 से ज्यादा गांव सैलाब से मुतासिर हैं, जबकि हजारों अफराद इमदादी कैंपों में रह रहे हैं और इमदाद तकसीम करने वाले मराकज से मदद हासिल कर रहे हैं। सैलाब के बाद कार्रवाई के एक हिस्से के तौर पर हुकूमत ने सेहत की देखभाल से मुतालिक कैंप लगाने में तेजी पैदा कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 एग्जीक्यूटिव अहकाम पर दस्तखत किए हैं, जिनका मकसद पैदाइश की बुनियाद पर शहरियत को महदूद करना और बर्थ टूरिज्म पर रोक लगाना है। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए जनाब ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायूसी का इजहार करते हुए इसे एक अफसोसनाक फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि उनकी इंतजामिया अमरीका के इमिग्रेशन निजाम की मुबैना गलत इस्तेमाल के खिलाफ बड़े

0: पैमाने पर कार्रवाई कर रही है। व्हाइट हाउस के मुताबिक पहले एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे में ऐसे गैर मुल्की शहरियों के बच्चों की मुख्तलिफ अकसाम की निशानदेही की गई है जो सुप्रीम कोर्ट की तस्लीमशुदा इस्तिस्नाई सूरतों के तहत पैदाइश की बुनियाद पर अमरीका की शहरियत के अहल नहीं होंगे। दूसरे एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे में महकमा खारजा और दाखिली सलामती के महकमे को हिदायत दी गई है कि वो बर्थ टूरिज्म का खात्मा करे। बर्थ टूरिज्म का मतलब वो अमल है जिसमें गैर मुल्की शहरी अपने बच्चों को अमरीकी शहरियत दिलवाने के मकसद से अमरीका का सफर करते हैं। मगरबी बंगाल सरकार पहली मरतबा मरकजी हुकूमत की हर घर तिरंगा मुहिम में बाजाबता तौर पर शिरकत करने के लिए तैयार है। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कल यौम आज़ादी की तकरीबात से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोग्रामों का ऐलान किया जिनमें रियासत भर में 70 लाख कौमी परचम तकसीम करने का मंसूबा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत हर घर तिरंगा मुहिम में मुल्क मुकद्दम और हुब्बुल वतनी के नजरिए को बुनियाद बनाकर शामिल हो रही है। भारत और सिंगापुर ने जामे स्ट्रेटेजिक साझेदारी के रोडमैप के तहत तय किए गए 8 शोबों में दोतरफा तआवुन की पेशरफ्त का जायजा लिया। भारत और सिंगापुर की वजारत खारजा सतह की मुशावरत का 19वां दौर कल नई दिल्ली में मुनक्किद हुआ। इस मीटिंग की मुश्तरका सदारत वजारत खारजा में मशरकी उमूर के सेक्रेटरी रुदेंद्र टंडन और सिंगापुर की वजारत खारजा में पॉलिसी के मुस्तकिल सेक्रेटरी लूक गोह ने की। तरफैन ने इलाकाई और आलमी हालात वाकयात पर तबादला ख्याल किया और इस बात का इरादा किया कि मुश्तरका चैलेंजों से निपटने के लिए आसियान समेत बैनुल अक्वामी और इलाकाई फोरम्स में करीबी तआवुन और बाहमी राब्ता निहायत अहम है। बैडमिंटन में आज आसान में कोरिया मास्टर्स के खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में भारत की तन्वी शर्मा का मुकाबला उनकी हमवतन खिलाड़ी रक्षिता रामराज से होगा। तन्वी ने प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी हमवतन खिलाड़ी श्रेयांशी वलीशेट्टी को हराया था जबकि रक्षिता जापान की मनामी सुइजू को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। इस दौरान अश्मिता चालिहा एक दूसरे खवातीन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जापान की आला दर्जे की खिलाड़ी हिना अकेची का सामना करेंगी। खवातीन एशिया कप 2026 के सबसे अहम मुकाबले में 5 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत का सामना रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 28 अगस्त से दुबई में होने वाले खवातीन टी20 एशिया कप 2026 की तारीखों का ऐलान किया है। 28 अगस्त को पहला मैच थाईलैंड और हांगकांग के दरमियान होगा जबकि फाइनल मैच 13 सितंबर को खेला जाएगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब की शह सुर्खी है, पार्लियामेंट में जारी तातुल खत्म करने की कोशिशें तेज। इस्मत दरी केस में साफी तरुण तेजपाल को 10 साल कैद की सजा, ये खबर भी अखबारात में नुमाया है। अखबार प्रताप ने आरबीआई के जरिए पॉलिसी सूद की शरह 5.25% पर बरकरार रखने से मुतालिक खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। इसके अलावा अखबारात ने दिल्ली एनसीआर में बारिश से मुतालिक खबर को भी सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबारात की अहम बैन अलाक़वामी खबरें इस तरह है, आबनाए हुरमुज पर ईरान और ओमान के दरमियान इत्तेफाक, वादों पर अमल करने के अमरीका के मुस्बत इशारे, अमरीकी सदर वजीर दिफा पर सख्त बरहम, हथियारों की कमी पर जवाब तलब किया।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने गोवा असेंबली में दर्ज फहरिस्त कबाइल की खातिर रिजर्वेशन की राह हमवार करने के लिए कानून नोटिफाई किया है। लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को चार्ज लगाने की इजाजत देने के लिए सरकार को अख्तियार देने वाला बिल मंजूर कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो भारत की मालामाल और मुतनव्वे हथकरघा विरासत के इजहार और हथकरघा मसनूआत को फरोग देने के लिए आज हथकरघा का कौमी दिन मनाएं। झारखंड में एहतजाज कर रहे तलबा ने रियासती हुकूमत के साथ बातचीत के लिए 11 रुकनी टीम तश्कील दी है। और बैडमिंटन में आज आसान में कोरिया मास्टर्स के खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में तन्वी शर्मा का मुकाबला हमवतन खिलाड़ी रक्षिता रामराज से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडी वेव 483.1 मीटर।

0: अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
3: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सभी पेंशन धारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। अपनी पेंशन बिना रुकावट के पाने हेतु यथाशीघ्र जीवन प्रमाणीकरण अवश्य कराएं। पंचायत या प्रखंड स्तर पर या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर आधार कार्ड या बैंक खाता संख्या या लाभार्थी संख्या लेकर जाएं एवं निःशुल्क जीवन प्रमाणीकरण कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें। अतिवृद्ध एवं दिव्यांग पेंशन धारियों का बायोमेट्रिक के माध्यम से जीवन प्रमाणीकरण नहीं होने पर भौतिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है। ध्यान दें, जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने पर आपकी पेंशन बाधित हो सकती है। अपने पेंशन को निरंतर जारी रखने के लिए आज ही जीवन प्रमाणीकरण कराएं।
4: अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6262 पर संपर्क करें। समाज कल्याण विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है।
1: स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश के साथ फरक्का जल संधि पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। और तेल कंपनियों ने कहा 16 अगस्त तक ईकेवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को घरेलू दर पर गैस सिलेंडर आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। अब समाचार विस्तार से। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश के साथ फरक्का जल संधि पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। राज्यसभा में विशेष उल्लेख के जरिए मुद्दे को उठाते हुए श्री झा ने कहा कि यह संधि देश और विशेषकर बिहार के हितों के खिलाफ है।
1: मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि फरक्का वाटर ट्रीटी 1996 का रिन्यूअल न किया जाए। वो देश के इंटरेस्ट के खिलाफ है, खासकर के बिहार के इंटरेस्ट के खिलाफ है। इसके स्थान पर बिहार सहित सभी बेसिन स्टेट्स की जल आवश्यकताओं का साइंटिफिक आकलन कर नई व्यवस्था बनाई जाए। जब तक बिहार की जल सुरक्षा, कृषि, पेयजल तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की पर्याप्त गारंटी सुनिश्चित न हो, तब तक ट्रीटी का रिन्यूअल बिहार के दीर्घकालिक हितों, विकास की संभावनाओं तथा करोड़ों लोगों के आजीवन

0: का के प्रतिकूल होगा।
1: लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान साधनों के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर मामूली शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं पीएसपी और डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली भुगतान और संरचना फर्मों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है। सदन द्वारा पारित संशोधन में उस मौजूदा कानून प्रावधान को हटाने का प्रयास किया गया है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर व्यापारी छूट दर एमडीआर वसूलने से रोकता है। वहीं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर एनईएफटी के माध्यम से किए गए रियल टाइम भुगतानों पर पहले से ही ऐसा शुल्क लगता है। यूपीआई लेनदेन अब तक ऐसे शुल्कों से मुक्त रहे हैं। भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित परिवर्तन कराधान पर व्यापक कानून का हिस्सा है जिसे मंगलवार को सदन में पेश किया गया। सदन की कार्यवाही के पहले स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर लोकसभा में विधेयक पारित किया गया। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: खान और भूतत्व मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने कहा है कि प्रदेश में 1000 खनन सिपाहियों की बहाली होगी और इसका अलग कैडर बनाया जाएगा। खनन सिपाहियों की बहाली बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग से होगी। पटना में पत्रकारों से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि नई बहाली से खनन प्रक्रिया में पारदर्शिता आने के साथ ही अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। मंत्री ने कहा कि सरकार नदियों की गाद से ईंट बनाने की योजना पर विचार कर रही है। श्री कुमार ने जानकारी दी कि नवादा जिले में पत्थर खनन के 8 पट्टों के लिए निविदा प्रकाशित कर दी गई है जबकि औरंगाबाद, गया, शेखपुरा तथा बांका में पत्थर खनन पट्टों के लिए 15 अगस्त तक निविदा जारी कर दी जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि संविधान और न्यायिक फैसलों में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत एससी एसटी एक्ट आरक्षण पर लागू होता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग की तर्ज पर एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की कोई योजना नहीं है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने कहा है कि विकसित भारत 2047 के सफर में जल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नई दिल्ली में ईएडब्ल्यू ग्लोबल एक्वा एक्सपो के 21वें संस्करण के उद्घाटन के दौरान श्री चौधरी ने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसमें सरकार, उद्योग, प्रौद्योगिकी, नव प्रवर्तक, शोधकर्ता और समुदाय मिलकर टिकाऊ, लचीली और भविष्य के लिए तैयार जल प्रणालियों का निर्माण करें। गौरतलब है कि यह प्रदर्शनी जल और अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में भारत की सबसे पुरानी और प्रमुख प्रदर्शनियों में से एक है। पटना स्थित बिहार संग्रहालय आज अपना 11वां स्थापना दिवस मना रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार संग्रहालय स्थापना दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। बेली रोड स्थित संग्रहालय में इस अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय समारोह में कई कला प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों और नृत्य तथा गायन की प्रस्तुतियां होंगी। संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि इस अवसर पर देश के 100 से ज्यादा कलाकारों की विशेष प्रदर्शनी लगाई जा रही है।
3: इस वर्ष हम लोग अपने स्थापना दिवस पे हिंदुस्तान के देश के 100 से ज्यादा प्रमुख कलाकार हैं उनकी एक प्रदर्शनी लगा रहे हैं। पहली बार होगा जबकि सारे लोग एक ही जगह जितने देश में बड़े कलाकार हुए हैं उनकी प्रदर्शनी एक साथ देख सकते हैं और ये एक बहुत बड़ी इवेंट है खासकर बिहार के लिए और ईस्टर्न इंडिया के लिए।
1: देश में 9 अगस्त शुरू हो रहे हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश में भी इसे लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से आग्रह किया है कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम में इस बार वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के सम्मान में इसका गायन करते हुए तिरंगे के साथ वीडियो बनाकर अपलोड करें।
4: और मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि

0: वंदे मातरम का जब 150 वर्ष का प्रारंभ किया था, तब माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से हमने एक वेबसाइट शुरू की थी। उस वेबसाइट को हमने और इवॉल्व किया है और अधिक विकसित किया। आज संगीत के साथ में कराओके के माध्यम से देश का हर नागरिक वंदे मातरम को गाए, अभ्यास करे और अपना वंदे मातरम के साथ में सेल्फी लेकर के अपना फोटो अपलोड करे।
1: आकाशवाणी पटना से प्रसारित हो रहे भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण समय में बदलाव किया गया है। यह समाचार बुलेटिन आज से प्रतिदिन संध्या 5:30 से सुना जा सकता है। भोजपुरी समाचार बुलेटिन का प्रसारण आकाशवाणी पटना के साथ ही 101.6 मेगाहर्ट्ज पर FM रेनबो चैनल पर भी सुना जा सकेगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत के उत्सव को मनाना तथा राष्ट्र के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए हथकरघा बुनकर समुदाय के योगदान को मान्यता प्रदान करना है। हथकरघा दिवस के अवसर पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इधर इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है।
3: मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होगा, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदे, उसका एक वीडियो बनाए और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
1: सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने कहा है कि 16 अगस्त तक EKYC नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को घरेलू दर पर गैस सिलेंडर आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। कंपनियों के अनुसार प्रदेश में लगभग 59 लाख LPG उपभोक्ताओं ने EKYC नहीं कराया है। कंपनियों ने उपभोक्ताओं से EKYC की प्रक्रिया को कंपनी के मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरी करने का आग्रह किया है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती आज श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। इसके लिए प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कला और संस्कृति विभाग की ओर से इस मौके पर समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, गया, भभुआ और रोहतास जिले में भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं राज्य के शेष स्थानों पर आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट है।
4: दिनांक 7 अगस्त को राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के औरंगाबाद, भभुआ, गया एवं रोहतास जिलों में भारी वर्षा होने की

0: संभावनाएं।
1: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान खगड़िया जिले में सबसे अधिक 230.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। समस्तीपुर के विद्यापति नगर में 130 मिलीमीटर, गया के वजीरगंज में 111, नवादा के हिसुआ में 104 और पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में 103.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। पटना में आयोजित 52वीं बिहार राज्य जूनियर बालक कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब सारण ने जीत लिया है। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए फाइनल मुकाबले में सारण ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बक्सर को 49-45 से हराकर खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता में पटना और भोजपुर को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। जमालपुर रेल यार्ड में खड़े रेल इंजनों से हो रही कॉपर पाइप चोरी के मामले में रेलवे सुरक्षा बल ने चोरी की संपत्ति खरीदने वाले एक व्यक्ति समेत 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान 60 फीट न्यूमेटिक कॉपर पाइप बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 6 करोड़ रुपये है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने के मकसद से आज सहरसा विकास भवन परिसर में सोलर सह लोन मेला का आयोजन किया जाएगा। पटना से भोपाल के बीच सीधी उड़ान सेवा 10 अगस्त से शुरू हो रही है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना प्रशासन के अनुसार यह साप्ताहिक फ्लाइट 72 सीटों वाली होगी। पटना हवाई अड्डे ने इस महीने विमानों के लिए नया कार्यक्रम जारी किया है। इसके तहत पटना हवाई अड्डे से अब प्रतिदिन 78 विमान उड़ान भरेंगे। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश में औद्योगिक निवेश से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने इस खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, इस्पात, कपड़ा और परमाणु ऊर्जा में 51,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। दैनिक जागरण लिखता है, शनिवार को अब सरकारी विद्यालयों में होगा हाफ डे, सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे विद्यालय। दैनिक भास्कर ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हवाले से लिखा है, जेन जी ईमानदार, उनका गुस्सा जायज, विरोध में संवाद, विरोध भी संवाद का तरीका। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश के साथ फरक्का जल संधि पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। और तेल कंपनियों ने कहा, 16 अगस्त तक ईकेवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को घरेलू दर पर गैस सिलेंडर आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: आसमान में बिजली के चमकने, गरजने, कड़कने के समय यदि आप खुले में हो तो शीघ्र किसी पक्के मकान में शरण लें। जहां हैं वहीं रहें। हो सके तो पैरों के नीचे सूखी चीजें जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें। ऊंचे पेड़ के नीचे न खड़े हों। बिजली के सुचालक वस्तुओं से दूर रहें। समूह में न खड़े हों। रेडियो और टीवी पर मौसम के साफ होने का संदेश प्रसारित होने का इंतजार करें। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
3: बरसात के मौसम में कई प्रकार के रोगों से पशु का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, जिससे पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
4: इसके लिए वर्षा ऋतु के दौरान कुछ अपनाने योग्य बातों का ध्यान रखें। बारिश से पहले पशुओं की पशुशाला के छत की मरम्मत कर दें, ताकि पानी न टपके। पशुशाला की खिड़कियों को खुली रखें तथा गर्मी और उमस से बचने के लिए पंखों का प्रयोग करें। साफ सफाई का ध्यान रखें और पानी एकत्र न होने दें।
3: नियमित अंतराल पर कीटनाशक का भी छिड़काव करें। जानवरों को ज्यादा शारीरिक थकावट न होने दें और बार बार धूप में न लाएं।
4: कोशिश करें कि पशु को बाल्टी से साफ एवं ताजा पानी पिलाएं। दाने का भंडारण नमी रहित जगह पे करें। संक्रामक रोगों के विरुद्ध अपने पशुओं का टीकाकरण करवा लें।
5: डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: या आकाशवाणी का पटना।

केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का पटना दरभंगा केंद्र है। पेश है उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

0: महबूब है, बहुत ही प्यारा है, उससे हम मोहब्बत करते हैं, उसकी एक एक चीज से, एक एक जर्रे से हमारी मोहब्बत झलकनी चाहिए और इसके तामीर और तरक्की में हमारा नुमाया रोल होना चाहिए। चकबसत कहते हैं, हुब्बे वतन समाए आंखों में नूर बनकर, हुब्बे वतन समाए आंखों में नूर बनकर, सर में खुमार होकर, दिल में सुरूर होकर। सामीन, अब चलते हैं अगली पेशकश की जानिब, और हर जुमा को हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर खिदमत होते हैं, मकाला बातें जिनसे जिंदगी सवरती है। आज के इस उन्वान के इख्तियात है कि मकाफात, यानी इंसान जैसा करता है वैसा ही उसे इसी दुनिया में भी उसका बदला मिल जाता है और बाद वाली जिंदगी में भी उसे उसका अजर ज़रूर मिलता है। तो मकाफात क्या है, आइए मकाफात पे सुनते हैं। ये मकाला मकाला निगार हैं जनाब शमशाद आलम।
1: कुरान, हदीस, तारीख और हमारा मुआशरा शाहिद है कि हर अमल, हर नीयत, हर सोच का बदला मिलता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कई मकामात पर इस कानून कुदरत को बयान फरमाया है। सूरह ज़िलज़ाल की आयत नंबर 7 और 8 में फरमाता है, जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा, और जिसने ज़र्रा बराबर बदी की होगी वो भी उसे देख लेगा। यह आयत हर इंसान को झिंझोड़ कर याद दिलाती है कि अल्लाह ताला के यहाँ कोई चीज़ छुपी नहीं रहती, कोई अमल रायगा नहीं जाता, अदल व इंसाफ भी इसी पर रखी गई है। इन्नल्लाहा यामुरु बिल अदल वल इहसान, यानी अदल का तकाजा यही है कि हर शख्स को उसके आमाल के मुताबिक बदला दिया जाएगा, नेकी पर इनाम, बुराई पर सजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अद्दुनिया मसरतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, जैसा हम यहाँ बोएंगे वही कल वहाँ काटेंगे। अगर ईमान व तकवा, सच्चाई, मोहब्बत, अफ़ दरगुजर का बीज बोएंगे तो जन्नत के फल पाएंगे, और अगर झूठ, जुल्म, धोखा, फरेब, तकब्बुर और हसद बोएंगे तो आज़ाब की शक्ल में काटेंगे। एक हदीस में है, अज़ुल्म ज़ुल्मात यौम अल-क़ियामा, जुल्म क़यामत के दिन कई अंधेरियों का बाइस बनेगा। दूसरी तरफ अल्लाह का वादा है, मन अमिला सालिहन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, जो नेक अमल करेगा हम उसे पाकीज़ा ज़िंदगी अता करेंगे। कुरान मजीद और अहादीस नबवी में एक उसूल बार बार बयान हुआ है जो हमारे आमाल के नताइज से मुख्तलिफ है, और वो उसूल है, अल जज़ा मिन जिन्सिल अमल, यानी बदला वैसा ही मिलेगा जैसा अमल किया गया होगा। और हदीस शरीफ में आता है कि कमा तुदीनु तुदानु, यानी जैसे तुम किसी के साथ करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ किया जाएगा। कुरान शरीफ में इरशाद बारी है, वजज़ाउ सय्यातिन सय्यातुम मिस्लुहा, और बुराई का बदला वैसा ही बुराई है। हमें मालूम होना चाहिए कि ये दुनिया आमाल की खेती है, जो कुछ हम यहाँ बोएंगे वही कल आखरत में काटेंगे। अगर हम किसी के साथ जुल्म करते हैं, धोखा देते हैं, गीबत करते हैं, तो हमें भी दुनिया या आखरत में वैसा ही बदला मिलेगा। इसी तरह अगर हम किसी की मदद करते हैं, किसी का भला करते हैं, किसी को माफ़ करते हैं, तो अल्लाह ताला हमें भी इनाम देगा और माफ़ी से नवाजेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रहिमून यरहमुहुमुर रहमान, इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, रहम करने वालों पर रहमान यानी अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जैसा अमल करोगे वैसा ही बदला पाओगे। अगर अपने हाथ से नहीं तो अपनी औलाद के हाथों हम देखते हैं कि जो औलाद वालिदैन से बदतमीजी करती है, बाद में उनकी औलाद उनसे बदसलूकी करती है। आए दिन हम मुशाहिदा करते हैं कि एक उस्ताद जो बच्चों के साथ बदसलूकी करता है, उसका अपना बच्चा किसी और के हाथों वैसा ही सलूक बर्दाश्त करता है। एक शख्स जो रिश्वत लेता है, उसकी कमाई से पलने वाली औलाद उसी हराम के असर से बिगड़ती है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, अपने आप मुहासबा खुद करो कबल इसके के तुम्हारा मुहासबा किया जाए, अपने आमाल को खुद तौल लो कबल इसके के तुम क़यामत में तोले जाओ। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, नेकी कभी ख़त्म नहीं होती,

0: जैसा करोगे वैसा भरोगे। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने हर अमल से पहले सोचें कि कल क़यामत के दिन हमें इसी जैसा बदला मिलेगा। अपने आमाल का मुहासिबा करें, जुल्म झूठ फरेब से बचें, सच्चाई अदल रहम दिली को अपनाएं, दूसरों से वही सलूक करें जो हम अपने लिए पसंद करते हैं। अपनी औलाद को सच्चाई अदल और इंसाफ का सबक दें। मोहतरम सामीन इकराम, किसी गांव में जागीरदारों का एक खानदान था। खानदान रिटायरमेंट के बाद वो सारा वक्त जमीनों की निगरानी और निगहदाश्त में सर्फ करता था। उसके दो पसंदीदा अमल थे, फारिग वक्त में कार का सैर करना, नंबर दो, 2-2.5 लाख की रकम पास रखना और नोटों को गिनता रहता था। एक रोज दोपहर को वो कमरे पर गया, सारे नौकर मजार खिदमत हाजिर हो गए। पता नहीं क्या बात हुई, उसे एक मजारे यानी काश्तकार पर गुस्सा आ गया। उसने डंडा पकड़ा और उसकी पिटाई शुरू की। उस बेचारे ने जान बचाने की खातिर भागकर एक झोपड़ी में पनाह ली। जागीरदार जालिम ने बाहर से कुंडी लगाई और झोपड़ी को आग लगा दी। फौरन ही आग भड़क उठी और सारा झोपड़ा अलाव यानी घास फूस का जला हुआ मलवा का सूरत इख्तियार कर गया। वो गरीब झोपड़ी के अंदर जलकर भस्म हो गया। किसी की मजाल थी के वो एक जागीरदार से मुंह आता, उसके खिलाफ कहीं फरियाद करता या कानून का दरवाजा खटखटाता। कुछ दिन इस वाक्या का कुर्बो जवार में सरगोशियों के अंदाज में चर्चा हुआ और कुछ गहरी खामोशी छा गई। करना खुदा का ये हुआ, चंद ही हफ्तों के बाद जागीरदार के घुटनों में तकलीफ शुरू हो गई। नौबत यहाँ तक पहुँची के उस शख्स के लिए एक इंच भी हरकत करना मुमकिन न हुआ। गोया के सारा काम मुलाजिम ही करता। शब और रोज इसी तरह गुजरते। मई का महीना था, गंदम पक गई थी और जमीनों पर थ्रेशर लगे हुए थे। उसने घर में इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं बहुत दिन से बाहर नहीं गया हूँ, क्या ही अच्छा हो कि मुझे बाहर ले जाया जाए, हवा खोरी भी हो जाए और गंदम निकलते हुए भी देख लूंगा और तबीयत भी बहल जाएगी। चुनांच ड्राइवर उसे लेकर चल पड़ा। जागीरदार का रकबा चूंकि बहुत वसी था, इसलिए गाड़ी को थ्रेशरों के तरफ ले जाते हुए अच्छा खासा फासला तय करना पड़ा। लेकिन एक मकाम पर जाकर गाड़ी रुक गई। आगे गन्ने के खेत थे, थ्रेशर दूसरी जानिब में थी। गाड़ी का मजीद आगे जाना मुमकिन न था। जहाँ गाड़ी जाके रुकी वहाँ से गन्ने काटे जा चुके थे और हर तरफ गन्नों के खुश्क पत्ते बिखरे हुए थे। अब गाड़ी आगे ले जाने की कोई सूरत नहीं है। ड्राइवर ने पूछा कि आपका क्या हुक्म है, क्या किया जाए। जागीरदार ने कहा, कोई बात नहीं, तुम गाड़ी को यहीं छोड़ दो, एसी चल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम जाओ, जाकर देखभाल करो थ्रेशरों पर काम की क्या रफ्तार है, कितनी गंदम से गल्ला निकल आया और कितनी बाकी है। मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करता हूँ। चुनांच ड्राइवर चला और नजरों से ओझल हो गया। अब कराइन ये है कि जागीरदार ने माचिस जलाई, सिगरेट जलाया और जलती हुई माचिस बाहर फेंक दी। गाड़ी के नीचे चारों जानिब गन्ने के पत्ते बिखरी हुई थी और ये तो आग पकड़ने की बहाना मांगती है। गाड़ी के चारों तरफ अलाव भड़क उठा और देखते ही देखते वो जागीरदार 2-2.5 लाख की रकम और बेहद कीमती कार समेत जलकर कोयला हो गया और कोई भी उसे बचा न सका। दरअसल ये वही जगह थी जहाँ वो झोपड़ा था, जिसमें एक बेयारो मददगार गरीब मजारे को जलाकर भस्म किया गया था। हमें सोचना होगा कि हम किन आमाल में मसरूफ हैं। अगर हम नेकी करेंगे, सच बोलेंगे, माफ करेंगे, सिला रहमी करेंगे तो अल्लाह ताला हमें दुनिया व आखरत में इज्जत देगा, और अगर हम जुल्म झूठ गीबत चुगली खयानत में पड़े रहेंगे तो अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकेंगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम नेकी करें, अदल करें, रहम करें और बुराइयों से बचें।
1: सामीन, आप सुन रहे थे मकाला बातें जिनसे ज़िंदगी सवरती है। मौजू था मकाफात यानी बदला। ये दुनिया बदले की जगह है, जो जैसा करता है उसे वैसी ही चीज़ उसे बदले में मिलती है। हर अमल का रद्द अमल होता है। मकाला निगार थे जनाब शमशाद आलम। अब चलते हैं अगली पेशकश की जानिब और शेर व नगमा के तहत कलाम शायर में आज अपना कलाम पेश कर रहे हैं जनाब फारूक अहमद। मुलाहजा हो।
2: ना शरीफ का मतला नज़ कर रहा हूँ, मुलाहजा फरमाएं। जब

हो गया। और ये भी शेर खुसूसियत के साथ नाजरीन पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाए कि उसे को दुनिया की हर एक खुशी मिल गई, उसे को दुनिया की हर

गया। आखिरी शेर नस कर रहा हूं मुलाजफ मैं, के मुंह के बल गिर गए सारे काबा के बुत।

0: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: आकाशवाणी देश भर के रेडियो श्रोता संघों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर रही है ताकि आपसे संवाद और भी मजबूत हो सके। यदि आप बिहार में किसी रेडियो श्रोता संघ से जुड़े हैं तो कृपया अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम, संचालक का नाम एवं पता, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की प्रामाणिक जानकारी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। हमारा ईमेल पता है pcpatna.com@gmail.com। आप यह जानकारी अपने नजदीकी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
2: अब नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481। मोबाइल नंबर है 9430029353।
3: साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल, हमर गर्दन काटि लेल आ अपने बनल मालूम।
1: गुआ सुपारी के कहल जात अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजित मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: अब नन्हे मुन्हे बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481, मोबाइल नंबर है 9430029353।
4: घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक ही क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
5: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। श्रोताओं, आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कुछ सदाबहार नगमे। सबसे पहले सुनिए फिल्म आराधना का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। बोल आनंद बख्शी के और संगीत दिया है R.D. वर्मन ने।

किशोर कुमार को अभी आप सुन रहे थे फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में। शब्द रचना अनजान की और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म राजकुमार से लता मंगेशकर के स्वर में, संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का।

की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न

रवि के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम था चाइना टाउन। अब हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर के स्वर में हीर रांझा फिल्म का गीत, जिसे लिखा है कैफ़े आजमी ने और संगीत मदन मोहन का। मिलो न

फिल्म प्रेम पर्वत का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। जान निशार अख्तर के बोल थे और संगीत दिया था जावेद ने। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति किशोर कुमार की आवाज में फिल्म पराया धन से। लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत निर्देशन आर डी बर्मन का।

फिल्म जिंदगी और मौत का गीत अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में। शकील बदायूनी के लिखे इस गीत को संगीत दिया था सी रामचंद्र ने। आइए अब सुनते हैं बप्पी लाहिरी एवं आशा भोसले की आवाजों में प्रेम प्रतिज्ञा का गीत, जिसे लिखा है इंदिवर ने और संगीत दिया है बप्पी लाहिरी ने।

दिया था नदीम श्रवण ने। अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म पहचान का ये गीत मुकेश एवं सुमन कल्याणपुर की आवाजों में, बोल इंदिवर के और संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। श्रोताओं, 11:10 से आप सुनेंगे राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में आयोजित होने वाले 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह का आंखों देखा हाल, जिसका प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से कर आपको सुनवाएंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा

0: यागाश वाणी है। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के सभागार में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। आज का यह समारोह भारत की समृद्ध वस्त्र परंपरा, बुनकरों की अद्भुत कला और हमारी सांस्कृतिक विरासत को समर्पित है। इस गरिमामय अवसर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, देशभर से चयनित उत्कृष्ट हथकरघा बुनकरों और शिल्पकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसका विवरण देने के लिए मैं हूं शोएसीआर खान और मेरे साथ हैं कौशिक राय। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आपका।
1: नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर डियर लिसनर्स ट्यून्ड इन एंड वी एक्सटेंड आवर हार्टिएस्ट ग्रीटिंग्स ऑन द 12th नेशनल हैंडलूम डे। The Ministry of Textiles, Government of India, is celebrating the 12th National Handloom Day today with the national function at the Rashtrapati Bhavan Cultural Centre, New Delhi. The function celebrates India's rich handloom heritage and recognises the contribution of the handloom weaving community to the nation's cultural and economic development. The Honourable President of India, Srimati Draupadi Murmu, will grace the occasion as the chief guest. The function will also be attended by the Union Minister of Textiles, Shri Giriraj Singh, Union Minister of State for Textiles, Shri Pavitra Margarita,

0: Shrimati Neelam Shami Rao, Secretary Textiles, and Dr. M. Bina, Development Commissioner, Handlooms. The celebrations will also be attended by Sant Kabir Handloom Awardees and National Handloom Awardees and their family members. Handloom weavers from across the country, members of the Award Selection Committee, eminent personalities associated with the handloom sector, senior government officials, media representatives, and other distinguished guests. A major highlight of the celebrations is the presentation of the Sant Kabir Handloom Awards and the National Handloom Awards for the year 2025. A total of 22 awards comprising 3 Sant Kabir Handloom Awards and 19 National Handloom Awards will be conferred upon outstanding handloom weavers for their outstanding craftsmanship, innovation and contribution to the preservation of India's handloom traditions. The function will also witness the release of 4 commemorative postage stamps celebrating India's rich and diverse handloom weaving traditions. 2 publications will also be unveiled by the Honorable President: Earth, Root, Thread, All Dyed Handloom Textiles of Central India, and the Handloom Awards Book 2025 will be unveiled during the function. An exhibition showcasing award-winning handloom products has been organized on the sidelines of the events. Visitors here will have the opportunity to witness live demonstrations of traditional kani weaving and wall hanging weaving, providing a glimpse into the diversity and craftsmanship of India's handloom traditions.
1: Mananiya Rashtrapati Shrimati Draupadi Murmu aaj राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान प्रतिष्ठित हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस समारोह में केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह, वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति, हथकरघा उद्योग के प्रतिनिधि, मास्टर बुनकर, डिजाइनर, निर्यातक, कारीगर और अन्य विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। भारत की समृद्ध हथकरघा परंपराओं के संरक्षण, संवर्धन और विकास में असाधारण योगदान के लिए कुल 22 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार विजेता और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार विजेता शामिल है। वस्त्र मंत्रालय ने संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की है। ये पुरस्कार हथकरघा क्षेत्र में बुनाई, नवाचार, डिजाइन विकास, विपणन, स्टार्टअप उद्योगों और उत्पादक कंपनियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के हथकरघा विपणन सहायता घटक के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं और हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय मान्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के दौरान ये पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठन को प्रदान किए जा रहे हैं जिन्होंने भारत की हथकरघा विकास को मजबूत करने और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस कार्यक्रम में देश भर से संसद सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग विशेषज्ञ, शैक्षणिक संस्थान, निर्यातक, डिजाइनर और हथकरघा बुनकर शामिल हो रहे हैं। हथकरघा पुरस्कारों का उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्टता, नवाचार और निरंतर प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करना है। ये पुरस्कार उत्कृष्ट शिल्प कौशल, पारंपरिक कौशल को संरक्षित करने हेतु आधुनिक तकनीकों को अपनाने, उत्पाद विविधीकरण, डिजाइन नवाचार और बुनकर समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान को मान्यता देते हैं। अगर बात करें संत कबीर हथकरघा पुरस्कारों की, तो ये उन हथकरघा बुनकरों के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान है जिन्होंने असाधारण शिल्प कौशल और भारत की बुनाई परंपराओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए आजीवन समर्पण दिखाया है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन असाधारण तकनीकी कौशल, नवाचार, इस क्षेत्र में निरंतर योगदान, पारंपरिक बुनाई के तरीकों को बढ़ावा देने, कारीगरों को मार्गदर्शन देने और समुदाय के विकास के लिए प्रयासों के आधार पर किया जाता है। ये जो संत कबीर हथकरघा पुरस्कार है।

इसमें शामिल है एक सोने का सिक्का, तामपत्र, शॉल, प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार उन हथकरघा बुनकरों और हितकारकों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट रचनात्मक गुणवत्ता, नवाचार और उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। ये पुरस्कार कारीगरों और संस्थानों को भारत की विविध हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करते हुए शिल्प कौशल, उत्पाद विकास और बाजार में पहुंचने वाले मानकों को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। बुराई श्रेणी के पुरस्कार विजेताओं का चयन जोनल मुख्यालय और केंद्रीय स्तर की चयन समितियों के माध्यम से एक कठोर बहुस्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है और इन समितियों में अनुभवी पेशेवर तकनीकी विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं जो निर्धारित पात्रता मानदंडों और मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर नामांकनों का आलंकन करते हैं। डिजाइन विकास, विपणन, स्टार्टअप उद्यमों और उत्पादक कंपनियों से संबंधित श्रेणी

0: 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन को नई दिशा मिली थी। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के संकल्प ने भारतीय हरकतगा उद्योग को नई ऊर्जा प्रदान की। उसी ऐतिहासिक विरासत के सम्मान में वर्ष 2015 से हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र का वातावरण बहुत ही गर्मीमय और अत्यंत भव्य दिखाई दे रहा है। सभागार को देश के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक हथकरघा कलाकृतियों, रंग बिरंगे वस्त्रों और पुष्प सज्जा से सुसज्जित किया गया है। देशभर से आए बुनकर, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, वस्त्र मंत्रालय के अधिकारी, डिजाइन विशेषज्ञ और अनेक विशिष्ट अतिथि इस समारोह में उपस्थित है। भारत की पहचान उसकी विविधता में निहित है और यही विविधता हमारे हथकरघा उद्योग में भी दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ी विश्व भर में अपनी महीन जरी बुनाई के कारण प्रसिद्ध है। तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ियां अपनी शुद्ध रेशमी बुनाई के कारण एक विशेष स्थान रखती हैं। वहीं मध्य प्रदेश की चंदेरी और महेश्वरी साड़ियां अपनी हल्की बनावट और उत्कृष्ट डिजाइन के लिए जानी जाती हैं। तेलंगाना की पोचमपल्ली इकट, गुजरात का पटोला, पश्चिम बंगाल की बालूचरी और जामदानी, असम का मूंगा रेशम और कश्मीर का पश्मीना, ये सभी भारतीय बुनकर की अद्भुत कला के जीवंत उदाहरण है। हथकरघा उद्योग भारत में कृषि के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने वाले सबसे बड़े पारंपरिक क्षेत्रों में से एक है। देशभर में लाखों परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि देशभर के सभी जो हमारे महिलाएं हैं वो कताई, रंगाई, बुनाई, डिजाइनिंग और विपणन, हर स्तर पर महिलाओं का योगदान इस क्षेत्र में दिखाई देता है। वहीं भारत का वस्त्र मंत्रालय हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, बुनकर सेवा केंद्र, डिजाइन विकास, कौशल उन्नयन और डिजिटल विपणन तथा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुनकरों को नई संभावनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इंडिया हैंडलूम ब्रांड जैसी पहल भारतीय हथकरघा उत्पादों की गुणवत्ता और प्रमाणिकता का प्रतीक बन चुकी है। थोड़ी देर में माननीय राष्ट्रपति 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ये पुरस्कार प्रदान करेंगे।
1: Yes, you are absolutely right. And today, the Honorable President of India will confer the Sant Kabir Handloom Awards 2025 to two awardees, the Komala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Award 2025 to one awardee and National Handloom Awards 2025 to 12 awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay National Handloom Award 2025 to two awardees, the National Handloom Award for Design Development for the year 2025 to two awardees, the National Handloom Award for Marketing of Handloom Products for the year 2025 to two awardees, and the National Handloom Award for Startup or Producer Company for the year 2025 to one awardee. And it is indeed a proud moment for them. And these awardees will also interact with the Honorable President. And in just a short while from now, we shall be taking you over to the Rashtrapati Bhavan Cultural Center, where the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, will confer the Sant Kabir Handloom Awards 2025 and the National Handloom Award 2025. We take you over to Rashtrapati Bhavan Cultural Center.
2: Namaskar, Maninye Rashtrapati Ji, Evam Manch Par Biraje Vishisht Atitigan. Aaj 12ve Rashtriya Hatkarga Divas Samaroh Ka Shubharam, Hum Sarvapratham Deep Prajwalan Ke Saath Karenge. मैं माननीय राष्ट्रपति जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूं कि वे दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का शुभारंभ करें एवं मंच पर विराजे सभी माननीय अतिथिगण, वस्त्र मंत्री जी, आदरणीय विदेश एवं वस्त्र राज्य मंत्री जी, वस्त्र सचिव एवं विकास आयुक्त हथकरघा से भी अनुरोध करती हूं कि वे कृपया दीप प्रज्वलन में शामिल हों।

0: धन्यवाद। और अब इस समारोह का आविर्भाव करते हुए मैं सर्वप्रथम श्रीमती नीलम शमी राव, सचिव वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया अपना स्वागत भाषण दें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, डिस्टिंग्विश्ड अवॉर्डीज, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, मेंबर्स ऑफ द हैंडलूम फ्रेटर्निटी, इंडस्ट्री लीडर्स, डेवलपमेंट पार्टनर्स, देवियों और सज्जनों, मैं इस 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर माननीय राष्ट्रपति जी का स्वागत करती हूं। मैं स्वागत करती हूं देश के सभी बुनकर भाइयों और बहनों का। इट इज अ प्रिविलेज टू जॉइन यू ऑल in celebrating the 12th National Handloom Day, an occasion that honors the extraordinary contribution of India's weaving community and reaffirms nation's collective commitment to strengthen the spirit of Swadeshi. The handloom sector, a custodian of our civilizational heritage, Grameen रोजगार का साधन, महिलाओं के आगे रखे हुए डेवलपमेंट का सूत्रधार और सस्टेनेबल प्रोडक्शन की धुरी, यह 35 लाख वीवर्स और उससे जुड़े हुए लोगों को सपोर्ट करता है। मंत्रालय अपनी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में हैंडलूम डेवलपमेंट की दुई पक्षीय या दो तरीके की ऑब्जेक्टिव्स पर काम करता है, जहां पर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव, रेजिलियंट और फ्यूचर रेडी हैंडलूम इकोसिस्टम की भी हम बातचीत करते हैं। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम और रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम के माध्यम से हम लाखों बुनकरों
2: कब्स। हेलो हेलो, देख रहे हो
3: आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक गेन सभागार में 12वें राष्ट्रीय हैंडलूम पुरस्कार दिए जा रहे हैं।
1: 1.5 लाख वीवर्स हैव बीन ऑनबोर्डेड ऑनटू द इंडिया हैंडमेड ई मार्केटप्लेस। हैंडलूम हार्ट्स, कॉटेज, कुंज have been repositioned as a professionally curated year-round platforms to reach out to the consumers and bring the best of handlooms and handicrafts to the world. The formation of 200 handloom producer companies across the country has enabled weavers to work together professionally, access markets more effectively and achieve economies of scale. वीव द फ्यूचर के तहत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड डिजाइन टूल्स, उनके द्वारा बनाए गए ट्रेडिशनल मोटिव्स को रीइमेजिन करने की चेष्टा और ग्लोबल बाजार के अनुरूप तैयार किए गए डिजाइंस, वाइल्ड डिजिटल कैटलॉगिंग एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आर कनेक्टिंग लूम्स इन रिमोट विलेजेस डायरेक्टली टू कस्टमर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। क्यू आर बेस्ड ऑथेंटिकेशन would

0: But would provide traceability, ensuring that the story, skill, and heritage behind each weave reaches with complete transparency and trust. Institutional partnerships remain essential to this journey. Initiatives like Weave the Future are positioning India's handloom tradition as a global leader in sustainability, championing circularity, responsible production, innovative designs, and the slow fashion. Our collaboration with organizations such as UN Women, academic institutions like IITs, design schools, NIFT, and research bodies has enabled new approaches. The growing recognition of more than 100 geographical indicators tagged handloom products has also provided larger, distinct, and unique identity. In the vision of Viksit Bharat 2047, the handloom sector stands as a shining tradition and progress, with technology as an enabler and weavers at the heart of journey. It is building a future where this legacy of handloom leads the world. Aaj is Rashtriya Hathkarga Divas par, main aap sabhi ko apna sincere appreciation deti hu, rajya sarkaron ko bhi, implementing agencies ko bhi, development partners aur industry stakeholders ko bhi, par sabse zyada un bunkar behnon aur bhaiyon ko jinke bune hue taane bano se hamara jeevan rangeen jeevant aur ek memory ke saath juda rehta hai. I once again welcome the Honorable President Madam and everybody on this occasion of the 12th Handloom Day. Thank you. Jai Hind.
1: Thank you, ma'am, for this warm welcome address. अब मैं भारत सरकार के माननीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से निवेदन करती हूं कि वे माननीय राष्ट्रपति महोदय का स्वागत एवं सम्मान करें. आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर श्री गिरिराज सिंह टू काइंडली फेलिसिटेट द ऑनरेबल प्रेसिडेंट.
2: और अब केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह माननीय राष्ट्रपति का शॉल पहनाकर सम्मान कर रहे हैं. तालियों के साथ सबने उसका अभिवादन किया.
1: धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी. और अब हम बढ़ते हैं आज के समारोह के इस महत्वपूर्ण भाग पर, जो है संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और वर्ष 2025 के राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कारों की ओर. ये प्रतिष्ठित पुरस्कार उन कुशल बुनकरों और कारीगरों को सम्मानित करते हैं जिनकी लगन, इन्वोकेशन और कलात्मकता ने हमारी राष्ट्र की हथकरघा विरासत को अत्यंत समृद्ध बनाया है. मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूं कि वे संत कबीर हथकरघा पुरस्कार, जिसमें 3 पुरस्कार जिसमें पदक और ताम्रपत्र शामिल है, और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, ये कुल 21 पुरस्कार हैं जिसमें ताम्रपत्र शामिल है, इनके विजेताओं को अपने कर कमलों द्वारा सम्मानित करें.
2: और अब 12वें राष्ट्रीय
1: सर्वप्रथम शुरुआत करेंगे संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2025 के साथ.
2: माननीय राष्ट्रपति
1: बुनकर वर्ग से आ रहे हैं ओडिशा से श्री राम मेहर, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए. आपके उत्पाद का नाम है विजित पार खादी साड़ी. मेडल और ताम्रपत्र के साथ संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जा रहा है श्री राम मेहर. हमारे अगले विजेता हैं बुनाई वर्ग से ही असम से आई श्रीमती रुनिमा चेतिया चौधरी. आपका विशेष उत्पाद है मूंगा सिल्क साड़ी.

0: श्वेतांबरी अव जामदानी साड़ी। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 की ओर। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बुनाई वर्ग के लिए ही तमिलनाडु राज्य से आए अन्नामलाई मारीमुतो। आपका विशेष उत्पाद है कांचीपुरम रेशमी साड़ी और ये जॉइंट अवार्ड है। और इसी जॉइंट अवार्ड के दूसरे विजेता हैं कुमारन बलरामन। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आपका भी विशेष उत्पाद कांचीपुरम रेशमी साड़ी। हमारे अगले विजेता बुनाई वर्ग से ही तेलंगाना से आए श्री गंजी वेंकटेश। आपका विशेष उत्पाद इक्कत साड़ी। बुनाई के लिए ही अगले विजेता आंध्र प्रदेश से श्री मरकला नटराज। जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए कॉटन टसर हाफ और हाफ जामदानी साड़ी। आपका विशेष उत्पाद। अगले विजेता उत्तर प्रदेश से बुनाई के लिए जनाब नसीम अंसारी। आपका विशेष उत्पाद इश्कत गुलदस्ता जामदानी साड़ी। जम्मू और कश्मीर से हमारे अगले विजेता बुनाई वर्ग से ही ये भी एक जॉइंट अवार्ड है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जनाब फयाज अहमद वानी। आपका विशेष उत्पाद चांददार कानी शॉल। और इसी जॉइंट अवार्ड के दूसरे विजेता जनाब मंजूर अहमद हजाम। हमारे अगले विजेता हैं मध्य प्रदेश से बुनाई के लिए श्री कमल गौड़। आपका विशेष उत्पाद महेश्वरी साड़ी। पश्चिम बंगाल से आए हमारे अगले विजेता हैं श्री अभिनवा बसक। फॉर 500 काउंट मसलिन खादी जामदानी साड़ी।
1: आपको बता दें राष्ट्रपति भवन के सभागार के सांस्कृतिक केंद्र में इस वक्त राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 का वितरण किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों द्वारा।
2: Yes, you are absolutely right. And the Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, has already conferred the Sant Kabir Handloom Award to two awardees, Shri Ram Meher from Odisha for weaving. And the handloom product was Bichitpar Khadi Sadi. And to Shri Shah Mohammad Ansari of Uttar Pradesh on the category Languishing Weaves. And the product was Zarbaft Shwetambari Tissue Jamdani Sadi. The Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Award 2025 was conferred upon Shrimati Runima Chetia Choudhury of Assam for the category Weaving, and her product was Natural Dyed Muga Silk Sadi. The National Handloom Awards 2025 are being conferred upon 12 awardees, Shri Annamalai Marimuthu of Tamil Nadu for weaving the Kanchipuram Korvai silk sari, and this award jointly was also conferred upon Shri Kumaran Balaraman. Shri Ganji Venkatesh of Telangana got the National Handloom Award for Ikat Sari. Shri Murukala Nataraju of Andhra Pradesh for his product Cotton Tasar Half and Half Jamdani Sari. Shri Naseem Ansari of Uttar Pradesh for the Ikat Guldasta Jamdani Sadi. Shri Manzoor Ahmed Hajam and Shri Fayyaz Ahmed Wani of Jammu and Kashmir for the Chand Dar Kani Shawl, and Shri Kamal Gaud of Madhya Pradesh for the Maheshwari Sadi. Shri Abhinav Boshak of West Bengal for the Khadi Muslin Jamdani Sadi. Shri Prafullo Kumar Sahu of Odisha for the Jagat Singhpur Sadi. Shri Bariga Ram of Rajasthan, a young weaver, for the Pattu Sadi. And Shri Vankar Keshabhai from Uttar Pradesh for the Tangalia Dupatta.

0: And the Honorable President is conferring the various awards to the awardees on the National Handloom Day 2025, and she is conferring the National Handloom Awards 2025.
1: Marketing training se hi agle vijeta hain Tamil Nadu se Messrs 31 Kovilwadi Hatkarga Bunkar Sahkari Samiti. और आज का आखिरी पुरस्कार असम से स्टार्टअप उद्यम यानी निर्माता कंपनी के लिए मेसर्स मार्वेला एसोसिएट्स. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट कंक्लूड्स आवर अवार्ड्स प्रेजेंटेशन. विद दैट वी कंक्लूड द अवार्ड्स लिस्ट. आपके उत्कृष्ट कार्य संपूर्ण हथकरघा समुदाय और राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है. सभी पुरस्कार विजेताओं को हमारी हार्दिक बधाई. आज हम मध्य भारत के आले से रंगे हथकरघा वस्त्र नामक एक विशेष कॉफी टेबल बुक का अनावरण भी यहां पर होने जा रहा है. इसका शीर्षक है धरती यानी अर्थ, जड़ यानी रूट्स और धागा यानी थ्रेड. मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूं कि वे अपने कर कमलों द्वारा इस कॉफी टेबल बुक का अनावरण करें.

0: धन्यवाद। ये प्रकाशन हमारे हथकरघा कारीगरों के कौशल, रचनात्मकता और दृढ़ता के लिए एक स्थायी श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करेगा। और अब हम हथकरघा पर आधारित चार स्मारक डाक टिकटों के विमोचन की ओर अग्रसर हैं। इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं श्री जितेंद्र गुप्ता, महानिदेशक डाक सेवाएं। आपसे अनुरोध है, कृपया मंच पर आएं और माननीय राष्ट्रपति जी को हथकरघा पर जारी स्मारक डाक टिकट की प्रथम एल्बम विमोचन हेतु भेंट करें।
1: And the Honorable President of India is being presented with this special commemorative postage stamps, and the Honorable President is releasing these commemorative postal stamps, which have been unveiled by the Department of Post, Government of India. These are all rupees 5 postal stamps, which depict the rich heritage of India's handlooms.

0: संवेदनशीलता और जनसभा के प्रति समर्पण 140 करोड़ देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एज वी गेदर हियर टुडे वी रिमेंबर 7 अगस्त 1905 व्हेन द स्वदेशी मूवमेंट बिकेम अ सिंबल ऑफ इंडियाज रिजॉल्व फॉर सेल्फ रिलायंस। मोर देन अ सेंचुरी लेटर अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ परमादरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, that spirit continues through the vision of Atmanirbhar Bharat, vocal for local and local for global, creating new opportunities for our weavers and artisans. Maniya Rashtrapati ji, पिछले वर्ष राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार समारोह के अपने संबोधन में आपने जीआई टेक के महत्व पर भी विशेष बल दिया था और अधिक से अधिक पारंपरिक उत्पादों को जीआई पहचान दिलाने का आह्वान किया था। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए दो दिन पहले ही जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 समिट का सफल आयोजन किया गया, जिसने जीआई इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने की भी दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। साथ ही ये बताते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2014 के बाद हथकरघा एवं हस्तशिल्प श्रेणी में जीआई पंजीकरणों में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। The true credit for the enduring legacy and growing global recognition of India's handloom and handicraft traditions belong first to our generations of weavers and artisans who have preserved this priceless heritage for thousands of years. Under the constant guidance of Honorable Union Minister of Textiles, Sri Giriraj Singh Ji, and through the dedicated efforts of the Secretary of Textile, DC Handlooms, and the entire Ministry of Textile team, this legacy continues to reach the new heights. As I conclude, I would like to extend my heartfelt congratulations to all the recipients of Sant Kabir Handloom Awards and the National Handloom Awards for your craftsmanship, innovation and dedication. You continue to preserve our weaving traditions while inspiring future generations. Antata, aiye hum sab milkar ye sankalp lein ki hamare bunkaron ko samman, pehchan aur naye avsar nirantar milte rahe tatha hamare bunkaron dwara buna gaye pratyek dhaga vikshit Bharat ke sapne ko aur adhik sashakt kare. Dhanyawad, Jai Hind.
1: धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी भाषण के लिए आपका धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूं श्री गिरिराज सिंह जी को। माननीय वस्त्र मंत्री भारत सरकार, आपसे अनुरोध है कि भारत के हथकरघा क्षेत्र के भविष्य के लिए अपना संबोधन और दृष्टिकोण साझा करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
2: भारत माता की वंदे वंदे। आज 12वें हस्तकरघा दिवस के अवसर पर देश के राष्ट्रपति, हम लोगों के आन बान शान, भारत की संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक और हमारे हैंडलूम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आज हम पूरे देश और दुनिया में आपका नाम लेता हूं, आपका मैं स्वागत भी करता हूं। मैं जब मंच पर बैठे हमारे सहयोगी राज्य मंत्री मानवर मार्गरेटा जी पवित्रा, हमारी सचिव नीलम शम्मी राव जी, हमारी डीसी हैंडलूम श्रीमती एम बीना जी और सभी यहाँ आए हुए हमारे विजेता बुनकर भाइयों, अधिकारी, प्रेस मीडिया, सभी का मैं सम्मान करता हूं। जब मैं 12वें हस्तकरघा दिवस की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने अपने अतीत को खो दिया है।

0: क्योंकि धन्यवाद मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को देता जिन्होंने 14 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके मन में लगा जो हैंडलूम हमारे आजादी के पहले से हजारों वर्ष से हमारे सभ्यता और संस्कृति का एक महान कृति है उसको शायद नजरअंदाज किया गया। नजरअंदाज इस क्यों किया गया मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जब हमारे सहयोगी मित्र कह रहे थे 1905 की बात, उसी 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन के दिन को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 7 अगस्त को ये पुनर्स्थापित करने का काम किया, क्योंकि ये भारत के विकास को विरासत के साथ जोड़ के देखते हैं। ये हमारी ऐसी विरासत जिसे हम याद करते हैं कि भारत की विरासत में खादी और हैंडलूम एक अंगूठी से बंगाल का मुस्लिम मसलिन पूरे पास हो जाता था, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने अंग्रेजों ने इस पे प्रहार किया हमारी टेक्नोलॉजी को, तो हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन हमारे पूर्वजों ने मैनचेस्टर के कपड़े को बहिष्कार करके और इन्हीं बुनकर भाइयों के कृति पर हम पूरे देश को एक जन आंदोलन में बदलने का काम किया।
1: एंड वी आर ब्रिंगिंग यू द नेशनल हैंडलूम अवार्ड्स फ्रॉम द राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर। The Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, conferred the National Handloom Awards 2025 to the awardees. And now the Minister for Textiles, Shri Giriraj Singh.
0: Jab 10 saal baad aata to 43 lakh, aur jab uske baad 10 lakh aata to 35 lakh, aakhir kyon? Aaj main kuch naujawan भाइयों को देखा, मेरे अंदर वो प्रसन्नता जो मैं कह नहीं सकता। और मेरा लक्ष्य है कि भारत के बुनकर भाइयों के लड़के और लड़की इस पेशा में कैसे आए, ये मेरी चिंता है। और मेरी चिंता है ये तब होगा जब मैं इनके संतति को, इनको अच्छी रकम मिले। ये तो संत कबीर हैं, ये हैंडलूम अवार्ड है, अवार्डी के कपड़े को तो मैडम मैं बीड भी कर रहा हूं, जिससे बुनकर भाइयों से पूछता हूं संत कबीर इस साड़ी का कीमत कितना लेंगे, तो 1,90,000। और कॉटेज में लोग लेकर के जाते हैं, लेकिन आम बुनकरों की पीड़ा चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, जिस देश का ले, वो आज उनकी पीड़ा को कहना उचित नहीं लगता। लेकिन जो संकल्प मोदी जी के नेतृत्व में लिया है, क्योंकि जब हम सूती कपड़े को देखते हैं तो बाजार में जाता है तो लोग उसे पावर लूम से कंपेयर करते, फिर उसकी कीमत देखते। हमने तय किया है आने वाले दिन में हम निश प्रोडक्ट बनाएंगे और जीआई जो प्रोडक्ट है उसको हम प्रमोट करेंगे। केवल निश प्रोडक्ट बनाएंगे नहीं, हमने गुवाहाटी में हम लोगों ने विभाग ने हमने मॉडल को स्थापित करने का

काम किया है। हमारे देश में 29 बीवर सर्विस सेंटर है, 3 एक्सटेंशन है, 11 राज्य और केंद्र मिला के IISTE है और 20 निफ्ट का कैंपस है। मैं सबों को लेकर के, लेकिन फर्स्ट फेज में मैं सर्विस सेंटर को, IISTE को, एक्सटेंशन को, कि किसी भी बुनकर भाइयों की आमदनी मिनिमम 50,000 रुपया मासिक से कम नहीं हो। ये मोदी जी की पीड़ा है, ये गरीबों का, और ये होगा, ये करना शुरू कर दिया हूं गौहाटी से, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। दूसरा आपसे निवेदन करता हूं, इसमें हम अपस्किलिंग करते हैं। अपस्किलिंग करने के बाद अगर लूम नहीं है तो लूम हम देते हैं, लूम अगर है उनको सूता देंगे, उनको डिजाइन देंगे, उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो नहीं कर पाएंगे उनकी मार्केटिंग भी करेंगे। अगर ये हमारे बुनकर भाइयों को ठीक लगता है तो मुझे तालियों की गड़गड़ाहट से सब विभाग को एक दें। और ये शुरू कर दिया है, अभी 25,000 से 30,000 रुपये गौहाटी विभिन्न सर्विस सेंटर क्या दे रहे हैं 6 राज्यों में इसको फर्स्ट फेज में, और लक्ष्य है 2030-31 तक कोई ना बचे। दूसरा तय किया, आज तक इनकी पहचान कार्ड नहीं था, मुख्य कानून छो था, जो कह दिया सर्वे में वही हम लिख लेते थे, लेकिन अब हम लोगों ने 2025 के जनवरी से हमने इनका पहचान कार्ड बनवाया। 35 लाख आए, लेकिन जो नई गतिविधि हुआ है, हम उस पहचान को ऑनलाइन छोड़ा है, और केवल ऑनलाइन नहीं छोड़ा है बल्कि हर दिन वो, और मुझे खुशी है अब 65 लाख से हम 35 लाख पहुंच गए, अब 35 से हम 65 रिवर्स में जाएंगे, लगभग 1 लाख नए बीवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये हमारा संकल्प है। हमारा दूसरा संकल्प है कि बीवर भाई अपने बच्चों को IISTE में दें, पढ़ाएं, फिर निफ्ट में उसको हम प्रमोट करेंगे, और ये 2 लाख रुपया इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए भारत सरकार टेक्सटाइल डिपार्टमेंट देने का काम करेगा। इसलिए ये पीड़ा है। आज कई युवक जब IISTE से पढ़ करके निफ्ट जाते हैं, अपना कारोबार करते हैं, वो 150 लोगों को रखते हैं। मेरा उद्देश्य है मास्टर बीवर यानी बिचौलिया, मास्टर बीवर से बीवर का मुक्ति दिलाना। उसके लिए ई कॉमर्स रखा है, उसके लिए विदेशों में EPCH से के साथ जोड़ करके अभी शुरुआत की है, 50 हैंडलूम, 50 हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि इस बार जो योजना हम बना रहे हैं वो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट दोनों को मिला करके, हैंडलूम की साड़ी बन गई, अगर उस पर पैच वर्क हुआ तो वो हैंडीक्राफ्ट हो जाता। तो हमने तय किया है दोनों को मिला करके एक नए तरह से हम बीवर भाइयों के जिंदगी में परिवर्तन करेंगे। अभी राष्ट्रपति महोदया अभी IIT दिल्ली से MOU किए हैं, केवल MOU नहीं किया है, अभी 100 बीवर से जस्ट शुरू किया है एक एप्लीकेशन मोबाइल के थ्रू, उसमें हम कार्बन फुटप्रिंट कितना कैप्चर कर रहे हैं वो उनको दिखाई देगा, बीवर को दिखाई देगा कि उनकी एफिशिएंसी

0: सृष्टि कितना आज के काम का है उनको दिखाई देगा। एआई टूल्स भी लगा रहेगा, उनके सिस्टम में कोई गड़बड़ी होगा तो एआई टूल उसको रोकेगा। इस तरह से टेक्नोलॉजी का सहारा, टेक्नोलॉजी का सहारा हम इनके जो लूम है लूम को परिवर्तित करेंगे। आसाम का एक शिवसागर जो जिला है वहां एक रिटायर्ड इंजीनियर ने लूम बनाया, अभी वो 70 से 80 ppm पर जा रहा है। उसने मुझे कहा है कि हम 180 ppm पर जाएंगे, पर मिनट 180 पिक जाएगा। लोगों ने कहा ये तो पावर लूम की तरह होगा, हम कहा टेक्नोलॉजी तो इसी को कहते हैं, जब टेक्नोलॉजी होगा तभी हम ये करेंगे, हम मैकेनिकल चेंजेज लाएंगे। मैं इतना ही आपको वादा करता हूं कि टेक्स्ट
1: आपको बता दें 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के सभागार में ये समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें माननीय राष्ट्रपति ने हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। और आपको बता दें ये कई अलग अलग क्षेत्रों में ये पुरस्कार प्रदान किए गए, माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।
0: और जो मेरा लक्ष्य है पचलखिया भाई और बहन बनाना, 10 लखिया बनाना, इस संकल्प को पूरा करेंगे आपके नेतृत्व में, मैं यही कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपके उत्साहवर्धक संबोधन और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने और मजबूत करने में आपके सटीक नेतृत्व के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं माननीय राष्ट्रपति जी को 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया सभा को अपना संबोधन दें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बैठे बैठे, मैं कुछ कहने से पहले मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूँ और भारत की सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट अच्छे लोगों को दिया है, अच्छे एक मंत्री को दिया गया। मुझे लगता है टाइम का पाबंदी है, टेक्सटाइल ऊपर में बातें करने के लिए उनको एक दिन दिया जाए तो शायद कम होगा। इस समारोह में उपस्थित भारत सरकार में मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स श्री गिरिजाराज सिंह जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स श्री पवित्र मार्गरेटा जी, सेक्रेटरी टेक्सटाइल्स श्रीमती नीलम स्वामी राव जी, डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर एम बीना जी, गणमान्य अतिथियों, सभी अवार्डीज और सभी बुणाकार डिजाइनर देवियों और सज्जन, सभी को नमस्कार। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत आनंदित महसूस हो रही है। मैं देश के प्रतिभाशाली बुनाकारों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। जब हम यहाँ पे इधर आ रहे थे, एग्जीबिशन हम देखे, इतने सारे वैरायटीज देख के मुझे लगता है मुझे कोई ने

लिए मैडम आपका महिलाएं थोड़ा कम है, केवल 5 लोगों को दिया जाता है। मैंने बोली नहीं, हम लोग 100 लोगों को दिए नहीं, केवल 24 लोगों को दिए, हम सबको दिले 50 तो जरूर महिलाओं को मिलता है। इसने हमारे क्षेत्रीय विश्व संस्थाओं के संरक्षित भी किया है। हथकदा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है। हमारे ग्रामीणों और जनजातीय समाज ने प्रकृति के साथ सामंजस्य से जीने की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सदियों तक संजोय है। हथकरघा उस परंपरा का एक सशक्त उदाहरण है। प्रकृति के अनुरूप जीने की पद्धति की उपयोगिता आज समूची विश्व में स्वीकृति जा रही है। देवियों और स्वजनों, हथकरघा क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। मुझे बताया गया है कि इस क्षेत्र में देश की 35 लाख से भी अधिक आबादी संलग्न है। विशेष बात यह है कि इसमें 25 लाख से अधिक महिलाएं हैं, 35 से 25 महिलाएं हैं। उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें लगभग 2/3 कारीगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है। इस प्रकार ये क्षेत्र आजीविका सृजन के साथ साथ समावेशी विकास का भी एक सशक्त माध्यम बना है। देश इंडिपेंडेंट होने के कुछ साल बाद में धरती पे आई, स्कूल गई, जो असहयोग आंदोलन के टाइम महात्मा गांधी ने जिस बात गांव-गांव घूम के बोले थे, हम जो स्कूल में 15 अगस्त और 26 जनवरी में हम घूमते थे, प्रभात फेरी करते थे, वही गाना हम गाते थे। हम तो ओडिया में पढ़ाई की है, तो मैं थोड़ा ओडिया के दो पंक्ति बोलना चाहती हूँ। आज ही आसी अच्छी नुआ जुगांतर गांधी कही बोली बराबर, खाओ भात मुठे घर ढेंकी कुटा, पिंधो लुगा खंडे हाते काटी सुता। इट मीन्स आज नया युग आ गया है, इसीलिए जितने जमीन है, जमीन में खेती करो, अनाज उगाओ और अपना खाओ, अपना करो अपना खाओ। और कर्पास इतने उत्पादन होता है, इसीलिए वहां से थ्रेड निकालो और बुनाई करो और खुद का पहनो। आज भी मैं जो 7 क्लास तो पढ़ती थी, पर कितने साल हो गया है, लेकिन वो दो पंक्ति मेरे दिल में है, अभी भी मुझे याद है। इसीलिए आज जो देखती हूँ, केवल वो वाला मोटे वाला सूत नहीं, आज इतने फाइन फाइन कपड़ा बनाते हैं, कोई 1 लाख 2 लाख 5 लाख तो थे, तो यहीं पे तो शॉप है। हम विदेशों में नज़र क्यों डाले। देवियों और स्वजनों, संत कबीर हथकरघा पुरस्कार से आज सम्मानित हुए वरिष्ठ बुनाकार विशेष बधाई के पात्र हैं। इन सभी ने ही आपने दशकों के कामकाजी जीवन में केवल अपने कौशल को ही नहीं संवारा, बल्कि उन्होंने सैकड़ों बुनाकारों को प्रशिक्षित और प्रेरित भी किया है। बुनाकारों की नई पीढ़ी तैयार करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार पाने वाले सभी प्रतिभाशाली और कर्मठ बुनाकारों को भी मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर सुदूर दक्षिण तक देश के अनेक राज्यों की हथकरघा शैलियों के बेजोड़ उदाहरण का सर्जन उन कर्मठ बुनाकारों को किया है। इनके उत्साह और कौशल की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। हथकरघा का हमारे स्वतंत्रता संग्राम के गहरा जुड़ाव है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक शुभारंभ हुआ था। बंगाल विभाजन

0: के विरोध में शुरू हुए। इस आंदोलन का उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं, स्वदेशी उद्योगों और विशेष रूप से देश।
1: आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन के जो सांस्कृतिक सभागार है, इसमें माननीय राष्ट्रपति पुरस्कार वितरण के बाद संबोधित कर रही हैं।
0: मनाने जा रहे आ रही है। अब ये एक औपचारिक वार्षिक आयोजन भरी नहीं रहा, ये उत्सव है। हमारे देश की सांस्कृतिक एकता की इंद्रधनुष विविधता है। ये अवसर है सरकार और बुनकर समाज के उन साझे प्रयासों का याद करने हैं, जो भारत के हथकरघा सेक्टर को प्रीमियम क्वालिटी की छवि दे रहे हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि हथकरघा क्षेत्र में के बहुआयामी विकास के लिए सरकार ने विभिन्न हितधारकों के सक्रिय योगदान से अनेक योजनाओं और अभियान पिछले एक दशक से चली आ रही है। इसके सुपरिचालना आप सामने आने लगा है। मुझे ये भी बताया गया है कि हाल ही में भारतीय हथकरघा उत्पादों के एक विशिष्ट कलेक्शन को विश्व सूत्र वेबर्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड के रूप में वैश्विक ऑडियंस के सामने एक नए ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इससे भारतीय हैंडलूम को डिजाइन की एक नई विधा मिली है। देवियों और स्वजनों, हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई है। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनाकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं, जो माननीय मंत्री में ने हम लोगों के सामने उल्लेख किया। भारतीय हथकरघा सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय छवि निखर रही है, उसे और तेजी देते हुए इसे वेरीफाइड कल्चरल इकोनॉमी बनाने के लिए सरकार प्रयास लगातार बढ़ा रहे हैं। गृहसज्जा और होम टेक्सटाइल क्षेत्रों में हैंडलूम को विशेष आर्थिक बढ़त मिलने की संभावनाएं बन रही है। वोकल फॉर लोकल अभियान के द्वारा भी भारतीय हथकरघा को स्थानीय सीमाओं से निकालकर वैश्विक मंच पर, जैसे कि ग्लोबलाइज करने के लिए सोचा जा रहा है। इससे हमारे बुनाकारों और शिल्पकारों को आर्थिक समृद्धि के नए अवसर भी मिल रही है और विश्व के समक्ष भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उत्कृष्ट शिल्प कौशल की प्रतिष्ठा भी बढ़ रहे हैं। टेक्निक और नवाचारी डिजाइन के साथ अनेक प्रतिभाशाली युवा उद्यमी इस क्षेत्र में आने लगे हैं। सराव और कौशल से इस सेक्टर की बहुआयामी सफलता की लंबे उम्र सुनिश्चित हो सके। युवाओं, एंटरप्रेनर्स, डिजाइनर्स और स्टार्टअप्स पारंपरिक शिल्पों को नए ट्रेंड्स, ब्रांड्स और ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़कर इस क्षेत्र में नए अवसरों का सृजन कर सकते हैं। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान और वेवर सर्विस सेंटर्स के अंतर्गत कार्यरत डिजाइन रिसर्च सेंटर्स युवाओं को इस क्षेत्र से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि युवाओं को आधुनिक टेक्निकों के प्रशिक्षण करने के साथ साथ उनके नवाचार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस क्षेत्र के सतत विकास के लिए नई टेक्नोलॉजीज का उचित उपयोग आवश्यक है। आधुनिक डिजिटल सॉल्यूशंस के माध्यम से बाजार तक पहुंच को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। साथ ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय हथकरघा उत्पादों की पहुंच वैश्विक बाजारों तक और अधिक सशक्त बनाया जा सकती है। मुझे विश्वास है कि ये क्षेत्र देश के समावेशी विकास एवं आत्मनिर्भरता का सशक्त आधार बनेगा। मैं हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और सभी पुरस्कार विजेताओं को

0: The Honorable President also conferred the National Handloom Awards 2025 to the winners under the category of Sant Kabir Handloom Awards 2025 to two awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Awards 2025 to one awardee and the National Handloom Awards 2025 to 12 awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay National Handloom Award 2025 to two awardees and the National Handloom Awards for Design Development for the year 2025 to two awardees, the National Handloom Award for Marketing of Handloom Products for 2025 to two awardees and the National Handloom Award for Startup Producer Company for the year 2025 to one awardee. And she also released commemorative postage stamps, and the Honorable President of India also released two publications, Earth, Root, Thread, All Dyed Handloom Textiles of Central India and the Handloom Awards Book 2025.
1: आज का ये समारोह केवल पुरस्कार वितरण नहीं बल्कि भारत की उस सांस्कृतिक चेतना का उत्सव है जिसने सदियों से अपनी परंपराओं को जीवित रखा है। जब हम हाथ से बुना हुआ भारतीय वस्त्र धारण करते हैं तब हम केवल एक परिधान नहीं पहनते बल्कि एक बुनकर की मेहनत, उसके परिवार की आशा और भारत की सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देते हैं। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के सभागार नई दिल्ली में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के इस विशेष समारोह से आप सजीव विवरण सुन रहे थे। मैं शहस्यार खान अपने साथी कमेंटेटर कौशिक राय और कार्यक्रम प्रभारी प्रमोद कुमार के साथ आज्ञा लेता हूं। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत में ये पहला गीत है फिल्म बस एक धड़क का, श्रेया घोषाल, जुबिन नौटियाल और जावेद मोहसिन की आवाज़ में। शब्द रचना रश्मि विराग का और संगीत दिया है जावेद मोहसिन ने।

फिल्म तेजस का ये गीत आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह शाश्वत सचदेवा की आवाज़ में। गीत कुमार ने लिखा है और संगीत दिया है शाश्वत सचदेव ने।

अभी आप फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार।

नारी संसार सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को आपकी रेडियो सहेली श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, जैसा कि आप जानती हैं, आज शुक्रवार है और हमेशा की तरह आज भी हम विभिन्न विषयों पर चर्चा तो करेंगे ही, चर्चा के साथ साथ आपको लेकर चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में, जहां आनंद लेंगे कुछ नए पुराने फिल्मी गीतों का। और हर दिन कुछ खास में होगा कुछ खास आपके लिए। मैनो, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे अभियान की जो देशभक्ति की भावना को हर घर तक पहुंचाने का संदेश देता है, हर घर तिरंगा अभियान। तिरंगा केवल तीन रंगों से बना एक झंडा नहीं, बल्कि ये हमारे देश की एकता, अखंडता, शौर्य, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। जब तिरंगा आसमान में लहराता है तो हर भारतीय के मन में देश के प्रति सम्मान और गर्व की भावना जाग उठती है। हर घर तिरंगा अभियान, इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति की भावना को जन-जन तक पहुंचाना है। ये अभियान हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार और जिम्मेदारियों में भी दिखाई देनी चाहिए। हम अपने घर पर तिरंगा फहराकर इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन इसके साथ ये भी जरूरी है कि हम राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें और उसके गौरव को बनाकर रखें। बहनों, तिरंगा हमारे लिए बहुत सम्मानीय है, इसलिए इसे फहराते समय ध्वज से जुड़े निर्धारित नियमों और सम्मान की भावना का ध्यान रखना चाहिए। तिरंगे को स्वच्छ एवं सम्मानजनक स्थिति में रखना और अभियान के बाद उसे उचित तरीके से संभालना हमारी जिम्मेदारी है। तिरंगा जाति, भाषा, क्षेत्र और धर्म से ऊपर उठकर हमें भारतीय होने की एक पहचान देता है। यही इस अभियान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इस अभियान में

बच्चे, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, हर कोई अपनी भागीदारी निभा सकता है। आप अपने घर पर तिरंगा फहरा सकते हैं, परिवार और आसपास के लोगों को इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं और देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान देने वाले वीरों को याद कर सकते हैं। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम केवल अपने घर पर तिरंगा ना फहराएं, बल्कि अपने मन में भी देश प्रेम, जिम्मेदारी और राष्ट्र सेवा का तिरंगा लहराएं। तो श्रोताओं, इस बार जब आपके घर की छत पर तिरंगा लहराए तो उसे देखकर केवल गर्व नहीं बल्कि संकल्प भी करें कि देश हमारा है, इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। तो बहनों, पूरे सम्मान और उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े और स्वतंत्रता दिवस को देशभक्ति के उत्सव के रूप में मनाएं।

कहते हैं धागा जब कलाकार के हाथों से गुजरता है तो सिर्फ कपड़ा नहीं बनता, उसमें संस्कृति, परंपरा और भावनाएं भी बुनी जाती हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की। हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमारे हथकरघा क्षेत्र, बुनकरों और उनकी कला के सम्मान का अवसर है। एक एक धागे को संभालना, रंगों का चुनाव करना, करघे पर बैठकर घंटों काम करना और फिर तैयार होता है एक ऐसा वस्त्र जिसमें सिर्फ धागे नहीं बल्कि बुनकर का हुनर और मेहनत भी शामिल होती है। मैनो भारत की हथकरघा परंपरा हजारों वर्षों पुरानी है। हमारे देश के अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट बुनाई और वस्त्र परंपराएं हैं। बिहार की भागलपुरी सिल्क, बनारस की बनारसी साड़ी, कांजीवरम, चंदेरी, पैठनी, असम की मूंगा सिल्क, हर कपड़ा अपने क्षेत्र की संस्कृति और पहचान की कहानी कहता है। और बिहार की बात करें तो भागलपुर के सिल्क का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। इसकी पहचान देश में ही नहीं विदेशों में भी है। बहनों, हथकरघा केवल कपड़ा बनाने का साधन नहीं बल्कि हमारे लिए रोजगार है, परंपरा है, स्थानीय अर्थव्यवस्था है और हमारी संस्कृति की पहचान है। लेकिन आज हथकरघा क्षेत्र के सामने कई चुनौतियां भी हैं। मशीन से बने हुए सस्ते कपड़ों की प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल की कीमत, बाजार तक सीमित पहुंच और बुनकरों की मेहनत के उचित मूल्य का सवाल, ये सभी बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे में हमारी भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जब हम हथकरघा उत्पाद खरीदते हैं तब हम केवल एक कपड़ा नहीं खरीदते, हम किसी बुनकर के परिवार की मेहनत को सम्मान देते हैं, हम स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देते हैं और अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। तो बहनों, अगली बार जब आप साड़ी, दुपट्टा, स्टॉल या घर के लिए कोई वस्त्र खरीदें तो एक बार जरूर पूछें कि क्या ये हथकरघा से बना है, और यदि संभव हो तो स्थानीय बुनकरों और प्रमाणित हथकरघा उत्पादकों को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि हथकरघा खरीदना सिर्फ कपड़ा खरीदना नहीं है बल्कि एक हुनर को बचाना है। तो बहनों, याद रखिए, हर धागे में कहानी है, हर बुनाई में पहचान है, हर बुनकर के हाथों में भारत की शान है। तो चलिए इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

आई बहनों, आपको सुनवाते हैं एक छोटी मुलाकात के अंतर्गत वार्ता। विषय है स्तनपान जरूरी है और वार्ताकार है लालती कुमारी।

नमस्कार श्रोता बहनों, छोटी मुलाकात के अंतर्गत आज हम आपसे बातें कर रहे हैं जिसका विषय है स्तनपान की महत्ता। प्यारी बहनों, माँ का दूध नवजात शिशु के लिए प्रकृति का सबसे उत्तम और संपूर्ण आहार है। जन्म के तुरंत बाद निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है, शिशु की पहली प्राकृतिक सुरक्षा है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और अनेक संक्रमणों से बचाने में मदद करता है। श्रोता बहनों, विशेषज्ञों की सलाह है कि जन्म के पहले 1 घंटे के भीतर शिशु को स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। साथ ही जन्म से 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए। इस दौरान पानी, शहद, घुटी या कोई अन्य आहार देने की आवश्यकता नहीं होती। बहनों, 6 महीने तक बच्चों को माँ का दूध ही संपूर्ण आहार है। पूरक आहार शुरू करने के साथ साथ 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक स्तनपान जारी रखना लाभदायक रहता है। श्रोताओं, स्तनपान केवल शिशु के लिए ही नहीं बल्कि माँ के स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। इससे प्रसव के बाद

शरीर को सामान्य अवस्था में लौटने में सहायता मिलती है। अत्यधिक रक्तस्राव का जोखिम खत्म होता है और भविष्य में कुछ बीमारियों जैसे स्तन और अंडाशय के कैंसर का खतरा भी घट सकता है। बहनों, इसके अलावा स्तनपान माँ और शिशु के बीच भावनात्मक जुड़ाव को भी मजबूत बनाता है। श्रोता बहनों, परिवार और समाज की भी यह जिम्मेदारी है कि वे स्तनपान कराने वाली माताओं को सहयोग, सम्मान और अनुकूल वातावरण प्रदान करें। बहनों, सही जानकारी और समर्थन से हर माँ अपने शिशु को स्वस्थ जीवन की मजबूत शुरुआत दे सकती है। तो हम सभी स्तनपान के महत्व को समझें और इसके बारे में जागरूकता फैलाएं, स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना योगदान दें।

बहनों, माँ और बच्चे का रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है। इस रिश्ते की पहली भाषा है माँ का स्पर्श, माँ की ममता और माँ का दूध। इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से हर वर्ष 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। आज इस सप्ताह के समापन के अवसर पर आइए एक बार फिर से बात करें उस अमूल्य उपहार की जो एक माँ अपने बच्चे को जीवन के शुरुआत में देती है। माँ का दूध शिशु के लिए प्रकृति का अनमोल उपहार है। यह बच्चे को आवश्यक पोषण देने के साथ साथ उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में

0: हो। माँ का दूध सिर्फ पोषण नहीं, माँ का प्यार है। यह बच्चे के स्वस्थ बचपन की पहली सौगात है। तो चलिए बहनों, इसी संदेश के साथ वक्त हो चला है हर दिन कुछ खास का। बहनों, आज हर दिन कुछ खास में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे टिप्स जिनसे जिन्हें अपनाकर आप बरसात में भी सुरक्षित रह सकती हैं। सबसे पहले तो बरसात में घर के आसपास जल जमाव ना होने दें। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ध्यान नहीं देते, पानी की टंकी में, कूलर में, घर के आसपास में, कभी कभी फुलवारी में, मैदान में पानी जमा हो जाता है, जिससे कि रोग जनित संक्रमण फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इसमें डेंगू के, मलेरिया के मच्छर पनप जाते हैं। इसके साथ ही पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का इस्तेमाल करें। पानी को उबालकर, छानकर, ठंडा करके ही पीने के लिए आप इस्तेमाल करें। बासी या खुले में रखा हुआ भोजन ना खाएं। कोशिश करें कि रोजाना ताजा और अच्छी तरह पका हुआ भोजन ही सेवन करने में आप रोजाना शामिल करें। पैर को साफ रखें, सूखा रखें। गीले कपड़े और जूते लंबे समय तक ना पहनें। गीले शरीर से बिजली के तार, खुले हुए स्विच और विद्युत के उपकरणों को ना छुएं, इससे करंट लगने का खतरा बेहद बढ़ जाता है। बारिश में बाहर निकलते समय छाता और बरसाती, जिसे कि हम लोग रेनकोट भी कहते हैं, इनका आप इस्तेमाल करें। मैंने बारिश में बिजली कड़कने पर पेड़ के नीचे खड़े ना हों, खुले मैदान और ऊंची जगहों से दूरी बनाकर रखें। मौसम की चेतावनी पर ध्यान दें और बहुत तेज बारिश, आंधी या बाढ़ की स्थिति में अनावश्यक यात्रा से बचें। तो बहनों, इन छोटी छोटी लेकिन जरूरी बातों पर ध्यान रखकर आप बरसात के मौसम में भी स्वस्थ रह सकती हैं और खूबसूरत बनी रह सकती हैं। तो चलिए बहनों, बातें तो बहुत हुई, ढेर सारी हुई, लेकिन ये सिलसिला ऐसा है कि थमने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन बातों के साथ साथ मनोरंजन भी जरूरी है, तो लेकर चलते हैं एक बार फिर से आपको मनोरंजन की दुनिया में और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला और आखिरी गीत।
1: अच्छा, तो हम चलते हैं।

अच्छा तो हम चलते हैं। तो बहनों, ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म आन मिलो सजना से। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। अगर आप भी चाहें तो अपने सुझाव हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर भेज सकती हैं। हमारा पता है कार्यक्रम नारी संसार, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी दरभंगा। आप अपने संदेश हमें ईमेल के माध्यम से भी लिखकर भेज सकती हैं। हमारा ईमेल का पता है akashwani.darbhanga@gmail.com। तो श्रोता बहनों, समय अब अनुमति देने के लिए कह रहा है कि और चलो श्वेता, अब वक्त हो चला है अपनी प्यारी श्रोता बहनों से अनुमति लेने का। तो दीजिए इसी प्यारे से गीत के साथ अनुमति श्वेता को। नमस्कार।

अभी आप कार्यक्रम नारी संसार सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को हैं। अब समाचार होंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। लोकसभा ने इसे आज मंजूरी दी। राज्यसभा ने सोमवार को इस विधेयक को पारित किया था। इस बीच संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, स्वतंत्रता सेनानियों और देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी। उनके सम्मान में सदन में कुछ देर का मौन भी रखा गया। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। इस दौरान अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदन की कार्यवाही का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। मैं आपसे हर बार आग्रह करता हूं, लेकिन आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है।

0: इस पर आपको विचार करना चाहिए। सदन, चर्चा, संवाद और विशेष रूप से प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए होता है। मेरा आपसे आग्रह, आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये व्यवहार आचरण आपका उचित नहीं है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। NCPI सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनकी जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हजारों वर्षों से हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न हिस्सा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। राष्ट्रपति ने देश के बुनकरों, उद्यमियों, डिजाइनरों, विद्यार्थियों और हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को एक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कुल 22 पुरस्कार दिए गए जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से कथित रूप से बरामद नकदी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। न्यायालय की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के पद से इस्तीफा देने मात्र से कथित बेहिसाब संपत्ति के मामले में उसकी आपराधिक जवाबदेही समाप्त नहीं हो जाती। श्री यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन के 2 सप्ताह से अधिक समय तक जारी रहने के बाद ही राहुल गांधी ने वीडियो संदेश के माध्यम से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम जानकारी प्राप्त कीजिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के विषय में।

1:10 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत महेंद्र कपूर की आवाज में। आपकी फरमाइश का समय होगा 1:15 पर।

5:40 पर पुनः फिल्म संगीत का आनंद आप उठा पाएंगे। 6:05 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम विवरण। हफ्तावार जायजा का समय होगा 6:10 पर। 6:15 पर आप सुन सकेंगे विद्यापति गीत।

शाम 6:25 पर आप सुनेंगे मैथिली संवाद, 6:30 पर गाम घर में सुनेंगे आप नन्हा मुन्हा राही, शाम 7 खेती गृहस्थी का समय होगा। पुनः फिल्म संगीत का आनंद आप उठा पाएंगे 7:50 पर। पर 8:15 पर आप सुनेंगे सिंगरहार। हार 9:30 पर आप सुन सकेंगे साहित्य की। सूत्रधार हैं अमलनाथ ठाकुर, प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा।

ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रम के विवरण। रात 10 बजे आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण समय हेलो आकाशवाणी में।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये देशभक्ति गीत। अब प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम को लेकर मैं आज उपस्थित हूँ विजेता।

एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, भाव मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाव मराठा, परी संजना मराठा, मालती स्वाति चौधरी, प्रयाग चौधरी, ललिता नारायण खर्चे, झंझारपुर लंगरा चौक से हरेराम पासवान, जयशंकर पासवान, काजल कुमारी, रानी कुमारी, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, वंश बत्ता, और औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश, इन सभी ने सुनना चाहा है फिल्म मीत का ये गीत। गायक कलाकार हैं अरिजीत सिंह, गीत रचना प्रिया सरैया की और संगीत से सजाया है जतिन सचिन।

फिल्म मीत का ये गीत। गायक कलाकार हैं अरिजीत सिंह, गीत रचना प्रिया सरैया की और संगीत से सजाया है जतिन सचिन जिगर ने।

अगला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से, आवाज़ श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की, गीत रचना इरशाद कामिल की और संगीत दिया है विशाल शेखर ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है कुशेश्वर स्थान सलमगढ़ से मोहम्मद ईशा, सबीना नाज, मोहम्मद इरफान आज़ाद, मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद आफ्ताब, सगुफ्ता प्रवीण, शाहीन प्रवीण, नेमत प्रवीण, रौनक प्रवीण, सुमैया फातमा, सना आफरीन, साड़िया नूर, नवासा आरिश बाबू, जत्तुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम, चांदनी नाज, नाज प्रवीण। इसी गीत की फरमाइश की है।

एरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर, धीरज सवासिर, कोटवा नारायण बाबा पट्टी बलिया से आप हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से आप हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। आप सभी ने सुनना चाहा है ये गीत, तो लीजिए आपके ये रेडियो सेट पर।

लाल पोखर दरभंगा से आप हैं मोहम्मद कलीक दीवाना, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद अमन, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद आगाज, सोनी बेगम, शमा परवीन, डॉली प्रवीण। आदर्श नगर मलोट से आप हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, माफ़ कीजिएगा मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइनी शर्मा, निवान शर्मा। गोला बाजार बक्सर से आप हैं श्रद्धा नंद राय, अभय नंद राय, परमानंद राय, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। पटेल नगर मलोट से आप हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोदिया, गीता रानी जाजोदिया, गगनदीप जाजोदिया, बेबी आरजू जाजोदिया। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से आप हैं हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक, मीका बिरक। महादेव घाट अमलेश्वर से आप हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म तेरे नाम का ये गीत। गायक कलाकार हैं अलका याग्निक, गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया।

फिल्म चेहरा का गीत की फरमाइश आई है। कोटवा नारायण बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, रामपट्टी गौसनगर से शुभ नारायण महतो, राजा बाबू, राजेश कुमार, लक्ष्मी नारायण महतो, जगदेव प्रसाद, लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ से आप हैं हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर बाई, प्रभु लाल बागड़ी, फुटानी चौक नरहन स्टेट से आप हैं भाई फटफटिया झा, उदयकांत ठाकुर, अमर पारासर, बेबी आराध्या, ललन मिश्रा, मिसर मोहल्ला नरहन बाजार से आप हैं बीके मिश्रा, गुंजन परासर, डब्बू मिश्रा, छोटू मिश्रा, लल्लू सुर गनैया। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म चेहरा का ये गीत। गायक कलाकार हैं अलका याग्निक, संगीतकार निखिल विनय और गीतकार जमीर काजमी का।

फिल्म मधुमति में अभी आप सुनना चाह रहे हैं मुकेश को, गीत शैलेंद्र की और संगीत से सजाया है सलील चौधरी ने। इस गीत की फरमाइश आई है कोटवा नारायणपुर से, बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कलांक से, गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय। इसी गीत की फरमाइश आई है कलेर बिहार से मोहम्मद आशिफ खान, बेगम निकहत परवीन, नूर महल महसौल से हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अबीहा नाज, अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और खात्मा खातून अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी।

अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म मधुमती का ये गीत।

अगले गीत की फरमाइश आई है दौलत बाग मुरादाबाद से, जाफ़र हुसैन नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी, गोकुल चौक गंगा जला सहरसा से, राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, रवि रंजन, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, सिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी बुल्की वाली, फलना झा, नया नगर सुपौल से, श्वेता रंजन, पप्पू जी।

माफ कीजिएगा, हामिद अली, जाबिर अली, मोहम्मद अरमान, मोहम्मद सलमान, रिंगड़ी छत्तीसगढ़ से आप हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर, तनु करमरकर, और डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से आप हैं राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का, तन्मय गजभिये। इसी गीत की फरमाइश आई है इनामत टोला भगवतीपुर बिहार से नूतन सहनी, कंचन सहनी, बबीता सहनी, कोमल सहनी, नव्या सहनी, सुधा सहनी, विभा सहनी, ज्योति सहनी, पार्वती सहनी, त्रिपुरारी सहनी, संतोष कुमार सहनी, रासो देवी, रिंकू देवी, रुचि कुमारी, निशु कुमारी। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म मेरे हमसफर का ये गीत। ये गीत है मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीत आनंद बख्शी की, और संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

लम्हे के इसी गीत के साथ फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार एवं इलाकाई खबरें हमारे पटना केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने भी आज इस विधेयक को पारित कर दिया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन संबंधी विधेयक सदन में पेश किया। इसके बाद लोकसभा की

0: स्टेट इरिगेशन कम पैकिंग सेंटर से मखाने की पहली निर्यात खेप को हरी झंडी दिखाकर ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना किया। इस मौके पर 7 कंटेनरों में 18 मीट्रिक टन मखाना भेजा गया है। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि यह बिहार और पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि राज्य का सुपर फूड मखाना अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच रहा है। से समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र ने देश की समृद्ध विरासत को संरक्षित रखने के साथ साथ रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला, संस्कृति और प्रकृति के प्रति प्रेम को भी बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की अपील की है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को एक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। हथकरघा दिवस के अवसर पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पटना स्थित बिहार संग्रहालय आज अपना 11वां स्थापना दिवस मना रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार संग्रहालय स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि इस अवसर पर देश के 100 से ज्यादा कलाकारों की विशेष प्रदर्शनी लगाई जा रही है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती आज श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। इसके लिए प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कला और संस्कृति विभाग की ओर से इस मौके पर समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत की जा रही है। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित समारोह का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुभारंभ किया। आकाशवाणी पटना से प्रसारित हो रहे भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण समय में बदलाव किया गया है। यह समाचार बुलेटिन आज से प्रतिदिन संध्या 5:30 से सुना जा सकता है। भोजपुरी समाचार बुलेटिन का प्रसारण आकाशवाणी पटना के साथ ही 101.6 मेगाहर्ट्ज पर FM रेनबो चैनल पर भी सुना जा सकेगा। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आज राज्य के दक्षिण पूर्व भाग के जिले कटिहार, पूर्णिया और पश्चिम चंपारण सहित कई भागों में बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कई स्थानों पर आंधी बारिश और वज्रपात का भी अलर्ट है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। सुनिए रोजगार सूचना।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए कुल पद हैं 395। आवेदन शुरू होने की तिथि 21/7/2026 और आवेदन की अंतिम तिथि 10/8/2026। न्यूनतम उम्र सीमा है इसकी 25 साल और अधिकतम उम्र सीमा 50 साल। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट unionbankofindia.bank.in पर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

पंजाब नेशनल बैंक के लिए कुल पद हैं 545। इसकी आवेदन शुरू होने की तिथि 20/7/2026 है और आवेदन की अंतिम तिथि 9/8/2026 है। इसकी न्यूनतम उम्र सीमा 20 साल और अधिकतम उम्र सीमा 30 साल है। अधिकतर जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर pnb.bank.in पर जाकर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के लिए कुल पद है 200। आवेदन शुरू होने की तिथि 20/7/2026 है और आवेदन की अंतिम तिथि 19/8/2026 है। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 24 वर्ष है। अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर www.igcar.gov.in पर जाकर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। NFR रेलवे एप्रियंस्टिक्स रिक्वायरमेंट के लिए कुल पद है 6,777। आवेदन शुरू होने की तिथि है 20/7/2026। आवेदन की अंतिम तिथि 19/8/2026 है। न्यूनतम उम्र सीमा 15 साल और अधिकतम उम्र सीमा 24 साल है। ऑफिशियल वेबसाइट www.nfr-recruitment.in पर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए कुल पद है 163। आवेदन शुरू होने की तिथि है 22/7/2026 और आवेदन की अंतिम तिथि 10/8/2026। इसकी न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष। अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकती हैं और hcraj.nic.in पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। रोजगार सूचना अब समाप्त हुई। अब कुछ ही पल में हमारे दिल्ली केंद्र से आप दोपहर समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने भी आज इस विधेयक को पारित कर दिया। एक रिपोर्ट।
1: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह

0: प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा पक्षों की दलीलें पूरी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर निर्णय देने का प्रावधान है। यदि कोई मामला 6 महीने से अधिक समय से लंबित है तो आपूर्तिकर्ता को तय की गई राशि का कम से कम 50% भुगतान करना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण के लिए जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो पहली बार उसे चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद दोबारा गलती करने पर 1,000 रूपए से लेकर 50,000 रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले पहले सघन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन संबंधी विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक के अनुसार सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एमएसएमई से खरीदे गए सामान और सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया और प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। उन्होंने लगातार हो रहे व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के रवैये पर चिंता जताते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह संसद सत्र के दौरान नियमित रूप से सदन में आते हैं और देर रात तक संसद में मौजूद रहते हैं। लगातार हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। अब सदन की अगली बैठक सोमवार दिन में 11 बजे होगी। इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे हर वर्ष लगभग 58 करोड़ पैकेट भोजन परोसता है और भोजन की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों की संख्या नगण्य है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने बताया कि पिछले 3 वर्ष में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता संबंधी शिकायतों पर IRCTC ने कड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत 5 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया, 54 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 6 अनुबंध समाप्त किए गए और नियमों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंस धारकों को प्रतिबंधित भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री

0: आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि लगातार हंगामे के कारण नवनिर्वाचित और प्रतिभाशाली सांसदों को सदन में अपने विचार रखने का अवसर नहीं मिल पाता। NCPI सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनके जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।
1: और उसके बाद उन्होंने बताया जो क्या करना है, हम लोग को कैसे आगे बढ़ना है, राष्ट्रीय हित के लिए हम लोग एक साथ कैसे काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग है।
2: हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि हथकरघा देश की अद्भुत सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पहले की हैं।
2: हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए है। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।
0: राष्ट्रपति ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी।
2: मैं देश के प्रतिभाशाली बुनकरों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
0: इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हथकरघा उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस बढ़ती मांग का लाभ सीधे बुनकरों तक पहुँचे।
3: 7 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने हैंडलूम दिवस को स्थापित करने का काम किया। बुनकर भाइयों को एक संदेश दिया, आपके नेतृत्व में भारत का वस्त्र बुनकरों के आमदनी को भी एक ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लेता हूं।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कुल 22 पुरस्कार दिए गए जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट शिल्पकला, नवाचार और भारत की हथकरघा परम्परा के संरक्षण में योगदान के लिए प्रदान किए गए। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह के एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख को साझा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लेख में हथकरघा को देश की सबसे बड़ी सभ्यतागत परंपरा में से एक बताया।

0: किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और चीन ने कल नई दिल्ली में आयोजित भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र की 36वीं बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों के बीच सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन, संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और सीमा पार सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया, जबकि चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग की महानिदेशक हो यानची ने किया। दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबित मुद्दों के समाधान तथा किसी भी प्रकार की गलतफहमी और गलत आंकलन से बचने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य संवाद तंत्र का उपयोग जारी रखने पर सहमत हुए। इनमें कार्यतंत्र के स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य सहमत तंत्र शामिल हैं। भारतीय पक्ष ने सीमा पार नदियों से संबंधित विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अगली बैठक जल्द आयोजित करने की आवश्यकता दोहराई। साथ ही चल रही परियोजनाओं से संबंधित तकनीकी जानकारी साझा किए जाने के महत्व पर भी बल दिया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार की तलाश के दौरान अनेक परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
2: इसमें कितने बड़ा करप्शन हुआ है, कितनी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना गहना बेच दिया, कितने पिता ऐसे हैं जिन्होंने अपना जमीन बेच दिया, कि एक लिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या सितम जो है पिछले 7-8 साल से युवाओं और छात्राओं पर ढाया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने कहा है कि 13 तारीख तक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सेशन जब खत्म होगा, यदि तब तक उसका फैसला नहीं होगा, 13 तारीख के बाद मैं वहां आमरण अनशन करूंगा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा की आवास से कथित रूप से बरामद नकदी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। श्री यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आज कई स्थानों पर तेज बारिश दर्ज किया। दिल्ली के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है और मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 12 अगस्त तक लगातार बारिश जारी रह सकती है। वहीं ओडिशा, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा में बाढ़ के बाद राहत और पुनर्वास कार्य जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में हुई बारिश से बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है।
3: जलका नदी मथानी में खतरे के निशान 6.50 मीटर को पार कर, जिससे बस्ता और आसपास के इलाकों में निचले स्तर की कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। अधिकारी संवेदनशील तटबंध पर नजर रखे रहे और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए तैयार है। इस बीच IMD ने अगले 5 दिनों तक पूरे उड़ीसा में व्यापक बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग और कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी गई है। राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित 22 जिलों के लिए शुरुआती सहायता के तौर पर 110 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। बैडमिंटन में भारत की रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स के महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में रक्षिता ने अपने ही देश की तन्वी शर्मा को और अश्मिता ने जापान के हिना अकेची को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी ने एनडीए में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तरी हिस्सों में मूसलाधार बारिश। और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। गीतों की शुरुआत हम करते हैं फिल्म चांदनी के इस गीत से। गायक कलाकार हैं सुरेश वाडकर और अनुपमा देशपांडे।

फिल्म जाल का ये गीत आइए सुनते हैं। फिल्म मेरे हमसफर का आइए ये गीत सुनते हैं। गायक कलाकार हैं मुकेश और लता मंगेशकर। गीत आनंद बख्शी के और संगीत से सजाया है आनंद जी कल्याण जी आनंद जी ने।

लता मंगेशकर को अब सुनते हैं फिल्म जालमी, गीत राजा मेहंदी अली खान का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आइए आप सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म खानदान में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं रवि।

सुनिए फिल्म माई लव का ये गीत मुकेश की आवाज़ में, धुन आनंद बख्शी की और संगीत दान सिंह का।

फिल्म सौतन में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। धुन सावन कुमार टाक की और प्रदीप कौशल।

चिक्की, संगीत से सजाया है उषा खन्ना ने। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3 बजने ही वाले हैं। हमारी ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे पुनः उपस्थित होंगे दूसरी सभा के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबा। हेलो सहेली।

0: सभी सखियों को मंत्री वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सावन मनभावन मौसम जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन झूम के गाता इटलाता सबको अपने रंगों में रंग देता है। अपने साथ लाता है उमंग उत्साह से भरे पर्व तीज त्योहार, हरियाली तीज कजरी तीज और प्रेम का बंधन रक्षाबंधन जिसमें बसी होती है भाई बहन के प्यार की सुगंध। सावन में झूला झूलना कजरी गीतों के मीठी तान, सावन में लगते हैं मेले जहां जाते नहीं हम अकेले। संग होती हैं सखियां सहेलियां यादों वादों और मायके जाने का मौसम जहां से जुड़ी बचपन की हर याद ताजा हो जाती है। बहनों के सजने सवरने श्रृंगार करने का मौसम, आप इस मौसम में क्या खास तैयारी करती हैं और क्या करती हैं मेलों से खरीदारी। हेलो सहेली में अपनी यादों को साझा कीजिए हमारे साथ। फोन की घंटी बज उठी और देखते हैं कौन सी सखी होंगी जो करेंगी हमसे आज अपने मन की बात। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं और कहां से बोल रही हैं?
1: मैं बियामा मुल्ला बात कर रही हूं मैडम
0: जी।
1: पहलगाम जिला गोकाक तालुक
0: जी,
1: गांव कुंदरगी से
0: जी।
1: और मैं कर्नाटका से बात कर रही हूँ मैडम।
0: अरे वाह, आप कर्नाटका से बात कर रही हैं, वहाँ की तो बहुत खास बात है। वहाँ पर बहुत घूमने वाली जगह है, बहुत अच्छी सी जगह है ना वहाँ पर?
1: बहुत अच्छी है मैडम, हरियाली वगैरह बहुत है यहाँ, आप आएंगी तो बहुत मजा आएगा।
0: आपको क्या क्या अच्छा लगता है वहाँ पर कर्नाटक की खास चीजों को घूमना देखना?
1: यहाँ गार्डन वगैरह है ना मैडम, वो हिड़कल बोल के गांव है
0: जी,
1: और बेलगाम भी हमारा बहुत अच्छा है, वहाँ हम घूमने जाते हैं साल में एक मरतबा या दो मरतबा
0: जी। दिया जी, देखिए ना सावन का जो मौसम चल रहा है, सावन आ गया है झूमकर इठलाता बलखाता, तो सावन की कुछ यादें आपके पास हैं तो वो हमें बताइए, सुनकर बहुत अच्छा लगेगा।
1: सावन की यादें मैडम बहुत अच्छा है, बरसात है, रिमझिम बारिश है।
0: और सावन में झूला झूलना ये कैसा लगता है आपको?
1: बहुत मजा आता है मैडम, हमारे इधर मेला लगता था ना मैडम साल में एक बार।

0: जी
1: तो हम अपनी सखियों के साथ झूला झूलते थे
0: अच्छा।
1: और
0: और
1: बहुत मजा आता था।
0: जी अच्छा, मेले में आप जब जाती हैं ना, सावन के जो मेले होते हैं, वहां पर क्या क्या चीजें खरीदती हैं?
1: वहां मैडम मैं और मेरी कानों में की बाली और मेरा मेकअप का सामान।
0: अच्छा अच्छा दिया जी, आप बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: मैं रंग फिल्म से सुनना पसंद करूंगी मैडम, तुम ही देखिए मेरी आंखें।
0: चलिए आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत। तुम्हें

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, बताइए आपका क्या नाम है?
1: मैं वी पूनम नायडू बोल रही हूँ,
0: कहाँ से?
1: प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से।
0: बहुत प्यारा सा नाम है पूनम जी आपका। बिल्कुल, आपकी आवाज भी इतनी मीठी है कि लग रहा है कि पूरी चांदनी बिखर गई है हमारे प्रोग्राम में। जी,
1: मैडम जी,
0: बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा बोला आपने। तो देखिए, सावन का जो ये प्यारा सा मौसम चल रहा है, तो सावन की कुछ यादें आपके पास हैं तो वो हमें बताइए।
1: जैसे सावन महीना हो गया आ गया, तो मैडम जी आपको त्योहार व्रत जो है वो सब तैयारियां कर रहे हैं हम लोग, अभी तो स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे ही सावन आ जाता है तो एक मन में उमंग और तरंग आ जाता है मैडम जी, एक खुशी सी छा जाती है सभी के दिलो दिमाग में और बहुत ही अच्छा लगता है।
0: तो बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: फिल्म का नाम है मंजिल,
0: जी
1: उसमें लता मंगेशकर जी का गाया हुआ एक बहुत ही प्यारा गीत है मेरे, यदि आप इजाजत दे तो थोड़ा मैं गुनगुना सकती हूँ।
0: बिल्कुल, आप गा के सुनाइए।
1: सावन तुलक तुलक जाए मन,

0: सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं अंबिका विजय मारवाड़ी बोल रही हूँ, मैं शिरपुर जैन से बोल रही हूँ।
0: अंबिका जी, आपका हेलो सहेली कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आप रेडियो सुनती हैं?
1: हाँ
0: अंबिका जी, आपके और क्या क्या शौक हैं?
1: मैं रसोड़ा चलाती दीदी,
0: ये क्या होता है?
1: रसोड़ा चलाती, उसे खाना पकाना, रोटी पकाती,
0: अच्छा,
1: दाल सब्जी चावल खाने को 10-20 आदमी आते खाने को,
0: जी जी जी
1: तो वो चलाती।
0: अच्छा, तो आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: मेरा बेटा, मैं, तीन जन है, हम, बेटी की शादी हो गई।
0: अच्छा, ये बताइए कि आप कभी मेले घूमने गई हैं?
1: मेले घूमने में जाती ना, वो नांदेड़ जाती।
0: अंबिका जी, ये बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: चंदा मामा से प्यारा वो करते हुए पिक्चर में
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, हम इंदौर से बोल रहे हैं, शीतल भाटी।
0: शीतल जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। शीतल जी, क्या आपने कभी सावन के मेलों को जा करके देखा है?
1: जी जी बिल्कुल देखा है, पर अभी नहीं। जैसे हम छोटे छोटे थे, हमारी मम्मी वगैरह हमको मेले में ले जाया करती थी। सावन के यहाँ पर झूले डलते थे, सावन के जो आज भी डलते हैं, पर अभी काफी टाइम से हमने देखा नहीं है। पर जो पहले डलते थे उस प्रकार के अब नहीं डलते।
0: तो आप झूलती थी झूला?
1: जी जी मैं बहुत छोटी थी।
0: अच्छा, तो ये बताइए और आप क्या करती हैं, क्या शौक हैं आपके?
1: जी मैं तो अभी फादर का बिजनेस है, वो संभालते हैं।
0: जी, बहुत अच्छा लगा कि आप अपने पिताजी के साथ उनके काम में हाथ बटा रहे हैं और बचपन की यादें भी आपने थोड़ी सी बताई हैं। तो
1: जी
0: बताइए, आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आज हमारी मम्मी का फेवरेट सॉन्ग सुनना चाहेंगे हम, आया सावन झूम के।
0: चलिए आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: हेलो, मैं नांदेड़ से बात कर रही हूँ, प्रगति मुळे।
0: प्रगति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। बताइए, आप क्या करती हैं?
1: मैं गृहिणी हूँ।
0: गृहिणी हैं। तो गृहिणी हैं तो इसमें बहुत सारे काम भी होते हैं, जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं गृहिणी होने में। तो आपको सबसे अच्छा क्या लगता है कि सबसे पहले हम कौन सा घर में काम कर लें?
1: काम हम तो सभी रोज करते हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, वो तो करते ही है।
0: जी। अच्छा, ये बताइए प्रगति जी, जैसे सावन का जो महीना चल रहा है, तो आपको किस रंग की साड़ियां पहनना पसंद है, खासकर सावन के मौसम में?
1: सावन के मौसम में हरी।
0: हरी। वाह, क्या बात है। यानी कि हरी साड़ी, हरी हरी मेहंदी हाथों में लगाती होंगी, हरी चूड़ियां, है ना, बालों में गजरा। किस
1: हाँ,
0: तरह के फूलों का गजरा आपको अच्छा लगता है बालों में लगाना?
1: मोगरा।
0: क्या बात है, मोगरे की खुशबू तो बहुत अच्छी होती है ना।
1: हाँ,
0: और आपको कौन कौन से फूल अच्छे लगते हैं?
1: गुलाब, मोगरा, जाई।
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है सखी सहेली जो है आज मोगरे के फूलों से महक गया है ना प्रगति जी?
1: हाँ,
0: अच्छा बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी? क्या
1: हम आपके हैं कौन में से, हम आपके हैं कौन, ये वाला गाना सुनना चाहूंगी।
0: बात है, तो चलिए प्रगति जी, हम आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत, हम आपके हैं कौन फिल्म से।
2: हाँ।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: शांति भाई बोल रही हूँ भोपाल से। सहेली
0: शांति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। ये बताइए कि आप विविध भारती सुनती हैं, उसके कौन कौन से प्रोग्राम सुनती हैं?
1: सब प्रॉब्लम अच्छा लगता है, जो भी आता है ना वो सब अच्छा लगता है।
0: अच्छा शांति जी, हम बात करने वाले हैं सावन के बारे में। ये बताइए
1: हाँ
0: कि बचपन में आपने कभी झूला झूला?
1: हाँ झूला ना,
0: जी
1: बहुत झूला झूला बचपन में, तो इतना झूला झूला के वो ही चेंज बता ही नहीं सकते
0: आपने
1: जी।
0: अपनी सखियों के साथ जब झूला झूला, तो उसकी कुछ यादें हों तो बताइए आप मुझे।
1: बहुत अच्छा लगता था, सखियों के साथ रहती थी, हर चीज की नॉलेज होती थी और बहुत साथ में रहती थी, ऐसा लगता था कि जीवन भर साथ में रहे तो अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, सखियों का साथ ऐसा होता ही है कि हम साथ में रहें। अच्छा, मेले में बहुत सारी दिखती ना चीजें, कि हरी हरी चूड़ियां, लाल हरी चूड़ियां दिखती
1: हाँ
0: हैं,
1: हाँ
0: है ना?
1: दिखती थी ना, जो पसंद आती थी हरी चूड़ी ज्यादा पहनती थी, क्योंकि हरी हरी टाइम रहती है ना,
0: जी
1: तो हरियाली में वो ही अच्छी लगती थी।
0: अच्छा ये बताइए शांति जी, आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: झिल मिल सितारों का आंगन होगा, यही मेरे को गाना सुनना है।
0: शांति जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत, झिलमिल सितारों का आंगन होगा।

0: अंतराल के बाद सखियों से बातें करने आ गई है मंजरी वर्मा। कार्यक्रम चल रहा है हेलो सहेली। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं, अपना नाम बताइए।
1: हेलो सहेली, मैं सुचिका सुमित नटानी बोल रही हूँ, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से।
0: सुचिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। नमस्कार, कैसा लग रहा है? आपने आज फोन लगाया है तो आपको कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपका प्रोग्राम सुनती भी रहती हूँ और बहुत प्यारी प्यारी बातें, मीठी बातें, कुछ यादें, कुछ खट्टी कुछ मीठी,
0: जी
1: तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है।
0: आप रेडियो बहुत ध्यान से सुनती हैं लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बचपन की आदत है ना, हम लोग 1970s वाले हैं ना,
0: क्या बात है, मतलब
1: तो
0: 1970s
1: रेडियो
0: की तो बहुत प्यारी प्यारी सी यादें भी होंगी आपकी।
1: बिल्कुल, रेडियो तो उस टाइम के ऐसा है कि स्कूल सुबह विविध भारती से पूरा सुनना और स्कूल जाना वापस आना, अलग अलग पिक्चरों का गाना सुनना, रात तक देखना, और वो लाइव क्रिकेट मैच का जो टेलीकास्ट होता था और
0: जी
1: 26 जनवरी का परेड,
0: जी
1: तो एक बहुत प्यारी, मतलब एक अटैचमेंट तरीके का है रेडियो से।
0: जी तो बहुत अच्छी सी यादें आपने साझा करी। और ये बताइए कि सुचिका जी, हम बात करने वाले हैं आज सावन के बारे में, कि सावन का जो मौसम चल रहा है तो इसमें आप क्या क्या खास तरह से करती हैं घर में तैयारियां, और जो सावन के जो मेले लगते हैं ना, उनको देखा है
1: हाँ
0: आपने कभी जा करके?
1: बिल्कुल बिल्कुल, गुड़िया का मेला तो बचपन में, मतलब ये तो हमारे घर के बाहर ही, हम लखनऊ के बिलोंग करते हैं नरही से,
0: जी
1: तो बहुत बड़ा हमारे घर के बाहर ही गुड़िया का मेला लगता है, और वो अनरसी की गोली तो मतलब बचपन को तरोताजा कर देती है, आज भी बिल्कुल सब कुछ नया नया लगता है, और वो झूले तेंगे मिट्टी के खिलौने, सौंधी सौंधी खुशबू, और मेरे बाबा का चीजें लाना,
0: जी
1: क्योंकि हम लोग ज्वाइंट फैमिली में से है
0: जी
1: तो बहुत मजा आता था, इतने भाई बहन, वो बात ही अलग है, छत पे सोना, बारिश में खेलना,
0: क्या
1: अलग
0: बात
1: ही मजा है वो।
0: है। और सावन में जो झूला झूलते हैं उसकी भी बड़ी यादें, जब पैंग दिया जाता है, पैंग दे देकर झूलते हैं, तो आपने कभी इस
1: बिल्कुल
0: तरह के झूलों को झूला है कि पैंग दी हो आपने भर भर के?
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे घर के बाहर ही एक बहुत बड़ा पार्क होता था, हम लोग जितनी भी सहेलियां होती थी झूला लगाते थे, और बिल्कुल जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, उसको फूलों से सजाकर और एक एक करके पेंग लगाते थे।

0: तरीके से, और भीड़ बाहर होती थी, मम्मी मेरी माँ लोग चाची लोग उन लोग सब हरी हरी चूड़ियाँ और साड़ी तैयार, और सब सावन का सेज हरा लाल, मतलब एक अलग ही छवि उभर के आती है।
1: क्या बात है, आपने इतनी अच्छी सी बातें करी। जो सावन के झूले की बात करी आपने कि फूलों से सजा होता था, तो बिल्कुल राधा और कृष्ण का वो झूला याद आ गया है ना।
0: कुछ कुछ वैसे ही हम लोग करते थे एक्चुअली,
1: जी
0: सारी बदमाश लड़की लड़कियां सब भाई बहन मिलके मोहल्लों के बच्चे जो खेलते थे, क्योंकि तब
1: जी
0: तो ये गैजेट्स और ये सब तो होता नहीं था, तो वही आनंद और कि आज शाम को मिलेंगे तो आज ये, और सावन में जो ब्रेक होता था हम लोग की छुट्टियां भी होती थी, तो बहुत मजा। और रेनी डे तो शायद आपने भी इंजॉय किया
1: जी
0: होगा,
1: बिल्कुल, हमने भी
0: मतलब
1: इंजॉय किया है रेनी डे का।
0: बिल्कुल, तो बहुत मतलब आपने ऐसा टॉपिक लिया है कि मैं तो बोलती ही जा सकती हूँ।
1: अच्छा भी लग रहा है कि आप इतनी सारी बातें, इतनी यादें ताज़ा कर रही हैं। तो जो सावन में बहुत सारे त्योहार होते हैं, हरियाली तीज, कद्री तीज, और बाद में रक्षाबंधन आता है, तो भाई बहन से जुड़ा ये प्यारा सा त्योहार होता है, तो आप क्या तैयारी करती हैं? अभी से तैयारी करेंगी या जब रक्षाबंधन आएगा उसके पहले कुछ दिन पहले तैयारी करेंगी? अपने हाथ से राखी बनाएंगी भाई के लिए या
0: बिल्कुल
1: खरीदेंगी?
0: बिल्कुल, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे और हमारे जॉइंट फैमिली में कजन शब्द बोलना मना है, मतलब हमने कभी यूज नहीं किया, तो हम
1: जी
0: लोग टोटल 13 भाई बहने हैं,
1: क्या बात है।
0: और आप सोच नहीं सकते, और मेरी एक लौती बुआ होती थी वो दिल्ली से आती थी, पूरा पकवान बनता था मतलब, और हम लोग सब साड़ी पहनते थे और खाना बनता था, पूरा सजाया जाता था,
1: क्या
0: राखियां
1: बात है
0: हमने रेशम के धागों से, वो गाना नहीं है रेशम
1: जी,
0: के धागों से,
1: हाँ जी
0: तो उसी में प्यार पिरो के भाइयों के लिए हम सारी बहनें बनाते थे राखियां,
1: जी
0: और हमारे जो सबसे बड़े ताऊजी थे वो कंपटीशन करते थे कि किसका बेस्ट राखी होगा, तो
1: क्या
0: उसको
1: बात है,
0: प्राइज मिलता था।
1: क्या बात है।
0: हम लोग एक डाइनिंग टेबल के ऊपर मिनी कॉन्सर्ट भी करते थे, आप यकीन नहीं करोगे, डांस होता था, प्रोग्राम होता था, बच्चों हम लोग सारे जो चिल्लर पार्टी होते थे।
1: क्या बात है, यानी कि बचपन की आपने इतनी सारी यादें ताजा कर दी कि मेरी भी यादें ताजा हो गई हैं। अच्छा सा माहौल बन जाता है जब सब लोग एक साथ होते हैं परिवार में, जब बड़ा
0: बिल्कुल,
1: परिवार होता है तो उसकी रौनक ही अलग होती है।
0: बहुत बहुत मजा
1: जी
0: आता था, क्योंकि हमारे बाबा लोग 7 भाई और 1 बहन, तो आप सोच सकती हैं क्या धमाल होता होगा।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर, क्योंकि आजकल तो परिवार सिमटते से जा रहे हैं, छोटे से होते
0: हाँ
1: जा रहे हैं। सुचिका जी ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन है?
0: मेरे घर में ससुराल में सास ससुर हैं,
1: जी
0: और देवर देवरानी उन लोग अभी दिल्ली में, मतलब वो भी गाजियाबाद की तरफ ही रहते हैं, तो बस हम लोग 4-5 जो ना, मेरा बेटा है वो अभी लॉ
1: जी
0: कर चुका है, अभी अभी हाल ही में कृपा है ठाकुर जी की नौकरी पे लगा है,
1: क्या बात
0: तो बस
1: है,
0: छोटा सा प्यारा सा परिवार है।
1: बहुत अच्छा लगा सुन करके। अच्छा बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
0: मैं सावन के महीने में सजना को याद ना करूं ऐसा तो हो नहीं सकता,
1: नहीं बिल्कुल,
0: और
1: आप याद
0: सावन है
1: कीजिए
0: तो सजना भी है और उनके लिए निखरना भी है,
1: जी।
0: तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आपको अनुरोध करूंगी, सजना है मुझे साजन के लिए, ये वाला गाना आप चला दीजिए।
1: सजना है मुझे सजना के लिए, फिल्म सौदागर का ये गाना।
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: चलिए आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत। आप ऐसे ही अपने सजना के लिए सजती संवरती रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं अर्चना गुप्ता बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ।
0: अर्चना जी, आपने हेलो सहेली कार्यक्रम में फोन लगाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपका फोन लगा?
1: अरे आपको तो मैं जनवरी से ट्राई कर रही हूँ। मैं सोची थी मैं विश करूंगी हैप्पी न्यू ईयर,
0: जी
1: उससे करते करते सावन आ गया, अब तो पलता मिल ही गया।
0: मिल गई ना, तो देखिए सावन चल रहा है ना, तो पहले तो हम लोग एक दूसरे को सावन की ही शुभकामनाएं देते हैं, है ना?
1: आपको भी, जी जी
0: तो अर्चना जी,
1: आपको भी बहुत बहुत बधाई हो सावन की,
0: अर्चना
1: जिंदगी हरी भरी रहे आपकी।
0: जी, अर्चना जी, ऐसी ही बहुत प्यारी सी शुभकामनाएं आपने मुझे दी, और हम भी देना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में हरी भरी खुशियां रंग बिखेरे तरह तरह के, और बहुत
1: जी,
0: सुखमय जीवन हो आपका। बताइए अर्चना जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं हाउस वाइफ हूँ और घर से मैं थोड़ा सा मिक्सचर, नमकीन और गुजिया इसका काम करती हूँ,
0: अच्छा,
1: जो
0: ये
1: बहुत अच्छा चलता है।
0: बहुत
1: अभी फेस्टिव सीजन है ना, तो अभी मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। ये रक्षाबंधन से शुरू होकर दिवाली तक मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ, बाकी समय तो चलता ही है,
0: जी,
1: बट अभी त्योहार बहुत ज्यादा रहते हैं ना, तो स्पेशली गुजिया का मेरा बहुत डिमांड रहता है।
0: अच्छा, तो गुजिया आप किस तरह की बनाती हैं, सूजी की या
1: मावे की?
0: मावे की?
1: नहीं, मावे की,
0: उसमें कुछ भी मिलाती
1: मावे
0: नहीं है,
1: की
0: सूजी भी नहीं मिलाती ना?
1: नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ शक्कर, मावा और ड्राई फ्रूट्स रहता है।
0: क्या बात है। जो आप नमकीन बनाती हैं, उसमें कौन सी खास नमकीन आप बनाती हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती है और सबसे ज्यादा लोग उसे पसंद करते हैं?
1: चाकोली है, वो बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि मेरा थोड़ा डिफरेंट रहता है।
0: जी बहुत,
1: हाँ, तो वो बहुत ज्यादा चलता है, पसंद किया जाता है।
0: ये खाना जो बनाने का शौक है, ये आपको बचपन से था या बाद में आपको हुआ?
1: अरे नहीं, मैं तो किस उम्र से खाना बना रही हूँ मेरे को ये भी नहीं मालूम। मेरी मम्मी बचपन से
0: जी
1: ही काम करवाती थी, तो वो आदत पड़ गया था, और खाना
0: जी
1: खाने का शौक और बनाने का बहुत ज्यादा शौक था, तो
0: क्या
1: वो फिर हमारी हॉबी बन गई।
0: क्या बात है। यानी
1: बड़े
0: देखिए,
1: हो गए हैं उसके बाद मैंने ये काम शुरू किया है, और भगवान की दया है कि बहुत अच्छा चल रहा है।
0: माता पिता का जो भी सिखाया हुआ होता है ना काम, बच्चों को जो बचपन में
1: जी
0: सिखाते हैं, वो अपनी बेटियों को सिखाते हैं कि
1: हाँ
0: शादी होगी, दूसरे घर जाएंगी, तो वहां पर उनको किसी काम में दिक्कत ना हो। तो देखिए, उनका जो सिखाया हुआ था आपको हुनर, वो आज आपके काम आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है।
1: काम आ रहा है ये चीज।
0: तो आपने अपने परिवार में अपने बच्चों को भी इस तरह की शिक्षा दी?
1: नहीं, बच्चे तो अभी पढ़ रहे हैं, पर हाँ अभी जैसे गुजिया का टाइम है, तो मेरी बेटी मेरी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि
0: जी
1: उसमें जब तक दो तीन लोग नहीं लगेंगे ना, तो नहीं हो पाता। एक एक दिन में 10 किलो

0: 15 किलो बनाना रहता है।
1: बिल्कुल
0: दो
1: सही बात
0: भी है। हाँ, दो लेडीज भी हैं, तो मेरी बेटी मेरी बहुत हेल्प करती, मेरे हस्बैंड हेल्प करते हैं।
1: क्या बात है, यानी सावन में आपने गुझियों की याद दिला दी, महक हमारे यहाँ तक आ गई है उड़ करके। अर्चना जी बड़ा अच्छा लग रहा है, और
0: मेरा तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग की आवाज इतनी मीठी
1: जी
0: लगती है ना
1: जी
0: कि मैं क्या बोलूँ, ये
1: जी
0: पूछिए मत।
1: धन्यवाद। अच्छा ये बताइए अर्चना जी, सावन की कौन कौन सी यादें हैं जो आप मुझे बताना चाहेंगी?
0: ऐसे तो बहुत सारी हैं, पर हमको अपने शादी के बाद का पहला सावन याद है, जब मैं मायके गई थी, अपने हाथ से भाई को राखी बांधी थी।
1: जी
0: 30 साल शादी को हो गए, उसके बाद ये चांस दोबारा नहीं मिला, तो वो यादगार रहा है मेरे लिए।
1: जी आप फिर से वापस अपने मायके जाइए और अपनी यादों को फिर से ताजा कीजिए, तो वो बहुत ही अच्छी सी यादें होती हैं, है ना?
0: वो यादें होती हैं, पर अभी बच्चे बड़े हो गए, बच्चों को देखना है तो हो नहीं पाता है।
1: जी बिल्कुल हम समझ सकते हैं ये चीज। तो सावन में जब मेले लगते हैं, वो मेले आपने जाकर देखे हैं?
0: बहुत देखे हैं, बहुत मजा आता है। उसके लिए तो स्पेशली समय निकालती हूँ कि नहीं मेरे को जाना, उसमें जाने से ऐसा लगता है मेरा बचपना आ गया वापिस।
1: और वहां
0: उस
1: पर
0: समय और कुछ नहीं रहता
1: जी
0: था, तो मेला देखना है, कोई भी मेला लगाओ, कहीं भी लगाओ तो जाना है देखने, मेला देखने जाना है, प्रदर्शनी देखने जाना है। वो जो झूले वगैरह रहते थे, झूलने का जो आनंद आता था ना, वो सब चीजें तो अब याद करके ही रह जाते हैं, पर लगता है तो मैं तो जरूर जाती हूँ।
1: अच्छा मेले में जो दुकानें लगती है, वहाँ बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें मिलती हैं जो घरों में उपयोग की जाती, बच्चों के खिलौने होते हैं, श्रृंगार का सामान होता है, हार माले चूड़ियां सब होती हैं, तो आप उनमें से क्या क्या चीजें ज्यादा खरीदा करती थी उस समय?
0: मैं किचन का सामान ज्यादा देखती थी, ध्यान उसी पे ज्यादा जाता
1: क्या
0: था।
1: बात है, हम समझ सकते हैं कि आपका शौक बचपन से जो किचन में आपने काम किया है,
0: किचन
1: तो
0: में हाँ,
1: जी
0: क्या है क्या नहीं है, अच्छा इस बार ये चीज नया आया है, पकड़कर वो जो पहले तो बड़े बड़े हम लोग के यहाँ अदरक वगैरह घिसने वाले
1: जी
0: आते थे,
1: जी
0: अब ये छोटे छोटे मिलने लगे, तो वो सारी चीजें जैसे मेले में दिखती थी ना, तो तुरंत खरीदते थे। और अभी भी किसी भी मेले में जाएंगे तो कुछ मैं नहीं देखूंगी, सबसे पहले गुजिया का सांचा ढूंढती हूँ।
1: क्या बात है, यानी डिजाइनर सांचे आप ढूंढती हैं गुजिया बनाने के लिए, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज्यादा ध्यान उसी पे जाता है।
1: बड़ा अच्छा लगा अर्चना जी आपसे बातें करके, खूब सारी यादें ताजा हो गई। तो चलिए बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
0: बरसात मूवी का, बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में।
1: बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपने चुना है मौसम के अनुरूप, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, कौन बोल रहा है और कहाँ से बोल रहा है? अपना नाम बताइए।
1: हेलो सहेली, मैं पूनम जैन बोल रही हूँ, जयपुर से बोल रही हूँ।
0: पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए पूनम जी, आपके कौन कौन से शौक हैं?
1: म्यूजिक मेरा सबसे पहला शौक है, मुझे
0: जी
1: गाने गाना सुनना बहुत पसंद है, साथ में मुझे कुकिंग में भी बहुत इंटरेस्ट है। जी
0: क्या बात है। और पूनम जी, आपको रेडियो सुनना पसंद है?
1: बिल्कुल, बहुत पसंद है।
0: और आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे दो बेटे हैं, दोनों लॉयर हैं,
0: जी
1: मेरे हस्बैंड और बड़े बेटे की शादी हो चुकी है, एक बिटिया है, मेरी डॉटर इन लॉ।
0: जी, क्या बात है। पूनम जी, ये बताइए,
1: सावन
0: जो सावन का महीना है, इसकी यादें आपके जीवन में किस तरह से जुड़ी हुई हैं?
1: का महीना मेरे लिए सिर्फ महीना नहीं है, ये भावनाओं का त्योहार है। चारों
0: जी
1: तरफ हरियाली, झूले, मेहंदी, गीत और भगवान शिव की भक्ति।
0: जी
1: सावन के आते ही मन में उमंग भर जाती है। जैसे अब तो खैर नहीं होता, लेकिन पहले सावन में हमेशा पियर जाती थी, वहां पर सबके साथ, मम्मी पापा भाई बहनों के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगता था।
0: और जयपुर में किस तरह से सावन आप सभी सखियां मिलकर के मनाती हैं?
1: सावन का महत्व मतलब झूले की तरह है, झूला सावन की पहचान है। कहते हैं ना, झूला झूलने से मन हल्का होता है, प्रकृति से जुड़ाव होता है,
0: जी।
1: पेड़ों पर रंगीन झूले और उन पर सहेलियों के साथ गाना, यही तो सावन की खूबसूरती है।
0: और वहां की क्या खास डिश होती है जयपुर की?
1: खरीद के तो जैसे हम घेवर लाते हैं, यहाँ के फेमस है सावन में घेवर और गुलाब जामुन, पूरे
0: जी
1: खीरे बनती है और घर में हम दाल बाटी चूरमा बनाते हैं। सावन मतलब दाल बाटी चूरमा का बहुत है जयपुर के अंदर ना, दाल
0: जी
1: बाटी चूरमा बहुत फेमस।
0: दाल बाटी चूरमा जो है, जो बाटी होती है, वो तो कई तरह की बनती है ना?
1: हाँ, मसाले वाली बाटी बनती है, आलू की बाटी बनती है, सादा बाटी बनती है।
0: जी, और मेवे वाली बाटी भी तो बनती है वहां पर?
1: हाँ बिल्कुल, अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल के, मेवा डाल के वो भी बनती है।
0: जी पूनम जी, आपने कभी वहां पर जो मेले लगते हैं, वहां पर जाके आपने देखा, एंजॉय किया सखियों संग?
1: जी बिल्कुल, यहाँ पर जयपुर में तीज माता की सवारी निकलती है,
0: जी
1: बहुत भव्य सवारी निकलती है, बिल्कुल एक फेस्टिवल की तरह, तो उसको हम देखने जाते हैं सिटी में।
0: क्या बात है, उसकी खूबसूरती देखते बनती होगी, है ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: बताइए पूनम जी, आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: ये गीत सुना दीजिए, अक्के सजन सावन में, ये मुझे बहुत पसंद है।
0: पूनम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।
2: आपके

0: सखियों से बातें करते हुए वक्त तो पंख लगाकर उड़ गया और दे गया बहुत सारी यादें। चलते चलते आपको बता देते हैं कार्यक्रम संबंधी जानकारी। प्रत्येक मंगलवार को सुबह 11 से 12 बजे तक रिकॉर्डिंग होती है। प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे हेलो सहेली कार्यक्रम प्रसारित होता है, तो सुनना ना भूलिएगा हेलो सहेली कार्यक्रम। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। फोन नंबर है 4002462, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 4002462 एसटीडी 022। अब इसका दूसरा नंबर भी नोट कीजिए। फोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 28670288 एसटीडी कोड है 022। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, अगली बार प्रयास कीजिएगा। और जिनकी कॉल आज लग गई है उनसे अनुरोध है कि अगले 2 माह तक कॉल नहीं लगाएं। हेलो सहेली कार्यक्रम से विदा लेते हुए आपको ये बता दें कि आपने आज का सफर तय किया मंजरी वर्मा के संग। हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग ने और संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब दीजिए कार्यक्रम से अनुमति, स्वीकार कीजिए मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, गीतों भरी कहानी, बस कुछ ही पलों के बाद। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए विनीता अस्थाना की लिखी कहानी दिल की गिरह।
1: स्वाति की सुबह हमेशा जैसी सुंदर थी। जाते हुए भादो ने उसे सुबह की सैर पर भिगो दिया था। उसके पसंदीदा मौसम के आखिरी कुछ दिन बचे थे, जिसे वो अगली बारिश तक खुद में समेट लेना चाहती थी। भीगी भीगी स्वाति जब अपने कॉलोनी के अंदर पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी। टाइम देखकर वो हड़बड़ा गई। बच्चों की बस आने वाली होगी, देर हो गई आज, सोचती हुई वो घर के अंदर घुसी और सीधे ही किचन में जाकर बच्चों का टिफिन पैक करने लगी। कान्हा और वृंदा को अभिनव ने पहले ही तैयार कर दिया था। टिफिन भी उसकी महाराजिन मंजू बना चुकी थी। हर काम अपने समय से हो चुका था, लेकिन मां का दिल है ना, जब तक खुद काम में हाथ न लगाए उसे चैन ही नहीं पड़ता। बच्चों को भेजकर वो भी गुनगुनाती हुई नहाने चल पड़ी। टाइम पर ऑफिस भी तो पहुंचना था। क्या बात है, आज तो कोई मूड में लग रहा है। आईने के आगे संवरती स्वाति के गीले बालों में तौलिया बंधा था। उसे गुनगुनाते देखकर अभिनव ने उसे बाहों में भर लिया। अभी देर हो जाएगी यार, छोड़ो मुझे। अभिनव को प्यार से झिड़कती हुई स्वाति के चेहरे पर एक लालिमा तैर गई। एक तो इस घर में प्राइवेसी कम मिलती है, उस पर तुम हो कि मौके का फायदा भी नहीं उठाने देती, अभिनव ने शिकायत की। अच्छा जी, 10 साल की शादी है और आप अब भी नौशे मियां बने हुए हैं। अभिनव को चिढ़ाती हुई स्वाति तैयार हो चुकी थी। हाँ भाई, पुराने पति की किसको परवाह होती है, चलो तुम्हारा नया प्रेमी बन जाता हूं। अभिनव ने नई पेशकश की। ये सही आइडिया है, पुरानी शादी में नए प्यार का तड़का। स्वाति हंसती हुई घर का ताला बंद करने लगी। रोज ही दोनों साथ में ऑफिस के लिए निकलते थे। स्वाति पहले अभिनव को उसके ऑफिस पर ड्रॉप करती, फिर अपने ऑफिस चली जाती। रोज की तरह दोनों साथ निकले और अपने अपने ऑफिस चले गए। दिन की शुरुआत जितनी अच्छी थी, ऑफिस पहुंचते ही स्वाति का उतनी ही बुरी खबर से सामना हुआ। बीती रात उसका एक सहकर्मी आलोक नशे की हालत में ऑफिस की बालकनी से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई थी। ऑफिस में पुलिस और मीडिया का जमावड़ा था, सबके बयान लिए जा रहे थे। मीडिया वाले भी हर किसी से बात करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक हुई इस दुर्घटना से स्वाति स्तब्ध रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि जो आलोक कल दिन भर अपनी तरक्की को लेकर खुश था, जो अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, उसके साथ ऐसा कैसे हुआ होगा। वो न सिर्फ दुखी थी बल्कि बहुत बेचैन भी थी। इसी उधेड़बुन में वो गलती से लाइव न्यूज करते रिपोर्टर्स के फ्रेम में आ गई। हड़बड़ाई हुई स्वाति ने संकोच में खुद को लेडीज बाथरूम में बंद कर लिया। आलोक ने ऑफिस में नशा कैसे किया, आखिर कौन था उसके साथ, उसके मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। इन्हीं सवालों के जवाब बाहर मीडिया और पुलिस भी ढूंढ रही थी। जिंदगी किसी भी पल बदल सकती है, इसका वाकई कोई भरोसा नहीं।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: स्वाति ने अपने चेहरे को धोया और बाहर की तरफ बढ़ी कि उसके फोन की घंटी बजने लगी। उसने फोन उठा लिया। हेलो, तुम ठीक हो? कौन? स्वाति? स्वाति वत्स बोल रही हो ना? हाँ, मैं स्वाति ही बोल रही हूं। आप कौन? पहचाना नहीं? मैं निमिष राठौड़। निमिष? दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले निमिष? बिल्कुल सही, तो तुम्हें याद हूं मैं। कैसी बात कर रहे हो, हम फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। अरे ऐसे जुड़ने का क्या फायदा जब बस जन्मदिन और नए साल की शुभकामना ही देती हूं। आलोक की मौत का सदमा स्वाति को कई दिन तक रहा, लेकिन निमिष के रूप में उसे उस वक्त एक फौरी आराम मिल गया। निमिष और स्वाति ने 15 साल पहले साथ में ही यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। दोनों के बीच कभी ज्यादा दोस्ती नहीं थी। फेसबुक के आने के बाद सभी लोगों ने अपने पुराने दोस्तों और सहपाठियों को ढूंढ लिया था, और तभी से स्वाति और निमिष भी वहां जुड़े थे। निमिष एक नामी न्यूज चैनल का हेड था और स्वाति को अपने चैनल की लाइव न्यूज के फ्रेम में देखकर ही उसे कॉल किया था। हालांकि कॉलेज में भी दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं थी, लेकिन स्वाति को कॉलेज में भी उसका इंटेलिजेंस अच्छा लगता था। उसकी वाणी और स्वभाव में हमेशा ही नरमी रहती। कुछ देर निमिष से बात करके उसका दिमागी बोझ थोड़ा हल्का हुआ। अब जबकि निमिष ने स्वाति के चेहरे की परेशानी कुछ सेकंड्स के वीडियो में ही समझ ली थी, तो उसे निमिष की परवाह अच्छी लग रही थी। शायद ये परवाह भी उसके स्वभाव का ही हिस्सा थी। कुछ दिन के बाद लगभग हर हफ्ते 10 दिन में निमिष का फोन आता या वो उसे कॉल करके आलोक के केस के बारे में पूछ लेती। धीरे धीरे पुराने सहपाठियों के बीच उनके वर्तमान की जानकारी साझा होने लगी। दोनों ने अपने अपने पार्टनर्स के बारे में एक दूसरे को बताया। भाई, तुम्हारी और अभिनय की लव मैरिज है? निमिष ने पूछा। उससे भी बढ़िया, हमारी फ्रेंडशिप मैरिज है, स्वाति ने उसे नया टर्म बताया। यानी तुम्हें किसी से अब तक प्यार नहीं हुआ? निमिष ने उत्सुकता से पूछा। स्वाति ने गर्व से कहा, मित्रता प्रेम की पराकाष्ठा होती है। और ये किस महापुरुष ने कहा है? निमिष ने झट से पूछा। ये एक महान स्त्री ने कहा है, स्वाति ने खिलखिला के जवाब दिया। हाँ, होगी कोई तुम जैसी स्त्री जिसने प्रेम को सही से जाना ही नहीं। निमिष संपादक था, शब्दों के जाल को बुनना उसे खूब आता था। अच्छा, सबकी प्रेम की परिभाषा अलग भी तो हो सकती है। मुझे अभिनव जैसा जीवन साथी मिला जिसने मुझे सहज रहने दिया, कभी बदलने की कोशिश नहीं की, उससे प्रेम अपने आप होता चला गया। अच्छा, और तुम्हें कैसे पता वो दोस्ती नहीं प्रेम है? निमिष ने फिर से सवाल किया।

0: अब स्वाति ने चिढ़कर कहा, तुम्हारी प्रेम कहानी और शादी अमर रहे इतना ही मानवता के लिए काफी है।
1: भाई मेरी तो अरेंज मैरिज है, निमिष ने बताया तो स्वाति ने झुंझला के कहा,
0: वाह, और ये प्रेम पर तब से ज्ञान दे रहे हैं।
1: नहीं, प्रेम बार बार नहीं होता, निमिष कुछ बोलते बोलते चुप हो गया।
0: मतलब तुम्हें किसी और से प्यार, तो शादी क्यों नहीं की,
1: स्वाति ने उत्सुकता से पूछा। हां किया था, पर उससे कह नहीं पाया। कई साल उसे ढूंढा, उसका इंतजार किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। उम्र निकल रही थी, फिर पूजा का रिश्ता आया और पेरेंट्स ने पक्का कर दिया। इसलिए समझता हूं कि बिना प्यार की शादी कैसे होती है। उसकी शादी को 3 साल हुए थे, जबकि स्वाति की शादी को 11 साल होने को थे। स्वाति आगे पूछना चाहती थी, लेकिन अपने रिश्ते की मर्यादा में उसके और उसकी पत्नी के विषय में कुछ पूछ न सकी। लेकिन उसका दिमाग अब यह जानना चाहता था कि निमिष को किससे प्रेम हुआ था। क्या वो उस लड़की को जानती है? कहीं साथ में पढ़ने वाली कोई लड़की तो नहीं थी?

हफ्ते 10 दिनों में होने वाली कॉल अब रोज होने वाली बातों में बदल गई। निमिष को सही सवाल पूछना आता था। स्वाति बेखटके हर जवाब देती। उसके मन की हर परत अब निमिष को पता थी। निमिष कम बोलता था। जब भी स्वाति खुद से पूछे सवाल का रुख उसकी तरफ कर देती तो वो उदास हो जाता। ऐसा लगता था जैसे उसकी शादी बस एक बंधन, एक जिम्मेदारी हो। उल्टे स्वाति और अभिनव की शादी और सामंजस्य वो सराहता, लेकिन बूझे स्वर में। ऐसे में स्वाति ने उससे अपने पति और रिश्ते की बात करना बंद कर दिया। अब वो बाकी विषयों पर बातें करते, जैसे राजनीति, देश, दुनिया, फिल्म, गाने और खाना भी। स्वाति और निमिष के बीच फोन पर बातों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। जब निमिष अपने ऑफिस के लिए निकलता था, उस वक्त तक स्वाति अपने ऑफिस पहुंच चुकी होती थी। वो जब घर से निकलता तो उसे फोन मिला लेता और जब तक अपने ऑफिस पहुंचता तब तक स्वाति से बात करता रहता। कई बार तो वो रास्ते में ही होती और निमिष का फोन आ जाता। स्वाति ने अभिनव को निमिष के बारे में बता दिया था। उससे बात करके जो भी पुराने यादें लौटती, उनकी कहानी वो अभिनव को रोज सुनाती। अभिनव को स्वाति के दोस्तों से कभी कोई दिक्कत नहीं थी। कॉलेज के दिनों की पुरानी बातें हों या रोजमर्रा की बातें, निमिष और स्वाति के बीच अब कोई पर्दा नहीं था। एक दिन निमिष ने स्वाति को बताया कि जितनी बातें वो उससे करता है, उतनी बातें उसने कभी भी किसी और से भी नहीं की है, ना अपने परिवार में, ना ही पत्नी के साथ। सच में यार, पति पत्नी की क्या बात कर रही हो? मुझे तो लगता है मैंने कभी भी किसी से इतनी बातें नहीं करी जितनी मैं तुमसे करता हूं। कभी सोचा है कि कैसे तुमसे इतना सहज हूं कि बिना किसी लाग लपेट के हर बात कह पाता हूं? निमिष जानना चाहता था कि स्वाति उसकी जिंदगी में अपनी खास जगह को पहचान रही है या नहीं। अच्छा, लेकिन मैं तो हमेशा से इतनी बातों नहीं हूं। मैं तो रोज की बात रोज ना करूं तो पेट में दर्द होने लगे। वो हंसने लगी। स्वाति तो स्वाति थी, अल्लड़ और हिंट न देने वाली। हां, तुम तो कॉलेज के जमाने से ऐसी ही हो, लेकिन तुम्हारी संगत मुझे बदल रही है, वरना मैं अपने मन की बात किसी से नहीं बांटता। उसने एक बार फिर से अपनी जिंदगी में स्वाति की अहमियत और बदलाव को रेखांकित किया। घुटन नहीं होती? स्वाति ने उससे अचानक पूछा। निमिष तैयार नहीं था। उसे लगा कि स्वाति पूछेगी कि ऐसा क्यों है कि निमिष उसके साथ इतना सहज है, या शायद ये कि उसकी संगत के निमिष पर और क्या असर हो रहे हैं। लेकिन उसने पूछा उसके ना बात करने की घुटन के बारे में। सवाल से निमिष ने यह तो जाना कि स्वाति को उसके स्वभाव को लेकर उत्सुकता भी है और उसकी चिंता भी। उसने थोड़ा सोच के जवाब दिया। आदत है सब अपने अंदर रखने की, खुशी हो या परेशानी, सब बस हमेशा अंदर ही रहा। इसीलिए मैं तुम्हारे जैसा एक्सप्रेसिव नहीं हूं। चलो, तुम्हारे बंद ढक्कन को खोलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या निकलेगा। स्वाति ने पूरे जोश से निमिष की जिंदगी के बारे में जानने और उसके अकेलेपन को दूर करने का बीड़ा उठा लिया। उस रोज एक लंबी मुस्कान ने निमिष की आंखों को प्रदीप्त कर दिया। स्वाति को अब स्पेशल फील हो रहा था। निमिष वाकई मितभाषी था और वो अपने मन की बात कभी किसी से नहीं कर पाता था, जबकि स्वाति के साथ वो हर बात बिना किसी तकल्लुफ के साझा कर लेता था। उसे खुद पर थोड़ा नाज हुआ, लेकिन जब भी निमिष इस बात पर जोर देता, स्वाति ऐसा दिखाती जैसे ये कोई खास बात नहीं है। दिल ही दिल में उसे यह एहसास था कि उन दोनों के बीच कुछ तो बदल गया था। आखिर उनका आपस में गजब का सामंजस्य था। इतने सालों के बाद वो संपर्क में आए थे। सिर्फ फोन और चैट पर बात करते हुए कुछ ही हफ्तों में वो दोनों बिना कहे एक दूसरे की बात, यहां तक कि भाव भी समझ जाते। स्वाति को जो अब तक रोमांचक लग रहा था, वो अब उसे अजीब लगने लगा। वो जानना चाहती थी कि क्या ये वाकई अटपटा है या स्त्री कंडीशनिंग है जो उसे ये आत्मीयता और अंडरस्टैंड

स्टैंडिंग गलत लग रही है। वो जानना चाहती थी कि क्या उसकी तरह निमिष को भी उनका मेलजोल इतनी तेजी से बढ़ना अटपटा लग रहा है। लेकिन निमिष ने उसे फिजूल बातों पर मंथन करने से मना किया। वो किसी भी रूढ़िवादी सोच के चलते अपने रिश्ते को खोना नहीं चाहता था।

निमिष जानता था कि स्वाति के प्रति बढ़ता लगाव दरअसल उसका खोया हुआ प्रेम ही है। वो स्वाति को कॉलेज के जमाने से पसंद करता था, लेकिन संकोच में उसे बता नहीं सका। ग्रेजुएशन के बाद स्वाति आगे पढ़ने दूसरे शहर चली गई और वो कभी उसे ढूंढ नहीं सका। 8 साल बाद जब फेसबुक पर स्वाति मिली तो उसकी शादी हो चुकी थी और परिवार में एक बेटी भी थी। फेसबुक पर स्वाति से इतनी बात करने की उसकी हिम्मत भी नहीं हुई। उस दिन घबराई हुई स्वाति को अपने चैनल की स्क्रीन पर देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने कॉलेज ग्रुप से लिए हुए उसके नंबर पर पहली बार कॉल किया था। उसे पता नहीं था कि बातों का सिलसिला उसके अंदर की चाहत को फिर भड़का देगा। उससे अब सब्र नहीं हो रहा था। सुनो, मुझे तुमसे मिलना है, निमिष ने कहा। अचानक? ठीक तो हो? स्वाति को चिंता हुई। बोलो ना, मिलोगी? उसने विनती के स्वर में पूछा। हां, क्यों नहीं, इस इतवार को घर पे आ जाओ। स्वाति ने सहज ही निमंत्रण दे दिया। घर पर नहीं, निमिष ने साफ मना कर दिया। क्यों, अभिनव से नहीं मिलना, बल्कि पूजा को भी लेते आना, स्वाति ने फिर से समझाया। नहीं यार, तुमसे मिलना है, किसी और से नहीं मिलना। अभी परिवार को दोस्ती के बीच में मत लाओ ना, निमिष ने झुंझला कर कहा। अच्छा ठीक है, पहले हम दोनों मिलते हैं। स्वाति उसकी मनोस्थिति समझना चाहती थी। करीब 6 हफ्ते फोन पर बात करने के बाद निमिष और स्वाति कॉलेज के बाद पहली बार रूबरू मिले। निमिष आज भी वैसा ही था, जबकि कॉलेज के जमाने में सीख सी दिखने वाली स्वाति

0: अब भरी पूरी महिला हो गई थी। उसका वजन उस पर फबता था। उनका साथ कपूर और आग जैसा था। स्वाति की हंसी की खनक और बातों की खुशबू से निमिष का मन महक रहा था। स्वाति से मिलकर वो जान गया था कि अपने दिल की बात बताना या पुरानी चाहत का राज खोलना स्वाति को दोबारा खो देने जैसा होगा, क्योंकि वो जितनी बात करती उसमें आधे से ज्यादा बातें या उदाहरण उसके पति अभिनव के बारे में होते। स्वाति अभिनव के साथ खुश थी। निमिष उसके दिल में अपनी छोटी सी जगह को खोना नहीं चाहता था। उनकी बातचीत की तरह उनके मिलने का सिलसिला भी बढ़ता गया। कभी निमिष उसके ऑफिस की तरफ आ जाता और उसके साथ कॉफी पी लेता, कभी लंच पैक करवा के साथ ही ले आता और दोनों गाड़ी में ही बोलते बतियाते लंच करते। ऐसा लग रहा था कि अपनी भावनाओं और परिस्थितियों दोनों पर अब उनका कोई बस न रह गया हो। जितनी देर वो स्वाति के साथ रहता उसके चेहरे की मुस्कान और आंखों की चमक कायम रहते। उसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो पूरी तरह से स्वाति के प्यार में डूबा है। दूर से देखने वाले भी उनके बीच का स्पार्क महसूस कर सकते थे। ऐसे में यह बात उन दोनों को खुद महसूस न हो रही हो यह संभव नहीं था। बकौल निमिष, वो इस अनाम से प्यारे रिश्ते में कोई सवाल नहीं चाहता था और अपने बीच तेजी से बदलती भावनाओं को वो जानबूझकर अनदेखा करने लगा। स्वाति को निमिष की आंखों का प्यार और आकांक्षाएं साफ दिख रही थीं। मजाक मजाक में वो उसे कई बार प्यार में न पड़ने की चेता चुकी थी। निमिष भी उसकी चेतावनी को हर बार काश ऐसा ही हो जाए बोलकर हंसी में उड़ा देता। वो जानता था कि स्वाति को जिस प्यार के होने का डर सता रहा था वो पहले से ही उसके जीवन का सच था। शायद उसे खुद भी प्यार में पड़ जाने का डर हो।
1: गीतों भरी कहानी जारी रहेगी एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: आप सुन रहे हैं गीतों भरी कहानी। इस श्रृंखला में आज विनीता अस्थाना की लिखी कहानी दिल की गिरह। आइए सुनते हैं आगे की कहानी।
1: निमिष का शक सही था। स्वाति समझ रही थी कि दोस्ती और उनके वर्तमान समीकरण के बीच बहुत फर्क आ चुका है, और ऐसा सिर्फ निमिष की तरफ से नहीं था। उसने स्वयं भी यह समझ लिया था कि अब उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है, बल्कि एक दूसरे के प्रति बढ़ता उनका आकर्षण भी है। ऐसे में वो इस बढ़ती लत को यहीं रोक देना चाहती थी। निमिष, हम दोनों खुशहाल परिवार में रहते हैं, हमें सतर्क रहना चाहिए कि इस दोस्ती से अभिनव या पूजा को इनसिक्योरिटी ना हो।
2: तुम ना ओवरथिंकिंग की दुकान हो यार, बेवजह परेशान होती रहती हो, इतना मत सोचो।
1: निमिष ने समझाया कि उनकी दोस्ती में उनके पार्टनर्स के लिए उसे कोई धोखा नहीं दिख रहा है।
2: यार तुम सोचती बहुत ज्यादा हो, अगर दोस्ती से ज्यादा है तब भी ये कोई चीटिंग नहीं है, हमें भी खुश रहने का हक है।
1: अपने पसंदीदा इंसान के साथ समय बिताना अगर किसी को धोखा लगे तो लगा करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
2: निमिष,

0: दोस्ती नहीं है, ये जो तुम्हारी आंखों में दिखता है उससे मुझे घबराहट होती है। मैं अभिनव को धोखा नहीं दे सकती। बात को समझो, हमें मिलना फौरन बंद करना होगा। प्यार व्यार में पड़ जाओगे तो बस, हमें बात भी कम करनी चाहिए। स्वाति के लहजे में चिंता थी।
1: तुम्हें मुझसे प्यार हुआ क्या?
0: नहीं ना, क्या ही फायदा तब इतना सोचने का। निमिष कह नहीं रहा था बल्कि पूछ रहा था। फिर भी यह ठीक नहीं है, किसी से मानसिक लगाव भी इमोशनल चीटिंग ही है। स्वाति ने अपना स्टैंड क्लियर किया।
1: पागल मत बनो स्वाति, ये जो वक्त मैं तुम्हारे साथ जीता हूं वो मेरे पूरे दिन की खुराक है। मुझे नहीं पता तुमसे मिलने से पहले मैं कैसे जिया। मुझे बस इतना पता है कि मेरे नीरस जीवन में जो भी रंग है उसकी वजह यही समय है जो मैं तुमसे बात करते हुए, तुम्हें देखते हुए बिताता हूं।
0: निमिष ने कातर आंखों से स्वाति से उसका चैन न छीनने की गुजारिश की।
2: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

स्वाति समझ रही थी निमिष उससे अपने प्यार का इजहार कर देना चाहता है, लेकिन स्वाति से दूर होने का डर उसे रोक रहा था। उस रोज स्वाति जब उससे मिलकर अपने घर के लिए निकली तो उसने निमिष को कोई वादा नहीं किया, बल्कि उसे सांत्वना देकर चली गई। धीरे धीरे उसने निमिष के कॉल उठाना कम कर दिया। जब भी वो मिलने को कहता, स्वाति कोई न कोई बहाना बना देती। वो ऑफिस तक आ जाता, तब भी वो मीटिंग का बहाना करके उससे नहीं मिलती। ऐसा नहीं था कि उसके इस व्यवहार से सिर्फ निमिष दुखी था, दुखी तो वो खुद भी थी, लेकिन उसे पता था कि उसकी ही तरह निमिष भी शादीशुदा है। वो जितना अपने और निमिष के रिश्ते को पड़ताल करती, उसे अपना कदम सही लगता। स्वाति अभिनव से प्यार करती थी, उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी और वो साथ में खुशहाल भी थे। फिर क्यों उसने निमिष को इतना आगे बढ़ने दिया? मुझे न प्यार की तलाश है न प्रेमी की, कैसे संभव है एक इंसान के प्रेम में होते हुए किसी दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाना? क्या मैं आकर्षित हूं या मुझे भी निमिष से प्रेम हो रहा है? वो जितना खुद को मथ रही थी, उतने ही अलग अलग जवाब उसके जहन में आ रहे थे। नहीं, मुझे निमिष से प्यार नहीं है, मुझे बस ये एहसास अच्छा लग रहा है कि कोई मेरी परवाह करता है। निमिष मुझसे बात करता है और मुझे अपने जीवन की प्राथमिकता मानता है, मुझे सिर्फ इस एहसास से प्यार है। उसे लगा कि जब से निमिष ने अपने और अपनी पत्नी पूजा के बीच के संबंधों के विषय में बताया, तब से उसे निमिष की ज्यादा फिक्र होने लगी थी। निमिष और पूजा के संबंध किसी बुजुर्ग जोड़े से भी ज्यादा

0: बस थे। उनके बीच न तो संवाद था न ही दैहिक संबंध, कम से कम निमिष का तो यही कहना था। उसके जीवन के बारे में सुनने के बाद स्वाति को उससे सहानुभूति होने लगी थी। उस जैसा सुलझा हुआ और प्यारा इंसान अपने जीवन में हर खुशी का हकदार था, प्यार का भी। स्वाति अपनी सोच की परतों से खुद ही घबरा रही थी। कोई भी तर्क कोई भी वजह इस बात को सही नहीं ठहरा सकती कि मैं एक खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रही हूं और ऐसे में अपने 15 साल पुराने एक सहपाठी के लिए मेरा दिल पिघल रहा है। स्वाति ग्लानी से भर गई और उसने निमिष से हर संवाद खत्म करने का फैसला लिया। उसे निमिष के साथ बिताया हुआ हर पल अभिनव के साथ की हुई बेवफाई लग रहा था। वो अभिनव से कुछ छुपाती नहीं थी, लेकिन निमिष के बदले हुए व्यवहार को उसने अभिनव के सामने जाहिर नहीं किया था। वो जानती थी कि अभिनव पजेसिव या कंट्रोलिंग पति नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसे पूरी बात बता न सकी। ये भी उसके अपने मन का चोर था शायद। वो निमिष को दिए हुए समय की भरपाई अभिनव के साथ अच्छा वक्त गुजार के करना चाहती थी। स्वाति ने दीपावली की पुरानी लाइट्स को स्टोर से निकाल के अपनी हरी भरी बालकनी में लगाया। सुनहरी लाइट्स में पौधों की खूबसूरती और निखर गई। बेत के सोफे पर नए चढ़ाए कुशन कवर सज रहे थे। अभिनव घर में घुसा तो स्वाति ने तैयार होकर उसका स्वागत किया। अभिनव के लिए ये सुखद आश्चर्य था। बालकनी में गर्मा गर्म कॉफी के मग उसका इंतजार कर रहे थे।
1: क्या बात है, अभी से दिवाली की सजावट शुरू हो गई।
0: हट, शादी के कई साल बीत जाएं तो यही होता है, स्पेशल फील कराने की कोशिश का अंजाम तो देखो जरा। उसने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाया।
1: सॉरी बाबा, मजाक कर रहा था। जीवन में रस बना रहे उसके लिए प्यार में ये सब छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं।
0: देर रात तक दोनों वहीं बैठकर बातें करते रहे। घर और नौकरी की भागदौड़ में दोनों को आपस में बातें करने का मौका कम मिलता था। हालांकि स्वाति अपने हिस्से की बात रोज अभिनव से बोल ही देती थी, लेकिन वो एक तरफा संवाद था। अभिनव ने डिसाइड किया कि अब से हर शाम वो दोनों साथ में कॉफी पिएंगे और हर हफ्ते में कम से कम एक बार साथ में अपने दफ्तर से अलग कहीं जाएंगे। स्वाति को अब हल्का महसूस हो रहा था। हवा में घुले संगीत के साथ उसके जहन में एक चेहरा बार बार उभर रहा था, लेकिन उसने खुद को कड़ाई से रोक लिया और अभिनव को निहारने लगी। कितनी समानता है अभिनव और निमिष में। दोनों कम बोलते हैं, दोनों को मेरी परवाह है। काश हम दोस्त बन के रहते, काश उसे मुझसे प्यार न होता। मुझे उसकी कमी कितनी खल रही है, लेकिन निमिष ने मुझसे संवाद की अपनी कोशिश कुछ दिनों में ही बंद कर दी। प्यार तो नहीं ही रहा होगा उसे, शायद बस पसंद हो या बस आदत हो गई हो बात करने की। शायद कल किसी और की आदत हो जाएगी उसे।
1: स्वाति सोच ही रही थी कि अभिनव ने पूछा, अरे सुनो, वो तुम्हारे ड्राइव टाइम कॉल का क्या हाल है?
0: अभिनव ने उससे निमिष का हाल पूछा था, लेकिन उसकी आवाज के साथ ही स्वाति के दिल में कुछ झन्ना के बिखर गया। क्या मैं सिर्फ उसकी ड्राइव टाइम कॉल थी?

इन सब से दूर निमिष ने अपने दिल के शोर को न्यूज रूम के शोर में दबा दिया। अब वो पहले से ज्यादा खामोश, पहले से ज्यादा अकेला था। प्यार का इजहार न करके वो इतना अकेला तब भी नहीं था जब 15 साल पहले स्वाति चली गई थी। उसको ढूंढना, अपने दिल में बुने सपनों में खोए रहना उसका पसंदीदा काम था। फेसबुक पर स्वाति का मिल जाना उसके लिए किसी त्योहार जैसा बड़ा दिन था। वो उसे वर्चुअल दुनिया में देखकर खुश रहता। इन दिनों उसकी हर पोस्ट दसियों बार पढ़ता और उसकी तस्वीरों को अपने फोन के फोल्डर में छुपा के रखना उसके प्रिय शगल थे। निमिष के हाथ कीबोर्ड पर तेजी से चल रहे थे। उसके चैनल की टीआरपी ने उसे फिर से नंबर 1 बना दिया था। न्यूज रूम में जश्न जैसा माहौल था। पूरे साल हर हफ्ते नंबर 1 रहना आसान नहीं था, लेकिन निमिष ने यह जीत हासिल की थी। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे कि निमिष का अधीनस्थ प्रोड्यूसर राकेश उसके पास आया। सर, इस साल आपको यूरोप की कपल ट्रिप के वाउचर मिलने वाले हैं, उसने निमिष को बताया। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? निमिष ने ऐसे जताया जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं। सर, अंदर की खबर है। आप अपने साथ किसे ले जाएंगे? राकेश ने हिम्मत

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। आरंभ होती है आज की हमारी दूसरी यानी सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए हमारा कार्यक्रम तरुण कुसुम।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम तरुण कुसुम में। उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता अच्छे होंगे और इस वक्त कार्यक्रम के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं ब्रजेश कुमार सुमन के स्वर में ये लोकगीत।

0: सांप के काटने को हल्के में अपना ले। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
1: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर, संध्या 6:30 पर।
0: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन में करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
1: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आब रहल छी। एक ही क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
0: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन में करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
1: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अब आपको कार्यक्रम तरुण कुसुम में हम सुनवाते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: शब्दांक
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मेरा यानी अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। बड़ा ही खूबसूरत पर्यावरण संदेश आपने भेजा है। लिखा है, करते वृक्ष प्रदूषण दूर, देते हैं वर्षा भरपूर। बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस छोटे लेकिन बेहद खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो मित्रों, सबसे पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी का। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुम भाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। अगला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का। और आखिरी संदेश जो हमें मिला है वो हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन और कौशल्या देवांगन जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके उमंग कार्यक्रम से। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो आइए करते हैं आज की चर्चा की शुरुआत। तो श्रोताओं, आज हम एक बार फिर से चलते हैं सुदूर उत्तर पूर्वी सुंदर राज्य मेघालय और पहुंचते हैं वहां के पूर्वी खासी हिल्स में, जिसे हम ईस्ट खासी हिल्स भी कहते हैं। श्रोताओं, इन्हीं पर्वतों में बसा है मावली नोंग गांव। बता दें कि यह चेरापूंजी से लगभग 90 किलोमीटर दूर है और बांग्लादेश की सीमा से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर। अब आइए जानते हैं कि क्या खास बात है इस गांव में। जी, तो आपको बता दें कि मावली नोंग गांव को सन 2003 में एशिया का सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया गया था। कहते हैं कि इसका नाम मावली नोंग किसी प्राचीन स्थानीय गांव के मुखिया के नाम पर पड़ा है। श्रोताओं, इस गांव को लोग प्रेम से गॉड्स ओन गार्डन यानी ईश्वर का अपना बगीचा भी कहते हैं, क्योंकि यहां चारों ओर सुंदर फूलों, पेड़ों और हरियाली का अनूठा और सुंदर संसार दिखाई पड़ता है। चारों ओर बादल, झरने और घने बादल इस गांव की खूबसूरती को बहुत बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। श्रोताओं, अब जानते हैं कि इस गांव की सबसे खास बात क्या है। जी, तो इस गांव की सबसे खास बात यह है कि इस गांव में सफाई और स्वच्छता किसी सरकारी विभाग या कर्मचारी का दायित्व तो नहीं है, लेकिन यहाँ के हर निवासी का काम है। यहाँ हर व्यक्ति गांव की सफाई में भाग लेता है। उस गांव को देखने वाले कहते हैं कि जैसे आप इस गांव की सीमा में घुसेंगे, आपको जगह जगह बांस से बने हुए सुंदर कलात्मक कूड़ेदान लगे हुए मिलेंगे। आप कूड़ा यहाँ वहाँ जहाँ जी चाहे वहाँ नहीं फेंक सकते। सड़क पर एक पत्ता भी दिखाई दे तो लोग तुरंत उठाकर उसे कूड़ेदान में डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, आइए जानते हैं उसके बाद क्या होता है। उसके बाद श्रोताओं, सप्ताह के अंत में गांव का सारा कचरा एक जगह जमा किया जाता है और उसे जैविक खाद बनाई जाती है। प्लास्टिक और रासायनिक खाद पर पूर्ण प्रतिबंध है। आइए अब बात करते हैं यहाँ के समाज की। मित्रों, यहाँ समाज में मातृसत्तात्मक व्यवस्था चलती है, यानी परिवार का उपनाम माँ के नाम पर चलता है। एक और बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद बात आपको बताना चाहते हैं श्रोताओं, हम विश्वास करते हैं कि आपको भी ये बात बड़ी अच्छी लगेगी, और वो ये है कि इस गांव को देखने के लिए पूरे सप्ताह पर्यटक देश विदेश से आते रहते हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ भी आते रहते हैं। पूरा सप्ताह गांव वालों के लिए बहुत व्यस्त रहता है, इसीलिए यहाँ की ग्राम समिति ने एक निर्णय लिया है। वो निर्णय ये है कि प्रति रविवार को गांव पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद रखा जाए। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गांव वाले चाहते हैं वे अपना व्यक्तिगत और पारिवारिक समय यानी क्वालिटी टाइम शांति से बिता सकें। श्रोताओं, इस गांव के बाहर एक बहुत ऊंचा टावर है जिसे स्काई व्यू टावर कहते हैं। ये बांस का बना हुआ है। इस टावर पर चढ़कर पड़ोसी देश बांग्लादेश को साफ साफ देखा जा सकता है। मावली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं। ये अद्भुत पुल प्राकृतिक इंजीनियरिंग का अनूठा नमूना है। श्रोताओं, इसे लोहे या सीमेंट से नहीं बनाया गया, लेकिन ये रबर के पेड़ों की जड़ों को प्रशिक्षित करके बनाया गया है।

0: सचमुच मावलिनोंग गांव अपने आप में एक अद्भुत गांव है और आज के युग में स्वच्छता और सामाजिक सामंजस्य की अनूठी मिसाल प्रस्तुत करता है। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब आज का प्रश्न, आज की जानकारी से, तो हमारा आज का प्रश्न है, मावलिनोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। मावलिनोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं, क्यों? श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी आप अपना संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत। श्रोताओं, कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा विशेषकर इतिहास के उन विभिन्न स्रोतों की चर्चा की गई है जिनके द्वारा हम अपने भूतकाल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता
2: है ना साथियों? अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहाँ छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
3: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था।
4: हाँ, 2000 साल पहले।
5: नानी माँ।
6: हाँ निधि।
5: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
6: अरे यही हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
5: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
6: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है।
5: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
6: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
5: नहीं पता, बताओ ना नानी माँ।
6: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
5: नाना नानी की शादी के कपड़े? भाई वाह नानी, पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
6: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
5: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है।
6: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
5: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
6: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना? अरे देखो देखो, तुम्हारे नाना जी भी आ गए, आइए आइए ना, देखिए बिटिया कुछ पूछ रही है।
5: नाना जी, पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं?
4: हाँ हाँ बताइए ना नाना जी।
7: बेटी बड़ा अच्छा सवाल है। देखो, पुरा यानी पुरानी या प्राचीन, तत्व यानी चीजें या वस्तुएं, और वेत्ता यानी जानकार।
5: अच्छा,
7: पुरानी या प्राचीन वस्तुओं की जानकारी रखने वाले को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। अंग्रेजी में इसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। पंकज आज शाम को आएगा तो उससे पूछ लेना, ठीक है?
5: मामा जी।
8: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही तुम्हारी छुट्टियाँ?
5: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
8: ये तो बहुत अच्छी बात है
5: जी, उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले, ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था।
8: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो। बता सकती हो कि ये क्या है?
3: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
8: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
5: अच्छा, भोज वृक्ष।
8: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
3: पांडुलिपि, ये हमें कहाँ मिली है?
8: निधि, ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है, कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
3: अच्छा।
8: और बेटी, मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं

0: होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
1: पांडुलिपि ये हमें कहाँ मिली है?
0: निधि, ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
1: अच्छा,
0: और बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
2: ये किस भाषा में है?
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
2: मामा जी अब आगे भी बताइए ना।
0: हाँ, बताता हूँ। अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
2: अच्छा।
0: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
2: अच्छा।
0: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
1: अच्छा।
0: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं और शिलालेख को
1: एपिग्राफ।
0: शाबाश निधि।
1: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
0: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
1: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
0: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
2: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
0: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
2: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर लीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे जानते हैं हम अपना अतीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मुकुल सिंह, कलाकार रंजीत कुमार, रेणु तंवर, अजीत होरो और पूनम कुदुसिया, बाल कलाकार आदिका और परिनिधि। शोध एवं आलेख

अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं अंत में कार्यक्रम अराउंड द वर्ल्ड। इस कार्यक्रम के द्वारा दो यात्रियों का एक रोचक यात्रा वृतांत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार उन दो लोगों ने 80 दिनों में पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा लिया।
2: Which is the most interesting place you have visited? How did you go there and return? Have you traveled by different means of transport? Is there a mode of transport that you would like to use?
3: Mr. Phileas Fogg lays a bet with some of his friends to go around the world in 80 days. This is the story of how he traveled with his companion, Passepartout.

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम तरुण कुसुम में प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। इसी के साथ घड़ी की सुई अब इशारा करते हुए कि आप श्रोताओं से आज के इस अंक से विदा लेने का समय हो चुका है, तो अपने रेडियो मित्र भवेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम तरुण कुसुम, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

हेट स्टोरी 2। इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह के आवाज़ में। मिथुन के लिखे इस गाने को संगीत दिया था मिथुन ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपता को अभी आप सुन रहे थे फिल्म टू स्टेट्स में। हमारे कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी।

0: लुटेरा फिल्म में अभी आप सुन रहे थे मोनाली ठाकुर को।
1: आइए सुनते हैं बिना रैप वाला रीमिक्स।

नेहा कक्कर, दवानी भानुशाली और एका को अभी आप सुन रहे थे फिल्म सत्यमेव जयते में। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, आप सुन रहे हैं हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा है कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाता सम्मेलन में आज ये बात कही।
1: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
1: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई।
0: श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री

0: बेंजामिन नेतन्याहू के बीच टेलीफोन पर पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति और हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा हुई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत और इसराइल के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी है। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
1: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। सरकार ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तारित स्वरूप में स्थायी सदस्यता का समर्थन करता रहा है। लोकसभा में आज विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत परिषद में स्थायी और अस्थायी श्रेणियों के विस्तार और विकासशील देशों के अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर लगातार बल देता रहा है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने कॉरपोरेट जगत और वित्तीय पेशेवरों को बॉस स्कैम की प्रति आगाह किया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऐसी शिकायतों में तेज वृद्धि हुई है। इनमें खाता विवरण और नियामक संचार के बहाने पेशेवरों और कारोबारियों के व्हाट्सएप खातों को हैक किया जा रहा है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित कई राज्यों से एक ही तरह की घटनाएं सामने आई हैं। भारत अगले वर्ष पहले ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। मुंबई में आज ब्रिक्स वेब्स बाजार के दौरान इसकी घोषणा की गई। फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने के लिए कई समझौतों की भी घोषणा की गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा सरकार के अरावली के संरक्षण और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। श्री यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार ने विशेष रूप से गुरुग्राम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी का अभियान बनाकर उल्लेखनीय कार्य किया है। केरलम के 4 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोईकोड, कन्नूर, वायनाड और कासरगोड जिलों में रेड अलर्ट जारी है। इसके अलावा 4 अन्य जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। जानकारी दे दें आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

अब से कुछ देर बाद संध्या 6:10 पर आप सुनेंगे हफ्तावार जायजा। विद्यापति गीतों का समय होगा संध्या 6:15 पर। इसके तुरंत बाद संध्या 6:25 पर आप सुनेंगे मैथिली संवाद।

सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम गांव घर आप सुनेंगे संध्या 6:30 से। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे नन्ना मुन्ना राही, खेती गृहस्थी। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:00।

कुछ फिल्मी गाने आप सुनेंगे शाम 7:50 पर। रात 8 बजे समय होगा संसद समीक्षा का।

0: रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम साहित्य की। फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी आप सुनेंगे आज रात 10:00। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। अब प्रस्तुत है हफ्तावार जायजा। इसे प्रस्तुत कर रही हैं फरहत फातिमा।
1: सामाइन आदाब। जायजे के अहम इशारे। बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ज़रिए शिवहर जेल का मुआयना। DMCH में ORS हफ्ता का इख्तिताम। शिवहर में रोज़गार मेला। और अब तफसील। बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पटना और प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज दीपक कुमार की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सेक्रेटरी जज ललन कुमार ने जुमेरात को डिवीजनल जेल शिवहर का मुआयना किया। लीगल एंड डिफेंस काउंसिल एडवोकेट सुबोध कुमार भी मौजूद थे। मुआयने के दौरान जज ललन कुमार ने डिवीजनल जेल में कैदियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात, सफाई सुथराई, कैंटीन और दीगर इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए जेल इंतजामिया को हिदायत की कि तमाम सहूलियात को बाकायदगी से बरकरार रखा जाए और कैदियों के हुकूक़ का तहफ़ यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर डिवीज़नल जेल के अहाते में कानूनी आगाही प्रोग्राम भी मुनाक़िद किया गया। कैदियों को नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के मुख्तलिफ अवामी फलाही स्कीमों, उनके कानूनी हुकूक

विद्यापति गीतों के कार्यक्रम में अभी आपने सुना गौतम मिश्र और सूर्यनारायण यादव को। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। कुछ ही देर में आप सुनेंगे मैथिली संवाद।

नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा आ एफएम रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी हृदयकांत मिश्र। संसद सूक्ष्म लघु आ मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कऽ देलक। राज्यसभा सँ सोम दिन कऽ स्वीकृति भेटलाक बाद लोकसभा आज ई विधेयक के सेहो पारित कऽ देलक। पहिल स्थगनक बाद सदनक कार्यवाही शुरू भेला पर सूक्ष्म लघु आ मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन से जुड़ल विधेयक सदन में पेश कयलनि। एकर बाद लोकसभा कार्यवाही दिन भरि लेल स्थगित कऽ देल गेल। राज्यसभा कार्यवाही नीट मुद्दा पर विद्यार्थी सभक प्रदर्शनक बीच भेल पुलिस कार्रवाई सहित कतेको मुद्दा पर विपक्षक हल्ला गुल्ला के कारण आज दिन भरि लेल स्थगित कऽ देल गेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आई अपन आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में जुड़ल कतेको सांसद सब से भेंटघाट कयलनि। एहि में नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद सब छला। प्रधानमंत्री राष्ट्र निर्माण में सांसद सबक भूमिका आ हुनक जिम्मेदारी पर विस्तार से चर्चा कयलनि और एहि लेल सक्रिय योगदान देबाक लेल जनौलनि। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा बिहटाक इंटीग्रेटेड इरिगेशन कम पैकिंग सेंटर से मखानक पहिल निर्यात खेप के हरियर झंडा देखा कर ऑस्ट्रेलिया लेल रवाना कयलनि। एहि मौका पर

0: सात कंटेनर में 18 मीट्रिक टन मखान पठाओल गेल। एही मौका पर कृषि मंत्री जनौलन जे ई बिहार आ पूरा देश लेल गर्वक क्षण अछि। श्री सिन्हा जनौलन जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकल टू ग्लोबल, वोकल फॉर लोकल आ आत्मनिर्भर भारतक संकल्प के साकार करबाक लेल ई एकटा पैघ डेग अछि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरीक सोझा में आई पथ निर्माण विभाग और नवार्डक बीच 21,000 करोड़ टाका के लागत से कतेको परियोजना सब लेल समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कयल गेल। एहि मौका पर मुख्यमंत्री जनौलन जे ई सब परियोजना के पूरा भेला सँ ग्रामीण क्षेत्र में सड़क आ पुल निर्माण से जुड़ल विकास काज के बढ़ावा भेटत। आई राष्ट्रीय हथकरघा दिवस अछि। एहि मौका पर नव दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के संबोधित करैत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जनौलन जे हथकरघा देश में रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला और संस्कृति के संरक्षित कयलक अछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पोस्ट में नागरिक सभ सँ उत्साह आ प्रसन्नताक संग आई राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनेबाक लेल जनौलन। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जनौलन जे हुनक सरकार हथकरघा पर वस्त्र बुनाई तकनीक के पर्यावरणक अनुकूल बनेबा लेल प्रतिबद्ध अछि। एहि मौका पर डाक विभाग 4 स्मारक डाक टिकट जारी कयलक। पटनाक बिहार संग्रहालय आई अपन 11 स्थापना दिवस मना रहल अछि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार संग्रहालय स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रमक शुभारंभ कयलनि। बेली रोडक संग्रहालय में एहि मौका पर आयोजित 3 दिवसीय समारोह में कतेको कला प्रदर्शनी, संगोष्ठी आ नृत्य और गायन कार्यक्रमक आयोजन कयल जा रहल अछि। संग्रहालयक महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह जनौलनि जे एहि मौका पर देशक 100 सँ बेसी कलाकार सभक विशेष प्रदर्शनी लगाओल गेल अछि। संत शिरोमणि गुरु रविदास जीक 650वीं जयंती आज श्रद्धापूर्वक मनाओल गेल। एहि मौका पर देशभर में कतेको कार्यक्रम आयोजित कयल गेल। कला संस्कृति विभाग दिस एहि मौका पर समरसता संकल्प अभियान शुरू कयल गेल। पटनाक ज्ञान भवन में आयोजित समारोहक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शुभारंभ कयलनि। देश में 9 अगस्त से शुरू भऽ रहल हर घर तिरंगा कार्यक्रमक तैयारी कयल जा रहल अछि। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लोक सभ सँ जनौलनि अछि जे एहि बेर वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा भेला पर गीत गबैत तिरंगाक संग वीडियो बनाकर अपलोड करथि। प्रदेश में सेहो एहि के लऽ कऽ तैयारी जोर शोर सँ कयल जा रहल अछि। अररिया जिला में जिला प्रशासन अनुशासन आ पारदर्शिता बनाओल रखबाक लेल कड़गर कार्रवाई कयलक अछि। अररियाक पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार 2 थाना प्रभारी के निलंबित और 2 के लाइन हाजिर कऽ देलनि अछि। मानसूनक सक्रियता से प्रदेशक बेसी क्षेत्र में बरखा भऽ रहल अछि। मौसम विभाग अगला 24 घंटाक बीच राज्यक दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भाग में भारी बरखा के लऽ कऽ अलर्ट जारी कयलक अछि। संगहि कतेको ठाम अन्हर बिहारिक संग ठनका सेहो खसि सकैत अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम गाम घर।

0: कार्यक्रम गाम घर सुनय वाला सब स्नेही श्रोता लोकन के सत्तो भाई के दिशा नमस्कार संगे कार्यक्रम में धियापुता के बहुत बहुत स्वागत।
1: नमस्कार सत्तो भाई, संगे संग अहाँ के किसले कार्यक्रम के जो नैना भुटका छथि उनका एक कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हाँ। देखियो नैना भुटका सब अहाँ के सप्ताह भर से बाट ताकत रहे कि कहिया शुक्र हैत।
0: हाँ।
1: आ कहिया हमर सब के जो मनपसंद कार्यक्रम है किसले ओकर प्रसारण है, तो हुनकर बाट जे छन वो आप समाप्त भ रहल छन, बाट अहाँ के बाट देखे के जरूरत नहीं छन। आई अपने सब किसले कार्यक्रम के संगे छी। आ देखियो सतु भाई, एखुनका जे समय अछि डिजिटल।

0: जुग अछि। अब देखबे बच्चा बुती सब जे अछि ओ किताब कम पढ़ैया आ एकदम मोबाइल में घुसल रहै
1: छै।
0: अब ई बड़का पैघ समस्या है कि बच्चा के छै से किताब से कोना जोड़ी, क्या तो बच्चा तो दिन भर मोबाइल में घुसल रहै, किताब छुबे के नाम नहीं लैया। तो एहि तरह के जे समस्या अछि, एहि समस्या में किछु जे अहाँ के आसान जे उपाय अछि एकरा अपना के हम सब अपन नेना भुटका के किताब से दोस्ती करा सकै छी।
1: छै किताब से नेना भुटका के मित्रता, हुनकर किताब से बहुत एकाग्रता बढ़े छन। संगे ई होइत अछि जे धियापुता के नव नव कहानी, नव नव चीज सिखबा के अवसर भेटे छन, नव सोच उनका उत्पन्न होइ छन, नव विचार उत्पन्न होइ छन। तो ई किताब जे से हमरा लोकन के क्षमता बढ़ाबैत अछि। आ चाही जे धियापुता के एकार्ग मन से कोनो चीज के पढ़वा के चाही। आ ओकर जे लेखक अछि, ओकर जे किताब के कहानीकार अछि, ओकर सबके नाम पढ़वा के चाही। संगे जे ओहि में क्वेश्चन आंसर देल गेल अछि ओकरा पढ़वा के चाही। आ बढ़िया से समझ कर तकर बाद किताब के दोसर किताब के फिर से पढ़वा।
0: आ देखियो लगातार किताब पढ़ला से नेना भुटका अब नव नव शब्द सीखे छथि, जही कारण हुनकर भाषा ज्ञान और बातचीत करे के तरीका मजबूत हो। आ किताब में किस्सा कहानी पढ़ के ओ कथा के अलग अलग पात्र के बुझ के नेना भुटका दोसरक भावना और परिस्थिति के बुझनाय सीखे छथि। किताब में नीक कथा पढ़ के नेना भुटका के दिमाग शांत और एकाग्र होइत अछि और हुनका मानसिक रूप से छै से शांति भेटैत अछि।
1: लगातार पढ़वा से धियापुता के शब्दकोश मजबूत होइत अछि, संगे एकाग्रता में वृद्धि सेहो होइत अछि। किताब पढ़वा से अहाँ के एक जगह टिक हमरा लोकन लगा दै छी जे ई उत्तर हैत, आ ओकरा बैठ के बढ़िया से जखन दू बेर तीन बेर पढ़े छी तऽ ओ खुद याद भऽ जाइत अछि। आ वएह हमरा लोकन के परीक्षा में काज करैत अछि, जखन कतौ अहाँ के पूछल जाइत अछि तऽ हमरा लोकन ओ सही उत्तर दऽ पाबै छी, मानसिक तनाव से मुक्ति भेटैत अछि।
0: आ देखियौ नेना भुटका जे अछि किताब से दोस्ती करै लेल सबसे अहाँ के आवश्यक अछि कि कथा पाठ से करैत। नेना भुटका के हुनक उम्रक हिसाब से रंग बिरंग चित्र वाला कथा के किताब पढ़ी। अपना सब जो निपन में रही तो हम सब अमर चित्र कथा पढ़ी। अमर चित्र कथा में चित्र रहे छले, आ ओय में छै से अहाँ के महापुरुष सब के कहानी रहे छले, हुनकर जीवनक प्रेरणादायी प्रसंग रहे छले। तो देखियो किताब जे अछि ओ मनुष्यक व्यक्तित्व के निर्माण करी, ओकर सोच को समग्र करी, बुझलो कि नहीं। अच्छा शब्द ज्ञान, भाषा ज्ञान होइया, आ संगे संग अहाँ के छै से प्रत्येक व्यक्ति के जे कोनो कथा पढ़लो तो कथा में बहुत रास चरित्र होइ छै, तो ओहि चरित्र के छै से ओकर जे मनोभाव छै ओ छै से बच्चा बुझैत अछि। तो ऐसे की होइया कि बच्चा व्यवहारिक बनिए, बुझलो।
1: अच्छा ये सब धियापुता में देखबे जे अलग अलग अहाँ के प्रतिभा होइत अछि, किनको कहानी पढ़वा में निक लागै छनि, किनको देखबनि अहाँ के पेंटिंग बनबऽ में निक लागै छनि, किनको देखबनि जे अहाँ के बहुत निक अक्षर लिखै छथि। तो सबके अलग अलग प्रतिभा होइत अछि। आवश्यकता अछि जे धियापुता के प्रतिभा के देख कऽ हमरा लोकन के ओकरा आगा बढ़ेबाक चाही।
0: देखियो बच्चा के जे प्रतिभा छै ओ सब बच्चा के अलग अलग प्रतिभा होइ छै। आवश्यकता एक गप के अछि कि उनकर प्रतिभा के पहचानल जाए, चिन्हल जाए कि इनका में की प्रतिभा है। आ जँ प्रतिभा चिन्ह लेलो तो फिर छै से ओहि प्रतिभा के विकास लेल बच्चा में रुचि जगायल जाए। आ संगे संग बच्चा के अहाँ मित्र बनि कऽ, अभिभावक लोकन के कर्तव्य अछि कि ओ बच्चा के मित्र बनि कऽ आ हुनक संग छै से बैसियौ। ओ पढ़ै छथि, कथा पढ़ै छथि, अहूँ हुनकर देखियौ छै से की पढ़ि रहल छथि, हुनका बुझाबियौ कि कथा के एकर सारांश की छे, एकर भावार्थ की छे। अब निनका नेना भुटका लग एकटा आदर्श बनो पड़ै छै गार्जियन के छै से अहाँके अभिभावक के, पढ़े के समय हुनकर तय कऽ दियौ। किताब छै से अहाँके हुनकर जेठमा ओ जे हुनकर बेडरूम अछि ओहि के बगले में किताब के अलमारी हेबाक चाही, ओहिठाम किताब हेबाक चाही, किताब हुनकर पहुँच में रहै। आ हुनक पसंद के जे अहाँके किस्सा कहानी अछि, कथा अछि, से रहबाक छै। तऽ बच्चा ऐसे की होइया कि जैसे अहाँके सीखैया अभिभावक के देख कऽ, अच्छा पढ़े के समय तय कऽ दी तो रोजाना के आदत बनि जाइए। आ किताब पहुँच में राखब तो आसानी से उपलब्ध रहत, बच्चा किताब से दोस्ती करत।
1: आय से की होइत अछि जे कल्पनाशीलता के विकास होइत अछि।
0: हाँ।
1: कहानी से बच्चा के दिमाग में नव नव चित्र, नव नव विचार आबैत अछि। आ ओहि से जखन सीखैत अछि बच्चा तो देखबे जे बहुत तेज से आगा बढ़ैत अछि। आ ओ
0: देखियो कोनो मनुखक विकास लेल ओकर छै से अहाँके रचनात्मकता आवश्यक अछि। आ रचनात्मकता के विकास लेल कल्पनाशीलता आवश्यक। जँ अहाँ कल्पनाशील छी तऽ अहाँ

0: तरह के छै से अहाँ भाव संयोजन कऽ सकै छी, तरह तरह के परिस्थिति के छै से अहाँ कल्पना कऽ सकै छी आ ओहि के हिसाब से अपन रचनात्मकता जे अछि ओकर अहाँ प्रदर्शित कऽ सकै छी। आगू हमसब गपशप करब, मुदा एहिसँ पहिने किछु छोट छीन विराम लऽ लेब।
1: सुनल जाय।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन में करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार है। धन्यवाद।
3: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
0: छोटछीन विराम के उपरांत उपस्थित छी हम गोपी भाई संग में छी सत्तू भाई। तो सत्तू भाई, चर्चा करै छलहुं हां कि मनुखक विकास लेल रचनात्मकता सृजनात्मकता आवश्यक अछि आ आइ के लेल कल्पनाशील अहाँके मस्तिष्क चाही आ कल्पनाशील मस्तिष्क बनैया कि जखन कि हम तरह तरह के किस्सा कहानी पढ़े छी, कथा पढ़े छी, तो दिमाग कल्पनाशील बनैया। आ बच्चा के किताब पढ़े लेल दबाव नहीं बनाबी, घर में किताब के सजा के राखी आ जखन नैना भुटका देखत कि घर में अहाँ के सब जगह रंग बिरंगा किताब है तो ओकर जिज्ञासा जगत।
1: हाँ,
0: शुरुआत में मात्र चित्र देखत आ बाद में पढ़ियो
1: लागत।
0: ऐसे जैसे अहाँ के किताब से ओकर दोस्ती अहाँ के बनते आ जो किताब से दोस्ती बनते तो किताब से पैघ कोनो मित्र नहीं होते, क्या तो किताब अहाँ के समग्र ज्ञान दैया, अहाँ के व्यक्तित्व का विकास करैया, अहाँ के व्यक्तित्व जो है बहुआयामी बनैया आ संगे संग सर्वांगीण विकास का बाट सेहो खोले
1: खोले।
0: आ ओनाही छै से गीतनाद जे अछि ओहो छै से अहाँ के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होइया। तो किया नहीं एकटा बाल गीत हमसब सुनी।
1: सुनल जाय।

0: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन में करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
1: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: हाँ, एखन हम सब छै से अहाँ के बाल गीत सुने छलहुँ सामूहिक स्वर में। आ देखियो छै से अहाँ के जनेना भुटका लोकनि जे छथि, ओ अपन सृजनात्मकता रचनात्मकता के विकास ओ किताब पढ़ि के छै से अहाँ के करै छथि। आ घर में किताब के सजा के राखी, जखन नैना भुटका देखता कि घर में सब जगह अहाँ के रंग बिरंगा किताब अछि तऽ हुनक जिज्ञासा बढ़त। शुरुआत में मात्र चित्र देखता, आप बाद में पढ़नाइयो शुरू कऽ देता।
3: टाइम टेबल हेबाक चाही, कोन विषय के अखन पढ़वाक अछि, कते काल पढ़वाक अछि, कोन विषय पर कते टाइम देबाक अछि, संगे कखन खेलबाक अछि, कखन खाना खेबाक अछि, कखन सुतबाक अछि, सब चीज के टाइम टेबल जखन निर्धारित रह धियापुता के, तखन देखबै जे ओकरा पढ़ऽ में आर रुचि बढ़ि जाइ,
2: और रुचि बढ़ि जाइ छै। देखियौ, नैना भुटका जे होइए ना, ओ कच्चा माटि के घड़ा के जेना होइए, बुझलहुँ।
3: हाँ, ओकरा जाहि आकार के
2: देबै, जे अहाँ आकार देबै ओही आकार में ढलत, वएह करत जो अहाँ ओ देखत छै से। आ जे नहि देखत अहाँ के, जँ अहाँ खुद समय पर फोन आ टीवी राखि देबै, बंद कऽ देबै, तँ बच्चो वएह करत। एहि लेल जँ अहाँ चाहै छी कि अहाँके बच्चा किताब पढ़ा, तँ पहिने अहाँके खुदो ई आदत डालऽ पड़त। अभिभावक लोकनि के सेहो किताब पढ़बाक चाही, एहिसँ ज्ञान बढ़ैत अछि। जे आवश्यक अछि तँ मोबाइल पर आवश्यक काज कऽ ली, ओकर बाद किताबो के तरफ छै से अहाँके दिस देखबाक चाही, अध्ययन करबाक चाही।
3: टीवी सबसँ दूर रहबाक चाही धियापुता के, देखबाक चाही, लेकिन ओते काल नहि समय दी जे हमर टाइम बर्बाद भऽ जाय। तँ धियापुता के कम सँ कम टीवी देखऽ दी, संगे धियापुता के पढ़ाई के दिस बेसी से बेसी जोर देबा।
2: आप देखियो, हम सब वहां का किसले कार्यक्रम में बाह्य ध्वन्यांकन पर आधारित नैना भुटका का कार्यक्रम है, हम सब देखी। संकलन वाचन है आशुतोष कुमार झा का, आ प्रस्तुति असद दौत का। तो सुनियो हम सब बाह्य ध्वन्यांकन पर आधारित ई कार्यक्रम,
3: सुनल जा।
4: धियापुता जय हिंद। बउआ, दोस्ती हर एक रिश्ता में सबसे पवित्र रिश्ता है, जकर अस्तित्व एक से बेसी लोकक बीच में होता है। संसार में नीक, सच्चा और ईमान

0: शानदार मित्र भेटनाय वाकई बहुत भाग्यक विषय अछि। नीक दोस्त अपना सभक अर्थहीन जीवन के अर्थपूर्ण बना दै छथि, अपना सबके सफलता के नीक रास्ता देखाबै छथि। ओ दोस्ते होइ छथि जे अपना सभक जीवन यात्रा के आसान, उमंग से भरल और जीवन बना दै छथि। ओ अपना सभक गलती पर कखनो हँसैत नै छथि, बल्कि अपन लगातार समर्थन से सही रास्ता देखा अपना सबके आगू बढ़ाबै छथि। एकटा नीक दोस्त ओ होइ छथि जिनका से अपना सब अपन जीवन के सबटा छोट पैघ खुशी, रहस्य और समस्या के बिना झिझक के साझा कऽ सकी। दोस्ती ओ रिश्ता अछि जे अपना सबके भावनात्मक समस्या से बचाबैत अछि। नीक दोस्त कखनो अपन मित्रक आलोचना नहि करै छथि, बल्कि हुनकर कमी के दूर करबा मे हुनकर मदद करै छथिन। नीक दोस्त दुनिया में हीरा जेहन अनमोल पाथरों से बेसी कीमती होइ छथि। आजुक किसलय कार्यक्रम अछि राजकीय कृत मध्य विद्यालय स्टेशन रोड से। एत बहुत रास धियापुता बैसल छथि, बहुत किछु सुनाबऽ चाहै छथि। आओ अब हिनके सबसे गपशप करी। बौआ की नाम छी अहाँके?
1: मीनाक्षी कुमारी।
0: आज कार्यक्रम में अहाँ की सुनाबऽ चाहै छी?
1: कविता
0: सुनाओ।
1: है शौक यही अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पे ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो, हम आजादी के दीवाने, मातृभूमि के सेवा में अपना सर लगाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन में पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे।
0: वकी नाम छी अहाँके?
2: शालिनी कुमारी।
0: आज कार्यक्रम में अहाँ की सुनाबे चाहे छी?
2: ए मालिक तेरे वंदे।
0: सुनो।
2: ए मालिक तेरे वंदे हम, ऐसी हो हमारे करम, नेकी पर चले

नहीं बदले की हो कामना, बज उठे प्यारी का हर कदम और मिटे बैर का ये भरम, नैकी पर

0: बुआकी नाम छी अहाँके?
1: सिमलन कुमारी।
0: आजुक कार्यक्रम में अहाँ की सुनाबे चाहे छी?
1: कविता।
0: सुनो।
1: पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें क्या तुम्हें अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती, चिड़िया बैठी प्लेम पिलीती लीती हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुकित मंत्र बतलाती है, वन में जितने पक्षी है खजन कपूर चातक किलका खन सुख आदि बात कलते सब आपस में हिलमिल सब मिलजुल कर लाते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है जहाँ चाहते जाते हैं।
0: बुआ की नाम से यहाँ का?
2: नाना कुमारी।
0: आज कार्यक्रम यहाँ की सुनाबा चाहे छी?
2: गाना।
0: सुनो।
2: है शौक माने हम कुछ कल के दिखलाएंगे, मनने वाली दुनिया में अनमोल में नाम लिखाएंगे, जो लोग गले बिका लिए जिन पर ना किसी की छाया, हम उनको गले लगाएंगे हम उनको सुखी बनाएंगे, जो लोग हाल कर बैठे उम्मीद मान कर बैठे हम उनको बुद्धि दिमागों में फिर से उसा जगाएंगे, लोगों मत आगे बढ़ेंगे आज़ादी के दीवाने हैं मतलब भूमि की सेवा में फिर से उसा जगाएंगे, हम उन बिलों के बच्चे हैं जो बोलते जो हम उन बिलों के बच्चे हैं जो धूम के पक्के सच्चे हैं, हम मान बटाएंगे हम जंग में नाम कमाएंगे।
0: वो की नाम से यहाँ का?
3: सन्नी कुमार।
0: आज कार्यक्रम है यहाँ की सुनाबा चाहे छी?
3: मानो बनो मानो ब्रिया।
0: सुनो।
3: है भूल करना प्यार भी है भूल या मनुहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी करना किसी की आसरा, मानव बनो मानव जरा अब आंसू दिखलाओ नहीं अब हाथ फैलाओ नहीं, इनकार कर दो एक जिससे थर थर आ जाए धरा, मानव बनो मानव।

0: अब जरा उपाय कर देता, कहीं शोभा तुम्हें देता नहीं। इन आंसुओं को सींच कर विषम का कनकन हरा, मानव बनो मानव जरा। अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भीष्म से कर दो धरा को बड़ा, मानव बनो मानव जरा।
1: बुआ की नाम छी अहाँ का?
2: अजीत कुमार।
1: आज कार्यक्रम में अहाँ की सुनाबे चाहे छी?
2: पुष्प की अभिलाषा।
1: सुनो।
2: जाने ही मैं सुर वाला के गनों में गुता जाऊं, जाने ही प्रेमी वाला बीत प्यारी लेता जाऊं, जाने ही सरमाटो के सिर पर है हरी डाल जाऊं, जाने ही देवी के सिर पर चढ़ू भाग पेट लाऊं। मुझे तोड़ लेना वन माला, उस पद पे देना तुम फेंक, मातभूमि का सिख चटाए जिन पद चाहे भी रहने।
1: बुआ की नाम छी अहाँ का?
3: आशीष कुमार।
1: आज कार्यक्रम माँ की सुनावे छी?
3: बच्चे की दुआ।
1: सुनो।
3: लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना, मेरी जिंदगी संभल की सूरत हो खुदाया, मेरी दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जिन्नत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जिन्नत, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की संभल से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्द मंदों से जयपो से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको।
1: वो की नाम छी यहाँ का?
2: खुशी कुमारी।
1: आज कार्यक्रम वहाँ की सुना बचाए?
2: गंगा स्तुति।
1: सुनो।
2: बर सुख सार पाओ तुति रे छोड़ने निकर नैन बनी रे कर जोड़ी बिना मो विमल करता रंगे पुन दर्शन हो पुन मति गंग एक अपराध छे बम मोर जानी परसन माए पाए तू पानी की करब जब तक तो जोग ध्यान जन्म की तारत एक ही सन भनई विद्यापति समझो तो अंत काल जन्म विसरू मोहे।
1: बुआ की नाम छी?
4: आरती कुमारी।
1: आज कार्यक्रम महा की सुनाबे छै?
4: वसंती हवा हूँ हवा में बसंती हवा, सुनो बात मेरी अनोखी हवा, बड़ी बाबली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिकर है बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा, मुसाफिर अजब है न घर बार मेरा न उदय मेरा, न इच्छा किसी की न आशा किसी का, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा, जहाँ से चली मैं जहाँ को गई मैं, शहर गाँव बस्ती नदी रेत निर्जन हरे खेत पोखर, झूमती चली मैं झूमती चली मैं, हवाओं हवा में बसंती हवा।
1: बहुत वो की नाम छी यहाँ का?
5: मणिराज।
1: आज कार्यक्रम में अहाँ की सुनाबे चाहे छी?
5: अरमान। सुनो। के यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे, बनने वाले दुनिया में अमर में नाम लिखाएंगे, जिलो जो लोग गरीब बिकारे हैं उन पे ना किसी का चाहे, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुख बना, जो लोग हार कर बैठे हैं उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिवाएंगे, हम उनको साथ जगाएंगे, रुको मत आगे बढ़ने दो आज़ादी के दीवाने, हम मातृभूमि के सेवा अपना स्वाद लगाएंगे, हम उन बीड़ी को बच्चे से जो उनके पक्के सच्चे थे, हम अपना अपना नाम लिखाएंगे जो हम जग में नाम कमाएंगे।
1: बुआ की नाम से यहाँ का?
6: इंजीम कुमारी।
1: आज कार्यक्रम माँ की सुनावा चाहे छी?
6: तू जिंदा है तो।
1: सुनो।
6: तू जिंदा है तो जिंदगी पे जीत पे किन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, या गम के और चार दिन, सितम के और चार दिन, या दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए हजार दिन, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी पे जीत पे किन कर, सुबह और शाम के नंगे हो गन कर चूम कर, तू सुन जमीन गाड़िए कब से झूम झूम कर, तू आ मुझे सिंगार कर तो तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी जीत पे किन कर, हजार बिस्तर का है मौत तेरे द्वार पर, तो छल न सकी चढ़ गई वो हार कर, नई सुबह के संग तू सदा तुझे मिली नहीं उमंग, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी पे जीत पे किन कर, हमारे कारवाहों का मंजिलों का इंतजार ये आंधी है तूफानों की बिजली पीठ पे सवार है, तू आ कदम मिला चल चलेंगे के साथ, हम अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी पे जीत पे किन कर।
1: बुआ की नाम छी यहाँ का?
7: टोनी कुमारी।
1: आज कार्यक्रम में की सुनावे चाहे छी?
7: भूल गया है क्यों?
1: सुनो।
7: भूल गया है क्यों इंसान सबकी है मिट्टी की काया, सब पे नभ की निचल छाया, यहाँ ना कोई आया ले विशेष वरदान, भूल गया है क्यों इंसान धरती ने मानव उपजाया, मानव ने ही देश बनाया, बहु देशों में बसी हुई है एक धारा संतान, भूल गया है क्यों इंसान देश अलग है देश अलग हो, बेस अलग है बेस अलग हो, मानव ने लेकिन अलग अंतर प्राण, भूल गए हैं क्यों इंसान।
1: बुआ की नाम छी यहाँ का?
8: रोहित कुमार।
1: आज कार्यक्रम अहाँ की सुनाबे चाहे?
8: कबीर के दोहरे।
1: सुनो।
8: शायद इतना दीजिए जमे समय, मैं भी खूब ना रहूंगा साधु नहीं भूख जाएंगे, नित की ने राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बानी बिना निर्मल करो सुभार।
1: बुआ कोनो आश्रम में बहुतो रास छात्रगण पढ़े छल।

हुनके सबमे एक गोट छात्र के अपन ज्ञान पर बहुत बेस अभिमान भ गेल छलन। गुरुदेव हुनकर क्रिया पर सदैव नजर राखे छलखिन। एक दिन गुरुदेव आश्रम में सब छात्र के अपना लग बैसा कर एकटा खिस्सा सुनाब लगला। ओहि खिस्सा में एकटा घनगर जंगल में एकटा हिरण रहे छल। वो अपना के बहुत बेसी चतुर माने छल। ओकर शरीरक ऊपर घनगर मुदा नर्म केश छल, ताही कारणे ओ और बेसी सुंदर देखबा में आबे छले। एक दिन जंगल में वो घास चर रहल छल, तखने किछु शिकारी ओकरा देखलक आ ओकर पीछा केनाई प्रारंभ कऽ देलक। हिरण भागैत भागैत एहन ठाम पहुँचल जतः अंगूर के घनगर लता पसरल छले। ओ ओकरे पाछू जाकर नुका रहल। जखन शिकारी ओकरा पाछू करैत ओतय पहुँचल, तखन अंगूरक घनगर झाड़ी हेबाक कारणे ओ ओकरा ताकि नहि सकल आ आगू बढ़ि गेल। हिरण अपन चतुराई पर बड़ बेसी प्रसन्न भेल। तखने ओकर ध्यान अंगूर के ओही हरियर हरियर कोमल पात पर गेलै। आब ओकर लोभ जीह पर आबि गेलै आ किछुए काल में ओ समूचा अंगूरक झाड़ी के सफा चट कऽ देलक। तखने ओ शिकारी सब सेहो हिरण के ताकैत वापस आबि रहल छलथि। अंगूरक झाड़ी आपात नहि रहबाक कारणे आब ओ हिरण शिकारी सबके देखबा में आबऽ लगलै। शिकारी फेर ओकर पीछा प्रारंभ कयलक आ ओकरा अपन शिकार बना लेलक। वापस जेबाक क्रम में ओ शिकारी सब अपना में इएह गप करै छल जे अगर ओ हिरण झाड़ी साफ नहीं कऽ देने रहता तखन ओकरा पकड़नाय असंभव छल। ओ अपन आश्रय के स्वयं नष्ट कऽ देलक, जाहि कारणे ओ मारल गेल। गुरुदेव कथा समाप्त करैत कहलथि, हमर ई कथा कहबाक तात्पर्य इएह छल जे सफलता के नशा में मनुष्य अपन विवेक स्वयं समाप्त कऽ लैत अछि आ स्वयं के संकट में सेहो फंसा लैत अछि। ताहि कारणे अहंकार से अवश्य बचकर रहबाक चाही। तुलसीदास जी सेहो कहने छथिन जे तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसे एक। अर्थात विपत्ति यानी कि मुश्किल समय में मनुष्य के संग बस केवल ओकर ज्ञान विनम्रतापूर्वक कैल गेल व्यवहार विवेक साहस नीक कर्म अपन सत्य आ भगवानक नाम एटा दैत अछि। एकरे संग हम आजुक कार्यक्रम के विराम दै छी। एक बेर फेर एहि विश्वासक संग विदा लै छी जे फेर भेंट होयब अगिला शुक्र दिन अहिना कोनो आन विद्यालय के बच्चा के मुख सँ किस लाइक संग धियापुता जय।

0: हाँ एखन बाय ध्वनांकन पर आधारित हमसब ई किसले कार्यक्रम सुनने छलहुँ नैना भुटका के जे राजकीय मध्य विद्यालय स्टेशन रोड दरभंगा से लेल गेल छल संकलन वाचन छल आशुतोष कुमार झा के आ
1: प्रस्तुति असद दाऊद के छल
0: बड़ नीक कार्यक्रम छल आ देखियो सतो भाई हमसब चर्चा करे छलहुँ हँ कि किताब जे अछि ओ अहाँके मनुखक सबसे नीक मित्र यऽ किया तऽ ओहिसँ जे ज्ञान भेटैया ओ ज्ञान जीवनक कोनो मोड़ पर अहाँके काज आबैया
1: जे सीख जाइ छी ओ बहुत काज आबैत अछि आ वएह नव जे सीखने रहै छी नव विचार जे आबैत अछि वएहसँ हमरा लोकनि आगाँ बढ़ै छी
0: हँ आन कोनो सम्पत्ति केओ बैठ सकैए लेकिन अहाँके ज्ञान जे यऽ हँ एकरा तऽ बँटलासँ आओर ई बढ़ै छै घटै नहि छै तऽ देखियौ जैसे आब गाम घरके समय सम्पन्न भऽ रहल अछि आ हमसब खेती पथारीके कार्यक्रम खेती गृहस्थी दिस चली तऽ खेती गृहस्थी कार्यक्रममे किसान भाई लोकनिके हार्दिक स्वागत अछि
1: हमरो दिससँ बहुत बहुत स्वागत छनि किसान भाईके आ देखू गोपी भाई जे हमरा लोकनिके कोनो फसल करै छी तऽ ओहिमे भारी नुकसान जे होइत अछि ओ कीट व्याधिसँ होइत अछि तऽ एकरा लेल प्रबन्धन केनाइ बड्ड बेसी आवश्यक
0: देखियौ कतेक हमसब मेहनत करै छी किसान भाई सब हमहूँ सब किसान छी दिन राति मेहनत कऽ कऽ फसलके उगाबै छी उपजाबै छी मुदा जे ई जे कीड़ा मकोड़ा अछि कीट जे यऽ ई अहाँके गाछके खा जाइए पातके खा जाइए आ फसिलके बहुत क्षति पहुँचाबैए तो सब मेहनत पर पानि फिर जाए बुझलो तो फसिल में कीट नियंत्रण के लेल जैविक यांत्रिक आ रासायनिक तरीका के मिलल जुलल उपयोग एकीकृत कीट प्रबंधन जकरा कहे छे ई सबसे नीक मानल जायत अछि नीम के तेल काढ़ा और उचित देखरेख से फसिल के सुरक्षित राखल जा सकैए जैविक आ देसी उपाय भेल
1: हाँ संगे फेरोमोन ट्रैप जे भेल ओकरा सेहो लगा सकै छी आ सुरक्षित रासायनिक दवाई के सेहो उपयोग कयल जा सकै छै
0: आ नीम के तेल में देखियौ जेना 5 मिलीलीटर नीम के तेल प्रति लीटर जल में मिलाकर छिड़काव करी लहसुन और मिर्चाई

0: के घोल सेहो कह सके छी, 100 ग्राम लहसुन और 10 गो हरियर मिर्चाइ के पेस्ट एक लीटर जल में राति भर भिजा कर आ छानि कऽ ओकरा छिड़कियो, बुझलहुँ। नीम का खली भेल खेत के जुताइ के समय ओकरा माटि में मिला दी। आ यांत्रिक और भौतिक तरीका भेल कि जना प्रकाश प्रपंच होइए लाइट ट्रैप, राति में खेत के लग रोशनी लगाबी ताकि कीट जैसे आकर्षित भ के ओहिमे रोशनी में नष्ट भ जाए।
1: ऐसे की होते जे माहू आ सफेद मक्खी और इल्ली जे रहते नीम के अथी जे कहलिए तेल ओहिसँ अहाँके ओ नष्ट भ जाइत अछि आ फसल पर कोनो कुप्रभाव सेहो नहि पड़ैत अछि।
0: आ पीला चिपचिपा काट होइए, उजर माछी जे होइए आ माहू जेन छोट कीट के रोके के लेल खेत में लगाबी आर झल्ली और अंडा के देखैत हाथ से ओकरा हटा के नष्ट कर दी।
1: आ संगे फेरोमोन ट्रैप जे होइत अछि ई नर कीट के आकर्षित करैत अछि जाहिसँ ओकर संख्या में आगा नहीं बढ़ पाबैत अछि आ ओ फेरोमोन ट्रैप के कारण ओ मर जाइत अछि। मित्र कीट होइत अछि लेडी बर्ड बीटल, एहन कीट हानिकारक कीट जे होइत अछि जकरा माहू सेहो कहै छै ओ अहाँके मर जाइत अछि। आ संगे जैविक नियंत्रण एहि लेल बड बेसी आवश्यक अछि। आ संगे गर्मी के महीना में गहिर जोताई खेत के करबाक चाही। मिट्टी में छिपल जे कीट होइत अछि ओ अंडा आ पपूपा धूप में नष्ट भ जाइत अछि आ संगे फसल नीक होइत अछि।
0: आ देखियो उत्तम गुणवत्ता वाला जे देसी मसाला अछि कंपोस्ट खादक प्रयोग करबाक चाही। खेत में जैविक घटक के जोड़ल गेल केचुआ और सूक्ष्म कण जे यहाँ वो अनुकूल वातावरण पर बनाबे आ कीट भक्षक जीव जना पक्षी भेल मेढक भेल बेंग सांप बुझलहुँ एकरा छै से अहाँके जे खेत अछि ओहि के आसपास ओकर बसे के परिस्थिति बनेबाक चाही ताकि प्रकृति में विविधता बनल रहे आ संगे संग छै से जे अहाँके हानिकारक कीट मकोड़ा अछि ओकरा ओ खा कऽ छै से अहाँके समाप्त कऽ देत।
1: संगे फसल चक्र सेहो अपनेबाक चाही, जेना कि अहाँ गहूँम के खेती केलहुँ तऽ ओहिमे यदि बेसी कीट लागैत अछि तऽ ओकरा बदलि देबाक चाही, मौसरी के खेती कऽ लेबाक चाही चाहे दलहन तेलहन के फसल करबाक चाही, बदलि बदलि कऽ केलासँ सेहो कीट के संख्या में कमी अबैत अछि। संगे जीवन चक्र एकर जे अछि से कीट के ओ टूटि जाइत अछि तऽ फसल चक्र अपनाएब सेहो बड बेसी आवश्यक भऽ जाइत अछि।
0: हाँ देखियो अगर 5 गो अहाँके प्राथमिक तरीका अछि, यांत्रिक भेल जाल और अवरोध, रासायनिक कीटनाशक और उपचार, जैविक भेल जे प्राकृतिक शिकारी या ओहन कीड़ा अथी के राखू जीव जंतु के राखू जो कीड़ा मकोड़ा के खा जात, आ भौतिक भेल पर्यावरण में बदलाव और सांस्कृतिक भेल के स्वच्छता और प्रबंधन के माध्यम से रोकथाम
1: छै। संगे इल्ली कीट के कम मात्रा में दिखाई दिया तो तुरंत ओकरा हाथ से चुन कर नष्ट कर देबाक चाही। आ जखन कीट के प्रकोप आर्थिक हानि से स्तर से ऊपर उठ जाए तखन कृषि विशेषज्ञ से सलाह ल कर अनुशंसित कीटनाशक जे दवाई होइत अछि तकर प्रयोग करबाक
0: तो ई सब जे गप के ध्यान में रखब तो फसल में कीट नियंत्रण अहाँ के निक जना हैत आ जब फसल में निक नियंत्रण हैत कीट के अहाँ के तखन छै से उपजा जे हैत वहाँ के बहुत निक हैत, फसल पुष्ट हैत आ ओकरा बाजार में बेच के निक कैचा कमायब, आ जखन निक कैचा कमायब तो मन एकदम गदगद रहत आ तखन छै से मन झूमत आ संगे संगे झूमर गीत सुने के सेहो मन करत। हाँ तो किया नहीं हम सब एक झूमर गीत शारदा सिन्हा के स्वर में
1: सुनल जाए।

नजरिया हो। ई झूमर शारदा सिन्हा के स्वर में सुने छलहुँ हम, बड़ निक झूमर छल। आ देखियौ सतुबे, हम तो देखलहुँ कि झूमर पर हम झूमि रहल छलहुँ। वास्तव में जतबे शब्द छल मधुर, आ ओतबे एकर धुन मधुर छल। हाँ, आ शारदा सिन्हा के स्वर तो एकदम लाजवाब छल। आ देखियौ छै से अपने सब जे खेती बाड़ी करै छी, तऽ खेती बाड़ी के काज में मौसम पूर्वानुमान जे यऽ ओ बड़ काज आबै यऽ। जब मौसम के बारे में अहाँ के उचित जानकारी अछि तऽ एहिसँ अहाँ के खेती बाड़ी के काज कर केने आसान भऽ जाइए। तऽ हमसब किसान भाई लोकनि के मौसम पूर्वानुमान के बारे में जानकारी दऽ दियनि। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा पूसा समस्तीपुर आ भारत मौसम विज्ञान विभाग के दिस से जारी 5 से 9 अगस्त 2026 धरि मौसम पूर्वानुमानक अनुसार पूर्वानुमान अवधि में उत्तर बिहार के बेसीतर जिला में मेघ गर्जन, वज्रपात आ तेज हवा चलबाक संभावना अछि। वैशाली, मधुबनी, शिवहर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा आ मुजफ्फरपुर जिला में 5 से 7 अगस्त के दौरान मेघ गर्जन वज्रपात के संभावना अछि। आ जखन कि आन जिला में पूरे पूर्वानुमान अवधि के दौरान एहन मौसमी परिस्थिति बनि सकैत अछि। एहि दौरान हल्लुक से मध्यम वर्षा

0: योग की संभावना से हुए 5 अगस्त का आसपास सिवान सीतामढ़ी का पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण के किछ भाग में भारी वर्षा होने की संभावना है।
1: चाहिए पूर्वानुमानित अवधि के दौरान अधिकतम तापमान 30 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहवा के अनुमान है। भोर में सापेक्ष आर्द्रता 90% और दोपहरिया में सापेक्ष आर्द्रता 60 से 65% आसपास रहवा के संभावना है। पूर्वानुमानित अवधि के दौरान मुख्यतः पूर्वी आ दक्षिणी दिशा से 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवा चलवा के अनुमान
0: है। हाँ। तो देखियो जैसे मौसम पूर्वानुमान के जानकारी हम सब किसान भाई लोगन के दे दलियन
1: समसामयिक सुझाव।
0: अब आशा है कि किसान भाई लोगन ये मौसम पूर्वानुमान का लाभ उठाकर और अनुकूल खेतीबाड़ी करता। आ देखियो समसामयिक सुझाव में किसान भाई लोगन के सुझाव है कि धान जइया धान में खर पात नियंत्रण हेतु प्रति हेक्टेयर 500 से 600 लीटर जल में ब्यूटाक्लोर 3.0 लीटर या प्रिटालोकजोर 1.5 लीटर अथवा पीडीमेथालिन 3 लीटर मिलाकर मौसम साफ रहला के स्थिति में समान रूप से अगर छिड़काव करी
1: संगे मिश्री कंद के
0: किशोर जो है
1: नीक जल निकासी वाला जो भूमि होते
0: ओकरा
1: चयन कर एकर बुआई अखन कैल जा सकते राजेन्द्र मिश्री कंद 1 और राजेन्द्र मिश्री कंद 2 एकर अनुशंसित किस्म है एकर बुआई अखन कैल जा सकते अगस्त में 30 से 40 किलोग्राम बिया प्रति हेक्टेयर के दर से रखवा के चाहिए 30 × 15 सेंटीमीटर के दूरी राखी और प्रति हेक्टेयर 200 क्विंटल कंपोस्ट या गोबर के खाद 80 किलोग्राम के नेत्रजन 60 किलोग्राम फास्फोरस 80 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के दर से देवा के चाहिए और नेत्रजन के आधा मात्रा और फास्फोरस एवं पोटास के पूरा मात्रा से बुआई के समय में दे देवा के चाहिए।
0: शेष नेत्रजन जो है 40 से 45 दिन के बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में दी। आ खरीफ प्याज है खरीफ प्याज के रोपाई अगस्त मास में पूरा कर ली वर्षा जल के उपयोग का खेत तैयार करी तथा अंतिम जुताई में 150 से 200 क्विंटल सरल गोबरक खाद प्रति हेक्टेयर की करीब मिला दी। पौधशाला के खौर पात से मुक्त राखी आ तेज रोद से बचाव के लिए 6 से 7 फीट ऊंचाई पर शेड नेट लगावी। आमक जे अहाँ के फसिल है वो जुलाई अगस्त में आम को रोपण करी कलमी पौधा के लिए 10 × 10 मीटर माने 35 से 35 10 मीटर और अहाँ का गाछ से गाछ 10 मीटर आ बिजू पौधा के लिए 12 × 12 मीटर दूरी राखी आ सघन बागवानी हेतु 5 × 5 मीटर आ आम्रपाली किस्मक लिए अहाँ का 25 × 25 मीटर की दूरी अपना कर राखी आ पौधा का नियमित छटाई और ओकर प्रशिक्षण करते रहे।
1: संगे केला के स्वस्थ एवं रोग मुक्त जे है ओका सर्कस या टिश्यू कल्चर जे होते है वही द्वारा पौध के रोपाई करवा के चाहिए। लंबी किस्म वाला जे होते
0: है
1: ओकरा 2.0 × 2.0 मीटर और बौना किस्म के लिए अहाँ के 1.5 × 1.5 मीटर दूरी रखवा के चाहिए और प्रत्येक गड्ढा में 5 किलोग्राम गोबर के खाद 500 ग्राम अंडी के खल्ली 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट 100 ग्राम म्यूरेट और पोटास और 10 ग्राम कार्बियो फुरान मिलाकर एकरा रोपाई करवा के चाहिए। सर्कस के कार्बनडाजिम 2 ग्राम से प्रति लीटर दर से उपचारित केला के बाद एकर रोपाई करी।
0: आ देखियो मशरूम जो है अखन के मौसम में दुधिया एवं ऑयस्टर मशरूम का खेती करी उत्पादन जो कच्छ बनाबी ओकर सेट के मरम्मत और सफाई को आवश्यक तैयारी पूरा कर ली आ उच्च गुणवत्ता वाला स्पाउन अहाँ के प्रमाणित स्रोत या विश्वसनीय प्रयोगशाला से प्राप्त करी आ पशुपालन में अहाँ के पशु को प्रोटीन युक्त संतुलित आहार दी प्रतिदिन 40 से 50 ग्राम खनिज मिश्रण आ पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराबी आ पशुशाला के नियमित साफ सफाई बनाकर
1: रखी
0: ऐसे की है कि माल जाल एकदम अहाँ का निरोग रहत स्वस्थ रहत आ तखने छे से अहाँ के दूध देत बढ़िया आ दूध देत तो एक दूध के बेच के नीक से अपने सब पैसा कमायब आ तखन मन रहत एकदम गदगद आ गदगद मन में गीत गावे के आ गीत सुने के मन सेहो करे तो क्या ने हम सब एक गीत सुनी
1: सुनल जाए।

0: धनिया चलन रोपनी आइकाल्हि पूनम कुमारीके स्वरमे ई गीत सुनै छलहुँ हँ। आ देखियौ छै से सतो भाई, वर्षाके जे मौसम होइत अछि ई खेती बाड़ीके लेल तऽ बड़ महत्वपूर्ण होइत यऽ, आ सङ्गे सङ्ग जे पशुपालक छथि हुनका लेल ई समय जे होइत अछि बड मने कठिन समय होइए। लगातार बरखा, नमी और तापमान में बदलाव के कारण गाय महीष के स्वास्थ्य पर असर पड़े, जैसे कई बेर अहाँ का दूध उत्पादन कम भ जाइए। जँ अइ मौसम में माल जाल के खान पान, रहे के व्यवस्था और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देल जाए तो नहीं अहाँ का मात्र उनका बीमारी से बचेबन परंच दूध उत्पादन भी सामान्य बनाकर रख सके छी।
1: संगे पशु के हाँ ऊंच स्थान पर और सूखल स्थान पर बंधवा के चाहिए, कीचड़ एवं जल भराव से ओकरा बचेबा के चाहिए। जत कीचड़ है जल भराव भ रहल वही स्थान पर ओकरा नहीं बंधवा के चाहिए, आ जै घर में रहते ओकर नियमित साफ सफाई करवा के चाहिए, आ नमी रोकबा के लिए गोमूत्र के सही निकासी के व्यवस्था करवा के चाहिए।
0: पशुपालन विशेषज्ञ के अनुसार बरखा के दिन में पशु के रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होकर खतरा बढ़ जाइए। एहन वातावरण में संतुलित आहार, स्वच्छ जल और साफ वातावरण उपलब्ध केने बेहद आवश्यक है। कनियो लापरवाही से पशु में संक्रमण, खुरपका, मुंहपका, थनैला और पाचन संबंधी समस्या के कारण बन सके। बरखा के

0: समयमे हरियर चारा आसानीसँ उपलब्ध भऽ जाइए, लेकिन अहाँके बेसी जे गीला रहत या सरल गलल चारा मालजालके नहि खुएबाक चाही, एहिसँ पाचन सम्बन्धी परेशानी होइए। मालजालके टटका एकदम हरियर चारा, सूखल अहाँके भूसा, सूखल भूसा आओर संतुलित पशु आहार उचित मात्रामे देबाक चाही। एकर संगे संगे खनिज मिश्रण जे भेल, मिनरल मिक्सचर आओर नूनके नियमित उपयोग दूध उत्पादन बनाकर राखैमे सहायता करी।
1: संगे बैक्टीरिया एवं फंगस से बचावक लेल फर्श पर अहाँके फिनाइल से छिड़काव करैत रहबाक चाही, जाहिसँ कीट फफूंद नहि आबै। पशु के सूखा साफ चारा दी, फफूंद लागल चारा के सब बचेबाक चाही। अखुनका समय में जे भीजल चारा अछि ओकरा नहि देबाक चाही। दाना चारा हमेशा नमी रहित आ सूखल स्टोर कऽ के रखबाक चाही, ताकि खराब नहि हुए। खाय पीबऽ के बर्तन रोज साफ करबाक चाही आ पेट के बीमारी से बचेबा के लेल अहाँके स्वस्थ स्वच्छ पानि संगे स्वच्छ चारा के व्यवस्था करबाक चाही
0: आ देखियो स्वच्छ जल के उपलब्धता जरूरी है। कई टा पशुपालक जे छथि बरखा

0: और नून का नियमित उपयोग दूध उत्पादन बनाकर रखे में सहायता करे।
1: संगे बैक्टीरिया एवं फंगस से बचाव के लिए फर्श पर अहाँ की फिनाइल से छिड़काव करते रहें चाहिए, जैसे कीट फफूंद नहीं आवे। पशु के सूखा और साफ चारा दी फफूंद लागल चारा के सब बचेबा के चाहिए। अखुनका समय में जो भीजल चारा है ओकरा नहीं देवाक चाहिए। दाना चारा हमेशा नमी रहित आ सूखल स्टोर कर के रखबा के चाहिए ताकि खराब नहीं हुए। खाय पीब के बर्तन रोज साफ करबा के चाहिए आ पेट के बीमारी से बचेबा के लिए अहाँ के स्वस्थ स्वच्छ पानी संगे स्वच्छ चारा के व्यवस्था करबा के चाहिए।
0: आ देखियो स्वच्छ जल के उपलब्धता जरूरी है। कई टा पशुपालक जे छै बरखा के मौसम में मान लेते छै कि एहि मौसम में माल जाल के जल के बेसी जरूरत नहीं हेतै, लेकिन एहन नहीं होइ छै। दूध दे वाला पशु को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ और टटका जल देना जरूरी है, आवश्यक है। आ गंदा जे दूषित जल है पीला से दस्त पेट संबंधी संक्रमण और आन बीमारी का खतरा बढ़ जाए, जेकर सीधा असर अहाँ के दूध उत्पादन पर पड़े।
1: संगे पशु के अहाँ के जे टीका है बरसात के समय में वो अवश्य लगा देवा के चाहिए, जना कि गलघोटू भेल, लंगड़ा बुखार भेल, चाहे अन्य कोनो बीमारी है ओकरा लेल से टीका अवश्य लगा देवा के चाहिए। आ गरज या चमक बिजली गिरबा के समय पशु के पेड़ या बिजली के खम्बा से नहीं बनवा के चाहिए।
0: देखियो दूध निकाले से पहिने और बाद में माल जाल के थन के साफ सफाई के बेहद आवश्यक है। साफ कपड़ा या गुनगुना पानी से थन का सफाई करी और दूध निकाले समय स्वच्छता का पूरा ध्यान रखे, ऐसे दूध का गुणवत्ता बेहतर हो या पशु स्वस्थ रहिया। तो देखियो अही के संगे खेती गृहस्थी कार्यक्रम के समय संपन्न हेबाक, खेती गृहस्थी कार्यक्रम से किसान भाई सब आज्ञा ली।

0: सुन रहे थे
1: हमारा सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम खेती गृहस्थी। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। हमारे अगले प्रसारण की थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, हथकरघा बुनाई तकनीक ने देश में रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला और संस्कृति को संरक्षित किया है। बिहार संग्रहालय 11वां स्थापना दिवस मना रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने म्यूजियम के विस्तार के लिए 1 एकड़ जमीन का दिया आश्वासन। बिहार के मखाने ने भरी वैश्विक उड़ान। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने निर्यात की पहली खेप ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना की। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भागों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हथकरघा के क्षेत्र ने देश में रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला और संस्कृति को संरक्षित किया है।
1: हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीवियन इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए है। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की अपील की है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आने

0: वाले वर्षों में हथकरघा उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस बढ़ती मांग का लाभ सीधे बुनकरों तक पहुंचे।
1: 7 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने हैंडलूम दिवस को स्थापित करने का काम किया, बुनकर भाइयों को एक संदेश दिया, आपके नेतृत्व में भारत का वस्त्र बुनकरों के आमदनी को भी एक ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लेता हूं।
0: इस मौके पर डाक विभाग ने 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हथकरघा दिवस के मौके पर पटना के खादी मॉल से खरीदारी की। श्री चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान को आगे बढ़ाते हुए लोगों से स्थानीय उत्पाद अपनाने की अपील की। हथकरघा दिवस के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक रिपोर्ट।
2: हथकरघा भारतीय संस्कृति की ऐसी धरोहर है जिसने सदियों से लाखों बुनकर परिवारों की आजीविका को संबल दिया है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस महज एक दिवस नहीं बल्कि उन हाथों को सम्मान देने का अवसर है जो अपने हुनर से आत्मनिर्भर भारत की मजबूत बुनियाद तैयार कर रहे हैं। बिहार स्टेट हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव यूनियन के चेयरमैन मोहम्मद नकीब अहमद ने कहा कि पीएम मोदी के संकल्प से आज बुनकरों की स्थिति में बदलाव देखने को मिल रहा है।
3: पूरे दिन हिंदुस्तान में तरह का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन का मेन देश है कि बुनकरों में कैसे उन्नति हो और ये जो मशीनी दौर है, खासकर आप जान रहे हैं कि ये मशीनी दौर में आज का स्वदेशी को टिकना एक बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन हालात जैसे भी है, आप देखते होंगे कि एक चिड़िया परिंदा कोई उसका पढ़ा लिखा है कुछ नहीं, लेकिन उसको भी रिस्क मिलता है, वो भी सुबह और शाम में अपना पेट भर के खाती है।
2: औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड के तिल्हारा गांव में आयोजित कार्यक्रम में हथकरघा उद्योग की संभावनाओं और बुनकरों के स्वरोजगार पर चर्चा हुई। सामर्थ्य योजना के तहत कुटुंबा और नवीनगर की 30 महिलाओं समेत 100 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। रोहतास के जिला उद्योग केंद्र सासाराम में आयोजित कार्यक्रम में बुनकरों को उद्योग विभाग की योजनाओं की जानकारी दी गई। जिला प्रशासन ने पारंपरिक बुनाई को आधुनिक तकनीक और नए डिजाइन से जोड़ने पर बल दिया। समाचार कक्ष से निधि श्री।
0: पटना स्थित बिहार संग्रहालय आज अपना 11वां स्थापना दिवस मना रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्थापना दिवस पर संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
4: इस अवसर पर कई कला प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों तथा नृत्य और गायन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही देश भर से 100 से अधिक कलाकारों की विशेष कलाकृतियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस अवसर पर कहा कि पटना में वर्तमान में 2 संग्रहालय हैं और तीसरे संग्रहालय की परिकल्पना की जा रही है।
5: एक म्यूजियम जो पुराना म्यूजियम है जो आपको तारामंडल के सामने है, दूसरा नया म्यूजियम बना और तीसरा म्यूजियम आज से 30 साल आगे की सोच के लिए दुनिया के स्तर पर हम लोग अपने म्यूजियम से अपने चीजों को, अपनी लोक कला को कैसे लोगों तक पहुंचाए।
4: बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने आकाशवाणी समाचार पटना से विशेष बातचीत में बताया कि राज्य सरकार ने नए संग्रहालय के निर्माण के लिए बिहार संग्रहालय को 1 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है।
6: हाँ, हम लोग 11वां हमारा स्थापना दिवस था और राज्य सरकार ने हम लोग को 1 एकड़ जमीन दी है संग्रहालय के बिल्कुल बगल में, उसमें हम लोग भविष्य का संग्रहालय बनाना चाहते हैं।
4: बिहार स्थापना दिवस पर आयोजित 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियों का आयोजन किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सत्यम कुमार।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में आज पथ निर्माण विभाग और नाबार्ड के बीच 21,000 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और पुल निर्माण संबंधी विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आज बिहटा स्थित इंटीग्रेटेड इरिगेशन कम पैकिंग सेंटर से मखाने की पहली निर्यात खेप को हरी झंडी दिखाकर ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि यह बिहार और पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। श्री सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल टू ग्लोबल, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
7: देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत में विकसित बिहार की बड़ी भूमिका को जिन्होंने स्वीकारा है उसकी शुरुआत है और ये बिहार के लिए कहीं न कहीं बड़ा ही शुभ रहेगा, रोजगार का अवसर देगा और हम

0: हमारा बिहार एग्रीकल्चर आधारित उद्योग के एक नया वातावरण बनाएगा और हम अपने किसानों को इससे मखाना से जुड़े लोगों की कठिनाइयों को भी दूर करेंगे, उनको इनके लिए छोटे छोटे यंत्रों भी हम उपलब्ध कराएंगे, इसका बैंक भी स्थापित करेंगे, अनुदान भी देंगे।
1: राज्य के 4 नए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में 17 अगस्त से पढ़ाई शुरू होगी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने पटना में यह जानकारी देते हुए बताया कि जमुई, नालंदा, कैमूर और मुजफ्फरपुर जिले में विद्यालय भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है।
2: वर्तमान में 2 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु कुल 488 शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु कुल 288 पदों के लिए TRE4 पंजीयों के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग पटना को ऐसी याचना भेजी जा चुकी है। इस वर्ष सभी आवासीय विद्यालयों के छात्रों के लिए GNET कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी।
1: राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों तथा कर्मचारियों को कैशलेस सुविधा देने की मांग की है। इस सिलसिले में श्री कुशवाहा ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र भी लिखा है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: इधर आइए, इधर
4: इधर।
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
5: आकाशवाणी।
1: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, NCPI और शिवसेना के सांसद शामिल थे। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनकी जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। देश में 9 अगस्त से शुरू हो रहे हर घर तिरंगा कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से आग्रह किया है कि इस बार वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के सम्मान में इसका गायन करते हुए तिरंगे के साथ वीडियो बनाकर अपलोड करें।
6: को हमने और इवॉल्व किया है और अधिक विकसित किया है। आज संगीत के साथ में कराओके के माध्यम से देश का हर नागरिक वंदे मातरम को गाए, अभ्यास करे और अपना वंदे मातरम के साथ में सेल्फी लेकर के अपना फोटो अपलोड करे। मैं ये मानता हूँ कि ये केवल वंदे मातरम का गायन या उसको सीखना नहीं है, अपितु उन सब हुतात्माओं को श्रद्धांजलि देते हुए जिन्होंने देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया। इस महत्वपूर्ण पड़ाव में जब देश विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसी तरह के संकल्प, उसी तरह के जोश, उसी तरह के पराक्रम, उसी तरह के योगदान की आवश्यकता है।
1: प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जहानाबाद में जिला प्रशासन की ओर से स्थानीय नागरिक और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया गया। अररिया जिले में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला पदाधिकारी विनोद दुहन ने प्रत्येक प्रखंड में 4000 राष्ट्रीय ध्वज वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। पटना, बेगूसराय, बेतिया और मधेपुरा में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के

0: दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भागों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई स्थानों पर आंधी और वज्रपात की भी आशंका है।
1: दिनांक 8 अगस्त को राज्य के दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भागों अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना है तथा शेष भागों के कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के दक्षिण भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती आज श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। इसके लिए प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कला और संस्कृति विभाग की ओर से इस मौके पर समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत की जा रही है। रोहतास जिले के सुप्रसिद्ध भोजपुरी कलाकार सुरेंद्र राम आज आकाशवाणी समाचार पहुंचे। उन्होंने पारंपरिक आल्हा गायन की प्रभावशाली प्रस्तुति दी, जिसे श्रोताओं ने सराहा। गौरतलब है कि सुरेंद्र राम लंबे समय से आकाशवाणी से ग्रेड वन कलाकार के रूप में जुड़े हुए हैं।

0: पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र अंतर्गत जीरो माइल के पास आज सुबह बस की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। बेगूसराय में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने सदर अंचल कार्यालय के क्लर्क और प्रभारी नाजिर सोनू कुमार को 4,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार क्लर्क एक शिकायतकर्ता से सरकार द्वारा जारी की गई मुआवजे की राशि देने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। दिल्ली पुलिस की एक टीम आज शेखपुरा जिले के शेखुपुर सराय थाना पुलिस के सहयोग से वाजिदपुर गांव में छापेमारी कर अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी पर 12 लाख रुपए से अधिक की ऑनलाइन राशि ठगी करने का आरोप है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने खेलों में पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए एक दिवसीय एंटी डोपिंग कार्यशाला का आयोजन किया। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित कार्यशाला में 100 से अधिक खेल प्रशिक्षकों ने भाग लिया। प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने कहा कि खिलाड़ियों और खेल से जुड़े सभी लोगों को डोपिंग के नियमों और उसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक कराना इस पहल का उद्देश्य है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, हथकरघा बुनाई तकनीक ने देश में रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला और संस्कृति को संरक्षित किया है। बिहार संग्रहालय 11वां स्थापना दिवस मना रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने म्यूजियम के विस्तार के लिए 1 एकड़ जमीन का दिया आश्वासन। बिहार के मखाने ने भरी वैश्विक उड़ान। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने निर्यात की पहली खेप ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना की। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भागों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है बेगूसराय।

0: जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता विजय कुमार झा।
1: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बेगूसराय जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से लगभग 1,20,000 तिरंगा झंडों के निर्माण का आदेश दिया गया है। वहीं जिले में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों और अन्य इकाइयों के माध्यम से करीब 2,00,000 तिरंगा झंडों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तिरंगा निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है ताकि स्वतंत्रता दिवस से पहले सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, पंचायतों तथा आम नागरिकों तक तिरंगा उपलब्ध कराया जा सके। इस अभियान से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। जीविका से जुड़ी जीवन यापन विशेषज्ञ निहारिका नयन बताती हैं कि जीविका दीदियों पूरे उत्साह, लगन और समर्पण के साथ तिरंगा निर्माण के कार्य में जुटी हुई है। बेगूसराय जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि अभियान के दौरान जिले के अधिक से अधिक घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए और लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और सुदृढ़ किया जा सके। तिरंगा निर्माण में बड़ी संख्या में महिलाएं अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। सावन माह के पावन अवसर पर हरिगिरी धाम गढ़पुरा में सावनी मेले का विधि विधान से उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के साथ ही पूरा परिसर बोल बम के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर समिति और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से आयोजित मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। वहीं पहली सोमवारी पर हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। नाग पंचमी पर जिले के सिमरिया, विष्णुपुर, भगवती स्थान सहित विभिन्न विसर मंदिरों और दैव स्थानों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने झांप और लावा चढ़ाकर पूजा अर्चना की। इस दौरान लोगों ने गंगा स्नान किया और अपने घरों में भी नाग देवता की पूजा की। युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत जिला नियोजनालय की ओर से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में जिला स्तरीय नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में 20 नियोजकों ने अभ्यर्थियों का चयन किया।
2: इस रोजगार मेले में लगभग 18 से 20 कंपनियां, कुछ मुख्य कंपनियां जिनका मैं नाम लेना चाहूंगी वो है ब्लिंकिट कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, SIS लिमिटेड, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, जेप्टो, LNT, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड, LIC, हीरो मोटोकॉर्प इत्यादि।
1: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के प्रचार प्रसार के लिए विद्युत आपूर्ति प्रमंडल बरौनी के कार्यालय परिसर में सोलर मेले का आयोजन किया गया। जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने मेले का उद्घाटन करते हुए कहा कि रूफटॉप सोलर बिजली बिल कम करने के साथ स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने का प्रभावी माध्यम है। जिला मुख्यालय के कचहरी रोड स्थित नए आधार सेवा केंद्र की शुरुआत की गई है। ऑफिस इंचार्ज अमित कुमार ने बताया कि आधार संबंधी कार्यों के लिए स्थानीय लोगों को अब जिले में ही सुविधा मिल रही है।
3: यहाँ न्यू इन्वॉल्वमेंट होता है, न्यू जीरो से लेके जो भी एज के लोग होंगे उन सभी का फ्री इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब नया आधार कार्ड बनता है। और अगर किसी के आधार कार्ड में किसी तरह का त्रुटि है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सभी अपडेट करवाना होता है तो उसमें उनको 75 रुपये का फी पे करना होता है, जो कि UIDAI के गाइडलाइन के तहत वो निर्धारित किया गया। और जिनको बायोमेट्रिक अपडेट करवाना था जिसमें फोटो, फिंगर, आइरिस, ये सभी को अपडेट कराना होता है तो जिसमें कि 125 रुपये फी लिया जाता है। बाकी यहाँ ऑनलाइन टोकन सर्व किया जाता है, जो भी अगर कोई चाहे तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके अपने निर्धारित समय और निर्धारित डेट पे आपके अपना यहाँ पे काम करवा सकते।
1: विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत जिले में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जीवन की सतत एवं सुदृढ़ शुरुआत के लिए स्तनपान प्रभावी व्यवस्थाओं को और सशक्त बनाए के थीम पर स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों के समन्वय से प्रतिदिन विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।
0: अभी आप सुन रहे थे बेगूसराय जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता विजय कुमार झा।
4: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। पेश है फिल्म संगीत।

कुसूर फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। हमारे अगले प्रसारण की थोड़ी प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी है। अब आप वैष्णवी से संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनुवारुल हक। लोकसभा की कार्यवाही आज भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित रही। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने आज सदन में फिर हंगामा किया, जिससे प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बिना पारित कर दिया। सदन में गतिरोध के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा कि विपक्षी सदस्य लोग गृह मंत्री के नाम का नारा लगाकर सदन से चले जाते हैं, लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह सदन में चर्चा का जवाब देंगे तो विपक्ष सुन नहीं पाएगा। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया। फिर सदन ने कुछ क्षण मौन रखकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद जब लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराया, तब विपक्ष के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाने लगे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग दोहराते हुए नारा लगाने लगे। श्री बिड़ला ने भारत छोड़ो आंदोलन के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान का उल्लेख करते हुए विपक्षी सांसदों से उनसे प्रेरणा लेने को कहा। अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान को भारत ही नहीं पूरी दुनिया मानती है और उनसे

प्रेरणा लेती है। उन्होंने कहा कि जब आप सब भी उनसे प्रेरणा ले और देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करने के लिए चर्चा संवाद करें तथा अपने विचारों को अभिव्यक्त करें। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है और उसे चलने देना चाहिए। श्री बिड़ला ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। उन्होंने कहा कि वे हर बार आप सबसे आग्रह करते हैं लेकिन उनका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं होता है। अध्यक्ष ने कहा कि आपको इस पर विचार करना चाहिए। इसके बाद हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन की पटल पर रखा। इस दौरान विपक्ष के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर लगातार नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे के बीच ही सदन ने विधेयक को चर्चा के बिना पारित कर दिया। राज्यसभा में ये विधेयक सोमवार को ही पारित हो चुका है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये लोग आज भी सवेरे से गृह मंत्री का नाम ले लेकर नारे लगा रहे हैं और हंगामा करके गायब हो जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह सुबह सुबह संसद में आते हैं और देर रात को ही वापस जाते हैं। वे दिन भर संसद में ही रहते हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि जिस दिन यहां चर्चा होगी, गृह मंत्री अमित शाह जब यहां जवाब देंगे तो आप लोग सुन नहीं पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नियम के अनुसार जो विधेयक होता है उसी से संबंधित मंत्री को सदन में आना होता है। उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि आप यहां निर्देश नहीं दे सकते कि कौन से मंत्री आएंगे और किसको जवाब देना है, वे सरकार और आसन तय करते हैं। इसका पीठासीन दिलीप सैकिया ने विपक्षी दलों के सदस्यों से कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया और कहा कि आप मन बनाकर आए हैं कि सदन चलने नहीं देंगे, ये सही नहीं है। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण आज लगातार 15वें दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 के कारणों तथा उद्देश्यों में कहा गया है कि एमएसएमई आर्थिक विकास के मुख्य कारक है, रोजगार सृजन करते हैं और नवाचार को बढ़ावा देते हैं। ऐसी इकाइयां सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसमें कहा गया है कि पिछले कुछ समय के दौरान तकनीकी बदलाव, सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित प्रणालियों के बढ़ते प्रयोग और बदलते विधिक परिदृश्य के कारण मूल अधिनियम में बदलाव की आवश्यकता है। इस विधेयक के माध्यम से 2006 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि एमएसएमई के निःशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिसूचित किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि एमएसएमई की तरलता के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए इन इकाइयों से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के मामले में केंद्र के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों को उनके इनवॉइस के निस्तारण व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना होगा। विधेयक में इस बात के भी प्रावधान है कि राज्य सरकारें अपने सार्वजनिक उपक्रमों के लिए भी इस तरह के उपबंध करेंगी। इस दौरान सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित कई सांसदों के प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को बताया कि इस साल 31 मई तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2000 से ज्यादा अस्पतालों को सूची से हटा दिया है और 1200 अन्य अस्पतालों को निलंबित कर दिया है। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि योजना के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए 29 प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और लगभग 303 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नियमों के उल्लंघन के कारण 2359 अस्पतालों को सूची से हटाया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में धोखाधड़ी के मामले में कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई जाती है और

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय धोखाधड़ी रोधी इकाई संदिग्ध दावों का पता लगाने के लिए एआई और मशीन लर्निंग पर आधारित स्वचालित प्रणाली का इस्तेमाल करती है। मंत्री ने कहा कि संदिग्ध माने गए दावों के भुगतान से पहले जांच 31 जुलाई 2026 तक 676 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। आयुष्मान भारत योजना देश की आबादी के निचले 40% हिस्से को द्वितीय और तृतीय स्तर के अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवरेज देती है। ये योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। श्री नड्डा ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पात्र लाभार्थियों के लिए लगभग 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए, अस्पताल में भर्ती होने के लगभग 3 करोड़ मामलों को मंजूरी दी गई और योजना के अंतर्गत 5000 से अधिक अस्पतालों को सूची में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने इस योजना को लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साल के दौरान 8400 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए गए। एक अन्य प्रश्न के जवाब में श्री नड्डा ने कहा कि 31 जुलाई 2026 तक देश में लगभग 96 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते आभा बनाए गए थे, जिनमें से 5 करोड़ से अधिक खाते गुजरात में बनाए गए। उन्होंने कहा कि आभा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का एक अहम घटक है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक है पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी गतिरोध बना रहा। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन की बैठक पूर्वाहन 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए कहा कि करो या मरो के नारे के साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए जो संघर्ष किया उसकी वजह से ही आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि करो या मरो के आह्वान ने लाखों देशवासियों को सभी बाधाओं से ऊपर उठकर एकजुट होने और राष्ट्र की स्वतंत्रता के साझा लक्ष्य के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। सभापति ने कहा कि गंभीर दमन, जेल और अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद स्वतंत्रता सेनानियों ने अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और देश की आजादी के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दिखाई। उनके निस्वार्थ बलिदान और दृढ़ इच्छा शक्ति ने स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया तथा 1947 में देश की आजादी का मार्ग प्रशस्त किया। बाद में सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के सम्मान में कुछ क्षण के लिए मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभापति ने इसके बाद जैसे ही शून्यकाल की कार्यवाही शुरू की तभी विपक्षी सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मॉनसून सत्र के दौरान संसद में गृह मंत्री की लगातार अनुपस्थिति का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि सरकार सभापति की टिप्पणियों का सम्मान नहीं करके सदन का अपमान कर रही है। कल सभापति राधाकृष्णन ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से कहा था कि वे विपक्ष के भावनाओं को गृह मंत्री तक पहुंचाएं और सदन में उनकी मौजूदगी की मांग पर विचार करें। विपक्षी दल 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री से सदन में बयान देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि श्री रिजिजू ने कहा कि सभापति की ओर से इस मामले में कोई निर्देश नहीं दिया गया है और विपक्ष के नेता सदन को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब सत्र चलता है तब गृह मंत्री पूरे दिन सदन में मौजूद रहते हैं और मंत्री अपने मंत्रालयों के एजेंडे के अनुसार संसदीय कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष ये तय नहीं कर सकता कि कौन सा मंत्री कब सदन में आएगा। श्री रिजिजू ने कहा कि सभापति ने केवल टिप्पणी की थी लेकिन कोई निर्देश नहीं दिया था। संसदीय कार्य मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हैं और फिर संसद से बाहर चले जाते हैं। उन्होंने इस व्यवहार की निंदा की। हंगामे के बीच ही सभापति ने सदस्यों से शून्य

0: काल में लोकहित के मुद्दे उठाने के लिए कहा। बीजू जनता दल के सुलता देव ने पखाला भात की विशिष्टता और ओडिशा की परंपरा में इसके महत्व को रेखांकित करते हुए इस व्यंजन को GI टैग देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पखाला भात केवल एक भोजन नहीं बल्कि राज्य की संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने की मांग की। भाजपा के प्रकाश चिक बाराइक ने उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में युवाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक अत्याधुनिक स्टेडियम बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण अपनी प्रतिभा को निखारने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भाजपा के अमरपाल मौर्य ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या, प्रयागराज और बुंदेलखंड क्षेत्र के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए इन क्षेत्रों को जोड़ने वाले राम दर्शन रेल पथ गलियारे के निर्माण की मांग की। उन्होंने कहा कि अयोध्या, प्रयागराज और बुंदेलखंड क्षेत्र भारत की आध्यात्मिक विरासत और धार्मिक परंपराओं के प्रमुख केंद्र रहे हैं तथा इन क्षेत्रों का संबंध भगवान राम के जीवन और उनसे जुड़ी आस्थाओं से है। उन्होंने कहा कि यदि राम वन गमन मार्ग से जुड़े प्रमुख स्थानों को एक ही रेल गलियारे के माध्यम से जोड़ दिया जाए तो इससे श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी। जब ये सदस्य अपने मुद्दे उठा रहे थे तो विपक्षी सदस्य लगातार नारेबाजी और हंगामे कर रहे थे। हालांकि सभापति ने उनसे सदन की कार्यवाही चलने देने की कई बार अपील की, लेकिन इस अपील का कोई असर न होते देख उन्होंने 11:30 पर बैठक को दोपहर 12 बजे तक स्थगित करने की घोषणा की। दोपहर 12 बजे बैठक पुनः शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा। उन्होंने समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन से पूरक प्रश्न पूछने को कहा। सुमन ने ट्रेनों में कवच और सिग्नल प्रणाली लगाए जाने से संबंधित विषय पर पूरक प्रश्न पूछने के बजाय कहा कि सदन में गतिरोध कायम है और विपक्ष अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा चाहता है। सभापति ने सुमन को अपनी बात पूरी करने का मौका दिए बिना ऑल इंडिया अन्ना DMK सदस्य डॉ. एम थंबी दुरे से आज की प्रश्नावली में सूचीबद्ध से प्रश्न से संबंधित पूरक प्रश्न पूछने के लिए कहा। थंबी दुरे ने पूरक प्रश्न पूछा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका जवाब भी दिया, लेकिन हंगामे की वजह से सदन में उनकी बात नहीं सुनी जा सकी। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की, लेकिन उनकी अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने 12:04 पर बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार।

श्रोता लोकन नमस्कार। आजुक सिंगरहारक अंक में हम विजय कुमार सिन्हा अपने सबके स्वागत करै छी। श्रोता लोकन सबसे पहिने हम अपने सबके ओहि पुष्प से परिचित करा दी जे आइ हम सिंगरहारक फूलडाली में सजा कर सुनेबाक लेल अनने छी। तो श्रोता लोकन आजुक कार्यक्रम में हम सब सुनब एक गोट कथा संगे किछु गीतनादक आनंद सेहो लेब आ ओकर बाद किछु शब्द विमर्श सेहो सुनब, मुदा ताहिसँ पूर्व कॉली किछु दुटप्पी। देखल जाए जे मैथिली साहित्यमे हास्य आ व्यंग्यक बड़ बेसी महत्व अछि। हास्य जीवनक ओ शैली थिक जाहिसँ मनुखके मनक भावक सुंदरता झलक उठैत अछि। हास्य मनुखके स्वास्थ्य एवं सौंदर्य के इजोत प्रदान करैत अछि। ओ व्यक्ति के तनाव से निकलबाक सही राह देखबैत अछि। हास्य से मनुख के मुख पर मधुरता छा जाइत अछि। किछु क्षणक लेल ओ अपन दुख बिसरि जाइत अछि। श्रोतागण, हास्य मनुख के कवच अछि जे ओकरा दुख के आघात के बेग के कम कऽ दैत अछि।

हास्य व्यंग्यक मूल स्रोत हमर हजारों बरख पुरान संस्कृति सभ्यता आ जीवन दर्शन में देखल जा सकैत अछि। हमर दार्शनिक लोकन जाहि ब्रह्म के अवधारणा के समाज के सामने रखलन ओ सत्य चित्त के संगे आनंदक स्वरूप थी। ब्रह्म आनंद के रूप में सब प्राणी में निवास करैत अछि। ओहि आनंद के अनुभूति के जीवनक परम लक्ष्य मानल गेल अछि। ऐसा ब्रह्मानंद शब्दक रचना भेल अछि। ओ रस माधुर्य लास्यक स्वरूप थी। हास्य व्यंग्यक ई धारा वेद के जमाना सँ लगातार हमर देश में बहि रहल अछि। ई हमर सांस्कृतिक खास देन अछि। हम अपन उपास्य सँ अनेक रूप में प्रेम कऽ सकै छी। हम ओकर दास मित्र सेवक अत तक कि शत्रु आ स्वामी सेहो बनि सकैत छी। हमर सभक ई वैचारिक स्वतंत्रता समाज के हास्य व्यंग्यक उपहार देने अछि। हम मानै छी कि ब्रह्म के अलावा सब जीव गुण आ दुख के पुतला होइत अछि। गुण आ दुखक मिश्रण मनुख के खास पहचान अछि। श्रोतागण कवि भक्त छथि, हुनक मन में अपार श्रद्धा छनि। ओ आराध्यक अपमान नहीं करय चाहै छथि। ई बंधन सँ मुक्त समाजक प्रतीक थिक। हम अपन आराध्य सँ देवता के संग बाजि नहीं अबै छी। श्रोतागण हास्य व्यंग समाजक विसंगतिक आईना थिक। ई समाज के ऑक्सीजन देबाक काज करैत अछि। एहि बहाने समाज के तनाव कम होइत अछि। हास्य के दू भेद कयल गेल अछि, एक अछि आत्मस्थ आ दोसर परस्थ। यह हास्य विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव सँ पुष्ट भऽ कऽ हास्य रस में परिणित भऽ जाइत अछि। हास्य कविता मैथिली साहित्य के ओ रस अछि जकरा पढ़वा और सुनवा में आनंदक अनुभूति होइत अछि। हास्य कविता में शब्द द्वारा केकरो पहनावा शारीरिक बनावट इत्यादि पर ध्यान केंद्रित करैत मन में हास्य रस भाव उत्पन्न कयल जाइत अछि। आ रस ओ गुणवत्ता अछि जे कलाकार आ दर्शककार के बीच समझ उत्पन्न करैत अछि। श्रोतागण नाट्यशास्त्र में कहल जाइत अछि कि एकटा नीक स्वादक उत्पन्न कयल जाइत अछि। जखन कि विभिन्न मसल्ला एक संग मिलबै छी तहिना अस्थायी भाव सँ रस के स्वाद बढ़ैत अछि। हास्य आ व्यंग दुनू के प्रकृति बिल्कुल अलग अलग अछि। दुनू के प्रभाव क्षेत्र अलग अलग अछि। जँ जँ मैथिली समाजक चिंतन धारा बदलत, अपन शब्दक परिधि पैघ होयत, तँ स्नेह ओ सहानुभूतिक क्षेत्रक विस्तार भेल जायत, संगहि लोक कर्मठ हेता। तऽ श्रोतागण हास्य व्यंग्यक कवि लोकनि के जिंदगी भर चलते रहत, मुदा ई जन देखल बाट अछि जकरा हमसब शनै शनै केने चलि जाइ छी। एहिमे हमरा सबके मदद करैत अछि हमर सबक अंतर में निहित ऊर्जा, दृढ़ इच्छा शक्ति के रूप में। आ ई ऊर्जा और तीव्र भऽ जाइत अछि जखन हम स्मरण करै छी, ध्यान करै छी बाबा भोलेनाथ के। तऽ आउ सुनै छी हमरा लोकन एकटा भोले बाबा के गीत, स्वर छन्न ममता ठाकुर के। तऽ सुनल जाय हुनका स्वरमी गीत।

0: अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
1: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है, कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर, संध्या 6:30 पर।
0: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन में करना चाहता हूँ कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार, अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
1: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है, कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोतालोकन, ए विज्ञापन से पूर्व हमरा लोकन मैथिली सुगम संगीत ममता ठाकुर के स्वर में सुन रहा छो। गीत सुनला के बाद निश्चित रूपे जो भाव हृदय में उमड़त ओकर वर्णन नहीं कैल जा सकते। एक हृदय से दोसर हृदय में भाव सबक संचार करत, मुदा जखन साहित्यिक विधा सबक गप चलत तो नाम अबत कहानी इत्यादि के। नहीं जान कहिया से ये कथा लेखनक अनुपम परंपरा चल आब रहा है, तो आओ सुने से हमारे लोकन एक गोट कथा। कथाक शीर्षक कुंजी, कथाकार छथि रूपम कुमारी, तो सुनल जाए इनका से कथा।
4: कथाक शीर्षक कुंजी। नवका डेरा में आय पहिल दिन छल, बड़ मुश्किल से भेटल छल ई एक कोठरी वाला डेरा। ओहू में एसगर लड़की के रहबाक लेल छोट शहर में डेरा भेटब कनी मुश्किल होइत छैक। ओना चारू दिस से एही डेराक परिसर में 10 कोठरी छलै, बीच में आंगन, एकटा चापाकल आ चबूतरा, एक दिस 4 शौचालय, स्नान घर, चारू सामूहिक छल। दसो कोठरी में रहनिहार सबके जे खाली भेट जान तय हुनकर। ओहि दिन आबे में साँझ पड़ गेल छलै, तमान सब सेट करैत करैत रात भ गेलै, ते ककरो से परिचय पात नहि भेल। माँ ओहि दिन हमरे लग रहि गेल रहे। दुनू माय धी बैग से भोजन बहार कऽ भोजन कयलहुँ आ सुति रहलहुँ। भोर भेने पह फटते एकटा स्वर सुनाई पड़ल, हमर नींद टूटि गेल। हम ओंघायले रही, तथापि ओछाओन पर बैस कऽ कान पाति सुनऽ लगलहुँ। एकटा बूढ़ गीत गाबि रहल छला। हम कोठरी सँ बाहर भऽ ओसार पर ठाढ़ भऽ गेलहुँ। गीत ततेक नीक छल जे हमर डेग गीतक स्वर दिस स्वतः बढ़ल चलि गेल। जाहि कोठरी सँ गीतक स्वर आबि रहल छल ओकर केबाड़ में सटि कऽ ठाढ़ भऽ गेलहुँ। केबाड़ कनी खुजि गेलै, पल्ला मात्र भिरकाओल छलै। हम पल्लाक फाँक सँ हुलकी देलहुँ तो देखलहुँ जे प्रायः एकटा 70-72 बरखक बूढ़ आँखि मुन्ने गीत टेर रहल छला। गोर दप दप, दुब्बर पातर, नमगर देह, दूध के फेन सन उज्जर उज्जर दाढ़ी आ केस, गंजी या लुंगी पहिर कऽ बैसल गीत गाबैत ओ बूढ़ा हमरा आकर्षित कयलनि। हम चुपचाप केबाड़क फाँक सँ हुनका देखैत छलियनि, ते ओ गमि गेला। ओ आँखि मुन्ने बजला, के छह, भीतर आबि जा। हम कनी संकोच करैत केबाड़क पल्ला खोललहुँ आ भीतर प्रवेश करैत हुनका पैर छुबि सोझा में ठाढ़ भऽ गेलहुँ। ओ ओछाओन पर बैसबाक संकेत कयलनि आ पुछलनि, कोंटा वाला कोठरी तोही किराया पर लेलही है? हाँ, साँझ में एक रत्ती तोरा देखने छलियो, ते चीन गेलियो। हम ओछाओन पर बैसैत कोठरीक चारू कात तकलहुँ, देखलहुँ जे एकटा कोन में गैसक एक चूल्हिया आ 2-4 बर्तन बासन राखल छल। ओछाओन पर चारू कात पोथी या पत्र पत्रिका सब पसरल छल। हमरा बुझा गेल जे ई कोनो विद्वान लोग छथि। ओ पुछलनि जे कोन क्लास में पढ़ैत छही? BA, विषय अंग्रेजी ऑनर्स। एहिठाम असगरे रहबी? हाँ, हम बाजलहुँ। अखन माँ आयल अछि, काल्हि चलि जायत, तकर बाद असगरे रहबै। ठीक, कोनो खगता हेतौ तो बाजिहें, संकोच नहि करिहें। हम बाजलहुँ, बेस बाबा, अहाँ जे अखन गीत गबैत छलियै से हमरा नीक लागल। ई गीत के लिखने छलखिन? बूढ़ा बजला, जाहि काजमे पाइ नहि लागैत छै से सब हम करैत रहै छियै। जेना चित्र बनेनाय, कविता लिखनाय, गीत सुननाय या सुनेनाय।

नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन मैं करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार

आदि। बाइस ओ हंसा लगला, हुनकर ई सहजता हमरा नीक लागल। हम अपन प्रश्न एक बेर फेर दोहरेलहुँ, मुदा अखन जे गीत गबैत छलियै से ककर लिखल छै? ओ फेर हंसैत बाजला, हम अपने लिखल गीत गबैत रहै छियै। हम मने मन सोचऽ लागलहुँ, ओ ई कवि छथि, काल्हि भेने माँ चलि गेलै आ हम अपन पढ़ाई में लागि गेलहुँ। कॉलेज आ ट्यूशन के बाद एक बेर बाबाक हालचाल अवश्य पूछलियन। हुनका कोठरी में जखने कखनो जाए कि ओ बाजैत, आ बैस अजुका कविता लिखल सुना दै छियो। सुनबही? हम नहीं नहीं कह पाबैत छलिए। आ बाबा प्रतिदिन कम से कम 5-7 टा कविता हमरा सुना दैत छला, मने प्रतिदिन एतेक लिख लेत छला। एही तरहे बाबा हमरा अपन पकिया श्रोता मान लेने छला। दोसर बात ई जे हमरो बाबाक कविता सुनबाक हिस्सक भ गेल छले। एक दिन हम कहलियन, बाबा अहाँ असगरे रहैत छी तऽ अपने खेनाई किएक बनबैत छियै? 4 टा सोहारी हम ही बेसी बना लेब, अहाँक भोजन हम नेने आयब। बाबा साफ नकारि गेला, बजला तो एतऽ पढ़े लेल आयल छही कि भानस भात करे लेल? तो अपन पढ़ाई लिखाई पर ध्यान राख, कहबे तो तोरो हिस्सा 4 टा सोहारी हम ही पका लेल करब। बाबा फेर अपन चिर परिचित अंदाज में हंसैत बजला, हम खेनाई बनेनाई जानैत छी। बाबा हमर ध्यान एही तरहे राखऽ लगला जे हमरा लागल बाबा हमर गार्जियन बनि गेला। बाबाक काजे की छलन? एकटा प्राइवेट स्कूल में 2-3 घंटी पढ़ेनाय आ तकरे दरमाहा से खर्च बर्च चलैत छल। असगरे रहनाय, खेनाय बनेनाय, खेनाय गीत गजल लिखनाय आ मगन रहनाय, बस एतबे काज छलन बाबाक, एकदम बतास जका मुक्त। एक दिन भोरे भोर बाबा हमर केवाड़ खटखटौलन। हम केवाड़ खोलैत पुछलियन, की बात बाबा आय भोरे भोर? हमरा लागल राति किछु बेसी कविता लिख लेने हेता, ते सुनबैक लेल भोरे भोरे जुमि गेला। मुदा ओ कहलनि, आइ सँ तोहर परीक्षा छौ ने, तोहर खेनाय हम बना दैत छियौ, खा कऽ जइहें। हम पुछलियन, अहाँक हमर परीक्षाक तिथि मोन छल बाबा? अन्हारे मे उठल होए वहाँ एतेक भोरे भोरे एतेक कष्ट करबाक कोन काज छलै? ओ बजला, हमरा दुनिया भर में एकहिटा श्रोता अछि जे तों छै, जखन ओ भड़क जात तो मुश्किल होत। कहि बाबा हंसऽ लगला, हुनका संग हमहूँ हंसलो। तखन बुझायल जे बाबाक निश्चल प्रेमक हम ऋणी भ गेल छी। बाबाक कविता सुनेबाक हिस्सक सँ हमर किछ संगी डरेबो करे। एक दिन भेलै ई जे हमर संगी सुमन समय पर हमर नोट्सक कॉपी नहीं घुरेलक, तो ओकरा फोन केलिए। तखन ओ कहलकै जे कॉपी लए कऽ गेल रहियो, मुदा तोरा डेरा में जे ओ बूढ़ा नहीं छथुन, तिनकर कोठरी के केवाड़ खुजल देखलिए तो घुर अयलहुँ, के सुनते हुनकर कवित? तखन हमरा मोन पड़ल जे हाँ, एक दिन हम सुमन के अपना डेरा पर आनने रहिए, ओही दिन ओकरा बाबा से परिचय करेलिए। बाबा ओकरा 20-22 टा कविता सुना देने रहथिन। कविता सुनेलाक बाद हमरा दिस तकैत बजला, आब नहीं सुनेबे एकरा कविता, मुँह सुखा गेले नुनू के। आ हंसैत ओ अपन डायरी मोड़ लेने छला। तें आई बाबा के केवाड़ खुजल देख घूर गेल सुमन। एहने मनमतंग लोग छला बाबा। बाबा के कविता सुनैत सुनैत हमरो किछ पद जोड़वा के हिस्सक लाग गेल। बहुत रास पत्र पत्रिका हुनका लग सहजे उपलब्ध भ जाए। ओ बड़ोबर कहे कॉलेजक विषय से फड़ाको पढ़ल कर समय निकाल कर पत्र पत्रिका सब सेहो पढ़वाक चाही। हम प्रतिदिन बाबा से भेंट करी आ नव नव पत्रिका पढ़ी। कहियो काल साहित्यक गप पसरि जाए हमरा दुनू गोटेक बीच, तर्क वितर्क सेहो होमए लागे, वैचारिक बहस शुरू भ जाए। कहियो काल कोनो कोनो बात पर हम बाबा के पछाड़ दियन, हरदा बजा दियन। तखन बाबा प्रसन्न भ जायत आ आशीष दैत, कहत तो साहित्य के क्षेत्र में खूब आगू बढ़बे। मुदा बाबाक ज्ञानक था हमरा नहीं छल, बड़ मुश्किल छले हुनकर ज्ञानक अटकर लगेनाय। बहस में बाबा हमरा से कहियो काल हार जायत। ओ अही दुआरे हारैत कि हुनका हमर जीतब पसीन छलन। बाबाक एतेक दिन सानिध्य में हमरा एकटा बात बुझा गेल जे बाबी हिनकर संग बहुत पहिने छोड़ देने छलखिन। हम बाबा से पूछलियन, बाबा एकटा बात पूछी? हाँ पूछ ना, अहाँक धिया पुता सब कतऽ छथि? बाबाक ठोर पर एकटा उदास मुस्की पसरि गेलन। गहीर सांस लैत बजला, एकटा बेटी छै। कतऽ छथि? अखन तऽ हमरे आगू में बैसल छै।

0: हम बुझि गेलहुँ जे ओ अपन परिवारक चर्च नहि करय चाहै छथि, संगे अपना प्रति हुनकर भावनाक सोझा नतमस्तक सेहो भऽ गेलहुँ। एक दिन हमरा बाबा अपन कोठरी मे बजौलनि, बाजला, एकटा चीज तोरा देबऽ चाहैत छियो। की? ओ हमरा हाथ मे एकटा कुंजी थमा देलनि आ कहलनि, ओही पेटी के खोलही। हम पेटी के खोलि के देखलहुँ तऽ चकविदोर लागि गेल। भरि पेटी सैतल डायरी। हम बाजलहुँ, एहि पेटी मे तऽ खाली डायरी अछि? डायरी छैक मुदा खाली नहि, कविता गीत गजल सँ भरल। यह हमर सम्पूर्ण जीवन के कमाई अछि, बाजैत बाबा भावुक भऽ गेला। हमहू तखन बाजि उठलहुँ, चिंता नहि करू बाबा, ई सबटा डायरी सुरक्षित रहत। डायरी के संदेश हम सब लोग धरि पहुँचायब। हम ई कुंजी सहेज कऽ राखि लैत छी। पीजी के पढ़ाईक लेल हम पटना आबि गेलहुँ। ओही ठाम कोठरी मे एकटा कांटी ठोकलहुँ आ ताही मे कुंजी टांगि देलहुँ। ओ कुंजी हमरा बाबाक आभास दियाबैत छल। एक दिन फोन आयल जे बाबा नहि रहला। हम कांटी सँ कुंजी उतारि कऽ करेज मे साटि नेने रही। ई सूचना हमरा एक दिन बाद भेटल छल। कचोट भेल जे बाबाक अंतिम दर्शनो नहि भऽ सकल। तैयो हम अपन कोठरी सँ बहरा गेलहुँ। हम ओही डेरा पर गेलहुँ जतौ हम रहैत रही आ बाबा सँ पहिल बेर भेंट भेल छल। ओ पेटी आ पेटी मे सैतल डायरी पर मोन टांगल छल। बाबाक कोठरी मे गेलहुँ, कोठरी खाली, भम्म पड़ैत पड़ोसिया से पूछलियै तऽ बाजल, कहाँ किछो भेल छलनि बूढ़ा के, सब दिन भिनसरे भिनसर जहिना गीत गाबैत छलखिन तहिना गेलखिन। तकर बाद कोठरी सँ बड़ी काल धरि आवाज नहि अयलै तऽ देखलियै जे बूढ़ा उंगरायल छथिन। मकान मालिक के खबर देलियै, ता धरि तऽ उड़ि गेल रहथिन बूढ़ा। हम हिम्मत करैत पूछलियै, आ ओही कोठरी के सर समान? समाने की रहै, कनी बर्तन बासन आ पुरान कुर्ता पैजामा चद्दर। एकटा चौकी रहै, से मकान मालिक एक रहै, ओ उठा के लऽ गेलै। हाँ, एकटा पेटी छलै मुदा ओकर कुंजी कतौ नहि भेटलै। बूढ़ा के बेटा पोता बड़ ताकलकै, जखन नहि भेटलै तऽ ताला तोड़लकै, कतौ किछु नहि, पाइयो कौड़ी आर नहि छलै, खाली लिखलाहा डायरी सब सैतल। हम पूछलियै तऽ ओ सब की भेलै? ओ सब राखिए के की हेतै, पड़ोसिया बाजल, बूढ़ा के कपड़ा लत्ता आ पेटी वाला डायरी आर गंडक में भसा देल गेलै आ बर्तन बासन आर घर लै गेलै बेटा सब। हम काठ भऽ गेल रही। बड़ी काल बाद लागल जेना कियो देह डोलेलक अछि। साकांश भेलहुँ, पर्स सँ कुंजी बहार कऽ मुट्ठी मे दाबने नहु नहु डेग पाछा कऽ लेलहुँ।
1: श्रोता लोकनि, एखन अपने सब रूपम कुमारी के स्वर में रूपम कुमारी सँ ई कथा कुंजी सुनि रहल छलहुँ। आशा अछि जे ई कथा अपने सबके जरूर दिव्य लागल होयत। आब हम लोग सुनै छी किछु शब्द विमर्श। एकटा शब्द अछि निघैट। निघैट मतलब समाप्त। बिलहैत बिलहैत पोथीक आधा ढेरी निघटि गेल। तहिना एकटा आओर शब्द अछि नोर। नोर लोर के कहै छी। हुनकर आँखिसँ हुनक हृदयक पीड़ाके नोर चुअ लागल। तहिना एकटा आओर शब्द अछि ठोपे ठोप। ठोपे ठोप कनी कनी, एखन गर्मीके मौसममे कलक पानि जे अछि ओहिमे ठोपे ठोपे पानि गिरैत अछि। तहिना एकटा आओर शब्द अछि अनचिन्हार। अनचिन्हार अपरिचित। हमरा लोकनि कहै छी, यौ जी, अहाँ तऽ अनचिन्हार लोक छी, कनिक अपन परिचय दिअ ने। तऽ ई छल शब्द विमर्श। आब हमरा लोकनि सुनै छी एकटा सुंदर सन देवी गीत, स्वर छन्द बोध नारायण सिंह के स्वर में।

चलत चलत श्रोता लोकन अपने सबसे आग्रह जे कार्यक्रमक प्रतिक्रिया वा सुझावक हमरा सबक प्रतीक्षा रहित अछि जे हमर सबक ई सिंगरहार कार्यक्रम केहन लगैत अछि ई एकटा पत्रक माध्यमसँ सूचित करी। हमर सबक पता अछि कार्यक्रम सिंगरहार द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा पिन 8460004। ईमेलक पता अछि akashwanidarbhanga@gmail.com। तऽ एहि सङ्ग आजुक सिंगरहारक कार्यक्रम सम्पन्न भेल। आ विजय कुमार सिन्हाक चलबाक आज्ञा देल जाय। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
3: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन को संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में एक बार फिर कामकाज में बाधा आई।

0: विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही भोजनावकाश से पहले ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं हो सका। इससे पहले भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर दोनों सदनों में स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही जल्दी ही स्थगित हो जाने के कारण गैर सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य भी नहीं लिए जा सके। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों और आपदा प्रबंधन विभागों से आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने को कहा है। लोकसभा में आज सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान स्थानीय भाषाओं में समय पर और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने में सामुदायिक रेडियो केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए, इनमें सिंधु जल संधि को स्थगित रखना, अटारी सीमा चौकी को बंद करना, वीजा संबंधी प्रतिबंध लगाना तथा दोनों देशों के उच्चायोगों में राजनयिक और आधिकारिक कर्मचारियों की संख्या कम करना शामिल है। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि देश का आंतरिक विधायी मामला है।
2: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
1: श्री जायसवाल ने भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
2: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई।
1: प्रवक्ता ने पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हुए हाल ही में रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन आयोजित करने का भारत इच्छुक है। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हाल में हुए रक्षा समझौते पर उन्होंने कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए हुए है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया है। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेहर कुमार ने नई दिल्ली में बताया कि जेम प्लेटफॉर्म पर कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।
3: 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार प्रौद्योगिकी के थ्रू करा पाए हैं। तो और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं। किसी भी समय में करीब 4 लाख सेलर हमारे साथ व्यापार करते रहते हैं। हर दिन करीब 1000 करोड़ से ऊपर का व्यापार होता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चर ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स

0: सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। समापन समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संस्कृति विभिन्न देशों और समाजों को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने साझा संस्कृति, विरासत, आपसी विश्वास और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाने में ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल सहित ब्रिक्स सदस्य के मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य शामिल थे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
0: उड़ीसा के भुवनेश्वर में आज 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक में सर्वसम्मति से भुवनेश्वर घोषणा पत्र अपनाया गया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि घोषणा पत्र समावेशी, मजबूत और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था विकसित करने के लिए ब्रिक्स देशों की प्रतिबद्धता दोहराता है। भारत और श्रीलंका ने विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर आज नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने किया। श्रीलंका के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ऊर्जा मंत्री अनुर करुण थिलाके ने किया। 2 दिवसीय ब्रिक्स वेब्स बाजार 2026 का मुंबई में आज समापन हो गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रिक्स के 20 सदस्य और भागीदारी देशों के 900 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 275 से अधिक व्यावसायिक बैठकें की गईं। एक रिपोर्ट।
2: मुंबई में आज ब्रिक्स वेव्स बाजार 2026 का समापन कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग घोषणाओं के साथ हुआ। एनएफडीसी के प्रबंध निदेशक प्रकाश मकदूम ने कहा कि इस आयोजन ने ब्रिक्स देशों के बीच रचनात्मक सहयोग की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित किया। इस दौरान एनएफडीसी ने ब्राजील की रियो फिल्मे के साथ ऑडियो विजुअल सहयोग बढ़ाने के लिए आशय पत्र का आदान प्रदान किया, जबकि एनएफडीसी और राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने रूस के गॉस फिल्मो फोन के साथ सहयोग जारी रखने की घोषणा की। दक्षिण अफ्रीका, रूस, थाईलैंड और कजाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल 2027 की भी घोषणा की। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: छात्रों का आंदोलन आज भी जारी रहा। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से परीक्षाएं रद्द करने और पूरे मामले की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि इस विषय पर सरकार सदन में सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। इस बीच रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत छात्रों से मिलने आज शाम प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची। प्रशासन ने बताया कि टीम ने धरना स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उधर सरकार के साथ प्रस्तावित वार्ता के लिए छात्रों ने 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की अंतिम सूची भी जारी कर दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माहे और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी वर्षा, गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। उड़ीसा में बाढ़ प्रभावित लोग बाढ़ से हुए नुकसान से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मौसम विभाग ने मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट और कई अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
4: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए रेड वार्निंग जारी की है। विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश होगी और ये सिलसिला 3 दिनों तक जारी रह सकती है। सालंदी और जालका नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक और केंदुझर जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। इस बीच बाढ़ से प्रभावित कई परिवार अभी भी राहत सामग्री और मवेशियों के चारे के लिए जूझ रहे हैं, जबकि फसलों को हुए भारी नुकसान ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि केरलम के 4 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
5: केरल के उत्तरी जिलों कासरगोड, कन्नूर, वायनाड और कोझिकोड के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 4 अन्य जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है, जबकि शेष 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। राज्य के सभी जिलों में पिछले 1 सप्ताह से तेज बारिश हो रही है। शनिवार के लिए 10 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। हालांकि रविवार से राज्य

0: वर्षा में कमी आने का अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: राजधानी दिल्ली में आज सवेरे से कुछ जगहों पर हल्की और कुछ जगहों पर तेज बारिश हो रही है।
2: राष्ट्रीय राजधानी में दिन के समय कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। तेज बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ और कई इलाकों में लोगों को यातायात जाम का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मौसम विभाग ने दिल्ली में कल भी हल्की से मध्यम बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भानु के साथ ईशानी यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज तितली मांझी ने महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया। तितली ने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 80 किलोग्राम भार उठाकर कुल 145 किलोग्राम वजन उठाया और ये पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Parliament clears MSME Development Amendment Bill to ensure faster payments and quicker dispute resolution. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says relations with Pakistan can only move ahead in an environment free of terror, hostility and violence. New Delhi reiterates its call for safe and unhindered navigation in international waters. Government e-marketplace completes 10 years with cumulative procurement crossing 20 lakh crore rupee mark. Alert issued for very heavy rain in Haryana, Chandigarh, Delhi, Kerala and Odisha. And in Asian Youth and Junior Weightlifting Championships, Titli Maji clinches silver medal in women's 45 kg category. And now the news in detail. The Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 has been passed by the Parliament, with the Lok Sabha approving it today. The Rajya Sabha had passed the bill on Monday. The bill aims to address payment delays and simplify dispute resolution. The legislation provides that every central public sector enterprise must settle all invoices for procurement of goods or services from MSMEs on the trade receivables discounting system. As per the bill, if mediation fails in case of dispute, then the reference for arbitration must be made within 30 days from the date of termination of mediation. Both Houses of Parliament today witnessed opposition's uproar over several issues, including the alleged police action during students' protest over the NEET issue. More from our correspondent.
4: Both the Houses of Parliament once again faced disruptions following opposition uproar over several issues, including alleged police action during a student's protest over the NEET issue. Due to the continued disruptions by the opposition members, both the Houses were adjourned for the day before lunch. Following opposition uproar, question hour could not be taken up in both the Houses. Earlier, both the Houses paid tributes to the freedom fighters to mark the 84th anniversary of Quit India movement. The Lok Sabha also completed its legislative business by passing the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026. Rajya Sabha had passed the bill on Monday. As both the houses were adjourned early, the private members' business could not be taken up. With Dipendra, this is Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
3: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's relations with Pakistan can only move ahead in an environment free of terror, hostility and violence. In a written reply in Lok Sabha today, Dr. Jaishankar said that Pakistan continues to follow the policy of cross-border terrorism and using terrorism as an instrument of state policy against India. The minister said India withdrew most favoured nation status to Pakistan and high

0: ब्रीफिंग के दौरान इस सिलसिले में एक सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। जनाब जायसवाल ने वाजे किया कि अमरीका समेत बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो गैर मुल्की फंड्स के लेन देन को मुंजबित करते हैं।
1: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: भारतीय बहरी जहाजों और जहाजरानों के तहफ्फुज और सिक्योरिटी से मुतालिक जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत इस मामले को आला तरजीह देता है। उन्होंने कहा कि तमाम खलीजी खित्ते में भारतीय मिशन उन ममालिक में जहाजरानी की वजारत और समंदरी हुक्काम के साथ मुसलसल राबते में हैं। उन्होंने कहा कि 24 घंटे सातों दिन हेल्प लाइन्स फ़ाल हैं ताकि अगर किसी शख्स को मदद की ज़रूरत हो तो वो उन तक रसाई कर सके। ये हेल्प लाइन्स पिछले कुछ महीनों से मुसलसल फ़ाल हैं। उन्होंने कहा कि भारत बैनुल अक़वामी समंदर में महफूज और बिला रुकावट जहाजरानी और आज़ादाना तजारत के लिए ज़ोर देता रहा है। भारत ने तमाम फरीकैन पर जोर दिया है कि वो शहरी ढांचे और गैर फौजी बहरी जहाज़ों और जहाजरानों को निशाना बनाने से गुरेज करें। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने इस बात को दोहराया कि भारत का उस तकरीब में कोई किरदार नहीं था।
1: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान गुज़श्ता रात टेलीफोन बातचीत से मुतालिक वज़ारत-ए-खारजा के तर्जुमान ने कहा कि दोनों लीडरों ने मगरबी एशिया में जारी सूरतहाल और बदलते हुए हालात का जायजा लिया। उन्होंने मजीद कहा कि ये फोन इसराइल की जानिब से किया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि भारत की इसराइल के साथ खसूसी जामे शराकत दारी है। तर्जुमान ने कहा कि दोनों लीडरों के दरमियान बातचीत के दौरान मुख्तलिफ शोबों में तआवुन को मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई माहदे से मुतालिक जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत इस सूरतहाल पर करीबी नज़र रखे हुए है। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान हालिया दिफाई माहदे से मुतालिक जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत इन मामलात पर करीबी नज़र रखे हुए है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि भारत अफ्रीका फोरम चोटी कॉन्फ्रेंस मुनक़द करना चाहता है। दोनों ममालिक मौजूं तारीख तय करने के लिए एक दूसरे के रबते में हैं और ये तय करेंगे कि चोटी कॉन्फ्रेंस कब मुनक़द की जा सकती है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ भारत के ताल्लुकात सिर्फ दहशतगर्दी, मुखासमत और तशद्दुद से आज़ाद माहौल में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज अपने तहरीरी जवाब में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ सरहद पार दहशतगर्दी की अपनी पॉलिसी पर अमलावरी और दहशतगर्दी का सरकारी पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल जारी रखे हुए है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत ने पुलवामा दहशतगर्द हमले के बाद पाकिस्तान को दिया गया सबसे ज़्यादा पसंदीदा मुल्क MFN का दर्जा वापस ले लिया है और पाकिस्तान में बनने वाली या पाकिस्तान से बरामद की जाने वाली सभी अशिया पर कस्टम ड्यूटी 200% बढ़ा दी है। भारत ने पुलवामा दहशतगर्द हमले के बाद सिंध आबी माहदे को मुलतवी करने, अटारी चेक पोस्ट बंद करने, वीज़ा महदूद करने और मुतालिका मिशनों में सिफारतकारों और अफसरान की तादाद को कम करने समेत मुख्तलिफ सिफारती इकदाम किए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने मजीद बताया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की फौजी कार्रवाई भी की गई है। भारत और श्रीलंका ने आज नई दिल्ली में एक मीटिंग के दौरान बिजली के शोबे में दोतरफा तआवुन का जायजा लिया। इस दौरान भारतीय वफद की क्यादत बिजली, हाउसिंग और शहरी उमूर के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने की, जबकि श्रीलंका के वफद की क्यादत बंदरगाहों, शहरी आवाबाजी और तवानाई के वजीर अनुरा करुणा तिलक ने की। बिजली की वजारत के मुताबिक दोनों वजीरों ने मुजवजा श्रीलंका भारत HVDC इंटरकनेक्शन और सम्पुर शमसी बिजली प्रोजेक्ट समेत जारी दोतरफा पहलों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। दोनों वजीरों ने सरहद पार बिजली की फरोख्त, काबिल तजदीद तवानाई, तरसील के बुनियादी ढांचे और सलाहियत साजी के शोबों में इश्तराक को वसत देने से मुतालिक इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। भारत ने टैरिफ पर मबनी मुसाबिकती नीलामी के फ्रेमवर्क के जरिए तरसील के निज़ाम को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल के तौर पर तैयार करने का अपना तजुर्बा मुश्तरक किया। ब्रिक्स वज़राए तालीम की 13वीं मीटिंग आज भुवनेश्वर में कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुई। इस दौरान इत्तेफाक राय से एलामिए को अपनाया गया। मरकजी वजीर तालीम प्रहलाद जोशी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि ये एलामिया मजबूत इदारा जाती इश्तराक, सलाहियत साजी और मालूमात के इश्तराक के जरिए शमूलियाती, लचकदार और मुस्तकबिल

0: भारत की परिष्मिता गोगोई ने चौथा मुकाम हासिल किया है। ये चैंपियनशिप 14 अगस्त तक जारी रहेगी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने एमएसएमई तरक्याती तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद तेज तर अदायगी और तनाज़ात के जल्द इजाले को यकीनी बनाना है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में पेशरफ्त दहशतगर्दी, मुखासमत और तशद्दुद से पाक माहौल में ही हो सकती है। भारत ने बैनुल अक्वामी समंदर में महफूज और बिला रुकावट जहाज़रानी के अपने अज़्म को दोहराया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं, जिसके दौरान मजमू खरीदारी 20 लाख करोड़ रुपए मालियत से तजावुज कर गई है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और ओडिशा में बहुत शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और एशियाई यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की तितली माझी ने उज्बेकिस्तान में खवातीन के 45 किलोग्राम के जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है साहित्य की

0: साहित्य की। श्रोताओं नमस्कार, साहित्यिकी के आज के इस अंक में आप सुनेंगे डॉक्टर दिनेश प्रसाद शाह की वार्ता बाल साहित्य लेखन की चुनौतियां। इसके बाद आप सुनेंगे राधा कृष्ण की प्रसिद्ध कहानी रामलीला, इसे पढ़कर सुनाएंगे शशर कुमार कर्ण और कार्यक्रम के अंत में काव्य पाठ करेंगे अमिताभ। लेकिन पहले संपादकीय। श्रोताओं, किसी भी देश या समाज के भविष्य का अनुमान वर्तमान को देखकर लगाया जा सकता है। बचपन के निर्माण में जिन चीजों की प्रमुख भूमिका होती है वे हैं परिवार, वातावरण, विद्यालय और बच्चों को पढ़ने के लिए मिलने वाला साहित्य। जिस प्रकार कोई बच्चा या बच्ची समाज के निर्माण का बीज रूप होती है, उसी प्रकार बाल साहित्य भी बालकों को संस्कार और विचार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह बालकों की प्रारंभिक अवस्था से ही उनके मन, विचार और कल्पना को परिमार्जित करते हुए समाज और राष्ट्र के भावी स्वरूप की पृष्ठभूमि तैयार करता है। आज बच्चों का जीवन मोबाइल, इंटरनेट आदि से ग्रस्त है। वे किताबों से दूर होते जा रहे हैं, उनकी रुचि पुस्तकों के प्रति घट रही है। यह इस दौर की सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में बाल साहित्यकारों का दायित्व तो बन जाता है कि वे बच्चों के लिए कुछ हटकर सोचें। वे ऐसी रचना करें जिससे बच्चे पत्र पत्रिकाओं की ओर आकर्षित हों। बच्चे हैं तो कल है, बिना बच्चों के घर सूना सूना लगते है। तात्पर्य, भावी पीढ़ी के चरित्र निर्माण में बाल साहित्य की भूमिका को नकारा नहीं जा सकते है। संपादकीय के बाद साहित्यिकी में लीजिए प्रस्तुत है डॉक्टर दिनेश प्रसाद शाह की वार्ता बाल साहित्य लेखन की चुनौतियां।
1: बाल साहित्य मात्र खेल और मनोरंजन का सूचक नहीं। कुछ समय पूर्व तक अभिभावकों और शिक्षकों को यह भ्रम था कि पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य विषयों पर साहित्यिक सामग्री का पठन मात्र समय का अपव्यय है, जबकि बाल साहित्य का विशेष महत्व और उपयोगिता है। संसार के अनेक विकसित देश बाल साहित्य के प्रकाशन को राष्ट्रीय महत्व देते हैं। स्वस्थ बाल साहित्य में उन्हें अपने देश का भविष्य झांकता दिखाई देता है। किसी विदेशी विद्वान का मानना है कि किसी देश की उन्नति उस देश में प्रकाशित बाल साहित्य से आंकी जा सकती है, यानी देश विशेष के समाज के लिए यह थर्मामीटर का काम करती है। विदेशों में बाल लेखकों को बाल साहित्य के लेखन में ही उनके देश और समाज की शिक्षा और संस्कृति की झलक दिखाई देती है। सभी विकसित देशों में बाल साहित्य और बाल साहित्यकार को विशेष महत्व और सम्मान दिया जाता है। इंग्लैंड के सभी स्थापित साहित्यकारों ने बच्चों के लिए कुछ न कुछ

अवश्य लिखा है। उन्होंने प्रेरक बाल साहित्य को प्राथमिकता दी है। फ्रांसीसी लेखकों ने संघर्ष से जूझने की प्रेरणा दी है। अमेरिका में विज्ञान बाल साहित्य पर विशेष बल दिया जा गया है। इसी प्रकार जापान और जर्मनी इत्यादि अनेक देशों ने अपने अपने देशों के राष्ट्रहितों को ध्यान में रखकर बाल साहित्य की प्राथमिकता सुनिश्चित की है। विश्व की श्रेष्ठ बाल रचनाओं को बच्चों ने सराहा है। विश्व की महान कृतियों में पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियाँ, जातक कथाएँ, ईसप की कहानियाँ, रॉबिन्सन क्रूसो, गुलिवर की कहानियाँ, एलिस इन द वंडरलैंड आदि रचनाओं का नाम लिया जाता है। ये रचनाएँ बहुत पुरानी हैं, तथापि इनकी सार्थकता आज भी बनी हुई है। इन रचनाओं में सुरुचि संपन्नता के अतिरिक्त नीति, सूझबूझ, काल्पनिकता, जिज्ञासा और साहसिकता का परत दर परत भरी पड़ी है। इन रचनाओं का विश्व की अनेक भाषाओं में रूपांतरण और अनुवाद हो चुका है। इनकी लाखों प्रतियां छपती और बिकती हैं। बालक को भाव, संवेदना और ज्ञान के स्तर पर संपूर्ण बालक बनाने की आवश्यकता है। इसी में बाल साहित्य की उपयोगिता और उपादेयता है। रूसी विद्वान कांसिल का कहना है कि बाल पुस्तक को शिक्षा और मनोरंजन का कोष होना चाहिए। वैसे भी बाल साहित्य को ज्ञान और मनोरंजन का संवाहक माना जाता है। पुस्तक एक खजाना है, एक कोष है, जिसमें वह अपने जीवन के विभिन्न संदर्भों और अर्थों को जानता और पहचानता है। रंग बिरंगी, रोचक और आकर्षक पुस्तकें उसके सच्चे मित्र और साथी होते हैं, जिनसे वह प्रेरणा के अतिरिक्त जीवन मूल्यों को भी अपनाता है। बाल साहित्य एक ऐसी पाठशाला है जिसका शिक्षक और शिक्षार्थी बालक स्वयं होता है। बाल साहित्य का सच्चा निर्णायक और मूल्यांकक बालक स्वयं ही होता है। आज का बाल साहित्यकार पारंपरिक कथाओं के मकर जाल से आगे नहीं निकल पा रहा है। समय बदल गया है, फिर भी आज बहुत सारे लेखक पौराणिक कहानियों, लोक कथाओं, परिकथाओं तथा राजा रानी संदर्भित कहानियों तक ही अपने को सीमित किए बैठे हैं। यदि उन्हें ऐसे साहित्य से अगाध स्नेह है तो उनसे निवेदन होगा कि वे इन कथाओं को आज के संदर्भ में प्रस्तुत करें। इन पारंपरिक कथाओं की प्रस्तुति आवश्यक है, फिर भी इनसे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बालक अपने वर्तमान जीवन से संबंधित संदर्भों से अधिक ग्रहण कर सकेगा। आज का बाल लेखक अपने को बच्चों की रुचियों और आवश्यकताओं से उतना नहीं जोड़ पा रहा है जितना उसे जोड़ना चाहिए। बच्चों के प्रति उसे और भी अधिक समर्पित होना पड़ेगा। कुछ लेखक इन पारंपरिक कथाओं से आगे निकलते हैं तो वे प्राकृतिक परिवेश और पशु पक्षियों तक सीमित हो जाते हैं। घर परिवार, पास पड़ोस तथा पशु पक्षी बच्चों के मनोवांछित विषय हैं, फिर भी संदर्भ, शैली और प्रस्तुति की दृष्टि से इस दिशा में बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है। संभावनाएं उज्ज्वल हैं, पर्याप्त प्रयास और प्रयत्न की आवश्यकता है। आज का युग विज्ञान का है, विकास और प्रगति का है। जीवन के विचार और व्यवहार में भी वैज्ञानिकता की आवश्यकता है। वैज्ञानिक पृष्ठभूमि में ऐसे ज्ञानपरक बाल साहित्य की आवश्यकता है जो बच्चों को उनके जीवन में नई दिशा दे, उन्हें स्वस्थ समाज का सफल नागरिक बनाए। श्रेष्ठ, उपयोगी और सुरुचिपूर्ण बाल साहित्य का लेखन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। सुविचारित एवं सुनियोजित बाल साहित्य के सृजन और प्रकाशन की आवश्यकता है। स्वस्थ साहित्य के निर्माण द्वारा लेखक बच्चों के समक्ष परिस्थितियों का ताना बाना बुनता है और उसे स्वयं के निर्णय लेने की स्थिति उत्पन्न कर देता है। लेखक के ताने बाने से बालक जो कुछ निष्कर्ष निकालता है वह अमिट और अस्थायी प्रभाव डालने वाला होता है। साहित्य एक माध्यम और मंच है जिससे बच्चों को दिशा संकेत मिलता है। यह संकेत प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उसके मन पर अस्थायी प्रभाव डालता है और यह प्रभाव उसके संस्कार निर्माण में सहायक होता है। इस बिंदु पर बाल साहित्यकार का दायित्व और भी बढ़ जाता है। वह जिस आयु वर्ग के बच्चों के लिए रचना प्रस्तुत करता है, लेखक को भी उसी आयु का बालक बन जाना होता है। उसी के परिवेश में, उसी की दृष्टि के अनुरूप, उसी की भाषा में तर्क वितर्क प्रस्तुत करना चाहिए। लेखक द्वारा मूल्य अथवा संदेश का संप्रेषण भी बहुत तर्क सम्मत होना चाहिए। बाल लेखक को बाल मन के साथ सामंजस्य बनाना होता है। बाल साहित्य के माध्यम से ज्ञान के असीम भंडार को बच्चों के समक्ष रखा जाता है। बाल साहित्य का उद्देश्य बालकों का बौद्धिक विकास, उसकी मानसिक परितुष्टि और मनोरंजन के साथ साथ

0: उनकी आंतरिक शक्तियों का विकास करना है। साहित्य जीवन का सत्य होता है जो युग द्वारा प्रभावित होकर युग को भी प्रभावित करता है। बाल साहित्य बच्चों को जीवन, समाज और मानवीय मूल्यों से जोड़ता है। बाल साहित्य के माध्यम से विभिन्न देशों की परस्पर संस्कृति का आदान प्रदान होता है, विश्व समाज की दूरी कम होती है। बाल साहित्य अपने में एक विधि है जिसके द्वारा बच्चों को सामाजिक जीवन की आवश्यकता, उसका महत्व एवं विभिन्न मानवीय सामाजिक मूल्यों का ज्ञान होता है। बाल साहित्य लेखन के समय बच्चों के आयु सीमा अथवा वय वर्ग पर भी लेखकों का पूरी तरह ध्यान होना चाहिए। बच्चों की आयु के अनुसार उनका मानसिक विकास क्रम अलग अलग होता है। बच्चों की रुचि, उनकी योग्यता, उनका भाषा ज्ञान और उनकी मानसिक प्रवृत्ति और आकांक्षा अलग अलग होती है। किस वय वर्ग के लिए रचना करनी है यह लेखक को पहले ही सुनिश्चित कर लेना चाहिए। जो बाल लेखक अपने लेखन के पूर्व वय वर्ग सुनिश्चित कर लेते हैं, मेरा अनुमान है उन्हें अपने लेखन में अधिक सफलता मिलती है। बाल लेखन में इस बिंदु का विशेष महत्व है। वय वर्ग की दृष्टि से बाल साहित्य को चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। 3 से 5 वर्ष का वय वर्ग, 6 से 8 वर्ष का वय वर्ग, 9 से 12 वर्ष का वय वर्ग और 13 से 15 वर्ष का वय वर्ग। प्रत्येक वय वर्ग के बच्चों की सोचने, समझने और बोलने एवं उनकी भाषाई क्षमता अलग अलग होती है। भाषा के प्रयोग और व्यवहार में भी अंतर होता है। अतः वय वर्ग को दृष्टि में रखकर लिखने का अपना अलग ही महत्व है। श्रेष्ठ बाल साहित्य लेखन निसंदेह अपने आप में एक चुनौती है। सीमाओं, परिसीमाओं के बीच बड़ी सजगता के साथ लेखक अपने लेख के दायित्व का निर्वाह करता है। मेरे विचार से बाल साहित्य अपने आप में एक आंदोलन है जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर विभिन्न दायित्वों का अपने अपने ढंग से निर्वहन होना आवश्यक है। श्रेष्ठ बाल साहित्य के प्रणयन, प्रस्तुति और सफलता के लिए लेखक, चित्रकार, प्रकाशक, वितरक, अध्यापक और अभिभावक को अपने अपने ढंग से अपने अपने दायित्वों का निर्वाह करना होगा। इसे एक भागीरथी प्रयास भी कहा जा सकता है। बाल लेखक को चाहिए कि वह बच्चों की रुचि, उसके मानसिक विकास, बौद्धिक क्षमता, सामाजिक संदर्भ तथा वय वर्ग को ध्यान में रखते हुए बाल साहित्य का सृजन करे। चित्रकार से अपेक्षा है कि वह विषय संदर्भित आकर्षक और सुरुचिपूर्ण चित्रों को चित्रित करे। जितने छोटे आयु वर्ग के लिए पुस्तक होगी, चित्रकार का दायित्व उतना ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरे विचार से लेखक और चित्रकार का लगभग एक जैसा ही दायित्व होता है। प्रकाशक से अपेक्षा है कि वह मात्र अपने अर्थ लाभ से प्रेरित न होकर कम मूल्य पर रोचक, उपयोगी और आकर्षक पुस्तक प्रकाशित करे। वितरक से अपेक्षा है कि वह पुस्तक का भरपूर प्रचार प्रसार करे और दूर दूर तक बाल पाठकों तक पुस्तकें उपलब्ध कराएं। अध्यापक से अपेक्षा है कि वह विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त बाल साहित्य के पठन हेतु प्रेरित करें। शिक्षा नीतिकारों से भी बच्चों के वास्ते यह सोचना होगा कि बस्ते का बोझ वह कम करते हुए अतिरिक्त पठन के अंतर्गत बाल साहित्य के पठन पाठन पर पर्याप्त बल देने की अपेक्षा रखें। इसी बिंदु पर अभिभावकों का भी महत्वपूर्ण दायित्व हो जाता है कि वे अपने बच्चों को मात्र विद्यालय शिक्षा तक सीमित और केंद्रित न करते हुए बच्चों को बाल साहित्य तथा बाल पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। बच्चों के लिए बाल साहित्य वस्तुतः मानसिक भोजन का कार्य करता है। बाल साहित्य अधिक से अधिक विधाओं में होना चाहिए। विभिन्न विधाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के अनुभव और प्रेरणा प्राप्त होते हैं। बालक कविता से मुग्ध होता है, कहानी से उसका मनोरंजन होता है, नाटक से अनुकरण प्रवृत्ति का विकास होता है, जीवनी से प्रेरणा मिलती है, रेखाचित्र से कल्पना, डायरी से उत्साह, पत्र और यात्रा वृत्त से अनुभव एवं लेख से वैचारिकता उत्पन्न होती है। यह एक प्रेरणा स्रोत है जिससे नित्य नई नूतन दृष्टि बालकों को प्राप्त होती रहती है और बालक का विकास होता रहता है।
1: बाल साहित्य लेखन की चुनौतियां, अभी आपने डॉक्टर दिनेश प्रसाद शाह की ये वार्ता सुनी। और अब राधा कृष्ण की प्रसिद्ध कहानी रामलीला, इसे पढ़कर सुना रहे हैं शशिर कुमार कार्ड।
2: पेशा में कोई पेशा हुआ भी तो रामलीला का दल रखने का पेशा हुआ। दुकानदारी का पेशा होता, जमींदारी होती, महाजनी होती, कोई भी कैसा भी पेशा होता तो एक बात थी, मगर रामलीला का दल रखने का पेशा, सो भी एक खानदानी पेशा है। 7 पुश्तों से रामलीला का दल चला आता है और रामरतन जरा आधुनिक बुद्धि का आदमी है, सो अपने पेशे को पसंद नहीं करता, मगर खानदानी चीज़ है रामलीला, वो छोड़ नहीं सकता, अपना दल तोड़ नहीं सकता। मगर ये जो एरा गैरा

नत्थु खेरा आकर राम बनते हैं, लक्ष्मण बनते हैं, वशिष्ठ और विश्वामित्र बन जाते हैं, सो राम रतन को पसंद नहीं। यह इस प्रकार राम की पैरोडी हो जाती है, लक्ष्मण का उपहास हो जाता है, राजा दशरथ की मिट्टी पलीद हो जाती है और महाज्ञानी वशिष्ठ के मुंह से ज्ञान के बदले अज्ञान ही ज्यादा निकलता है। सो रामरतन रामलीला के इस पुराने ढर्रे में परिवर्तन करेगा। और वो रामरतन 5 दिन से परेशान है। वह कोई ऐसा बालक खोज रहा है जो राम का चरित्र करे। वह किसी ऐसे ही सांवले सलोने बालक की खोज में घूम रहा है, तमाम जगह ढूंढ आया है, लेकिन रामरतन को ऐसा बालक नहीं मिलता। जो देखने में आते हैं वे जी को जंचते नहीं, सब में एक दो त्रुटियां अवश्य सामने आ जाती हैं। वैसा बालक मनचाहा नहीं मिलता, न जाने मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। 5वें दिन रामरतन निराश हो गया। जब राम ही नहीं तो रामलीला भी नहीं। वो थक गया शरीर से मन से भी। उसे लगा जैसे वो कूड़े के अंदर शालिग्राम ढूंढ रहा है, भला कहाँ मिलेगा। उसे लगा कि इतनी बड़ी धरती पर वो सबसे ज़्यादा लाचार प्राणी है, उसकी परेशानी में कोई उसका सहारा नहीं बन सकता। भला ये रामलीला का दल क्या हुआ, परेशानियों का भंडार हो गया। वो थककर पार्क की एक बेंच पर बैठ गया। अगर राम का चरित्र करने वाला बालक नहीं मिला तो फिर रामलीला कैसे होगी। सहसा वह देखता है एक वैसा ही अबोध, वैसा ही भोला, निर्मल निश्चल सांवला सलोना बालक पार्क में तितलियों के पीछे दौड़ रहा है। कौन लड़का है, किसका लड़का है? अगर ये राम का चरित्र करे तब तो फिर कुछ कहना ही नहीं। उसने बालक को बुलाया, अपने पास बिठाकर उससे तरह तरह की बातें पूछने लगा। लड़के ने कहा, मेरे पिता नहीं, मेरी माँ है, और वो क्या करती हैं सो मैं नहीं जानता। घर में 3 गायें हैं, माँ उसका दूध दुहती हैं, एक ग्वाला आकर उसका दाम दे जाता है। हमारे एक मामा हैं सो बड़ी दूर रहते हैं, रंगून कहाँ है जानते हो? हमारे मामा वहीं नौकरी करते हैं। जब वे आएंगे और एक रबर की गेंद लाएंगे, वे मेरे लिए कोट भी सिला देंगे और हाफ पैंट भी खरीद देंगे, फिर कोई तकलीफ नहीं रहेगी। इस बालक को पाकर राम रतन ने मानो आसमान का चांद पा लिया। राम के लायक ऐसा बालक मिलना असंभव था। थोड़ी देर के बाद वह उस बालक की माँ के सामने खड़ा था और उसकी शंकाओं का समाधान कर रहा था। उसकी माँ की जो हिचक थी सो रुपयों की आवाज़ सुनते ही मिट गई। राम रतन ने बालक से पूछा, क्यों भाई, राम का चरित्र करोगे ना? करूँगा, बालक ने सरलता से जवाब दिया। तीर चलाकर तब तुम ताड़का कैसे मारोगे? बालक ने छोटी सी धनुही से तीर का ऐसा सरल संधान किया कि रामरतन खुशी से निहाल हो उठा। ऐसा बढ़िया राम का प्रतिरूप है। और दूसरे ही दिन से रामलीला में दर्शकों की भीड़ तिगुनी चौगुनी होने लगी। ये बालक राम के रूप में अभिनय को सार्थक कर रहा था। फिर 22 वर्ष व्यतीत हो गए। इतने दिनों की बड़ी लंबी अनेकानेक कहानियां हैं। रामरतन की रामलीला पार्टी आज भारतवर्ष में विख्यात है। पार्टी के पास धन है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, मगर फिर भी रामरतन को शांति नहीं। अब उसकी पार्टी ग्वालियर में आई है। महाराज ने खास तौर पर उसकी रामलीला पार्टी को निमंत्रण दिया है। लोग उत्सुक हैं, मगर रामरतन जानबूझकर 15 दिनों से देर कर रहा है। उसके पास रावण की कमी है। जो व्यक्ति रावण का काम करता था वो रामरतन को पसंद नहीं। उस रावण के भयानक चेहरे पर क्रोध था, हिंसा थी, उसके भारी गले से कर्कश आवाज निकलती थी। हाँ, ऐसा रावण ही जगत माता जानकी का हरण कर सकता है। और आखिर ऐसा ही एक व्यक्ति उसे एक शराब खाने में दिखाई दिया। उसके चेहरे पर अभिमान और क्रूरता थी, कर्कश कंठ से गालियों की बौछार निकल रही थी। दुकानदार से वह मुफ्त में शराब के बदले बेशुमार गालियों का विनिमय कर रहा था। हाँ, यही व्यक्ति है जो चाहे तो रावण बनकर सचमुच सज सकता है। चेहरे पर कैसी भयानकता है, आंखों में कितना कमीनापन है। ये साधु का कपट वेश धारण करके सीता के पास जाएगा तब भी मनवाणी और रूप की भयानकता नहीं मिटेगी।

0: देखते ही लोग कह देंगे यही रावण कपटी बदमाश। रामरतन आगे बढ़ गया और दुकानदार के सामने चवन्नी फेंक कर बोला, भाई मेरी ओर से इन्हें पिला एक बोतल। ऐं, रावण की प्रतिच्छवि वाला व्यक्ति बोला, तू तो बड़ा दयावान है यार, बतला मैं तेरा क्या काम करूं, तू मुझसे क्या काम लेगा। रामरतन ने कहा, मेरी एक रामलीला पार्टी है, मैं उसमें तुम्हें रावण का चरित्र देना चाहता हूं। रावण? अच्छा, मैं करूंगा। और सचमुच उसके बाद रावण का काम सबसे अच्छा हुआ। रामलीला समाप्त होने पर रामरतन ने उससे पूछा, बोलो आज पुरस्कार में मैं तुम्हें क्या दूं। रावण ने कहा, मैं आपसे पहले भी बहुत कुछ पा चुका हूं, अब आज क्या मांगूं। पहले? रामरतन ने आश्चर्य से कहा, मैंने आपको पहले दिन ही पहचान लिया था। उस आदमी ने कहा, मैं वही आदमी हूं जो लड़कपन में आपके यहां राम का चरित्र करता था, उसके बाद मेरे मामा आकर मुझे आपसे ले गए। याद कीजिए, मैं वही आदमी हूं, कभी आपके यहां मैं राम बनता था, याद आया? हां, रामरतन को अब सब याद आ गया। रावण के उस भयानक चेहरे के भीतर से रामरतन को राम की वही सांवली सलोनी निर्मल छवि फूटती हुई सी दिखाई पड़ी। वह आश्चर्यचकित होकर बोल उठा, हाँ तुम वही राम हो, मुझे याद आ गया, तुम वही राम हो।
1: अभी आप सुन रहे थे राधा कृष्ण की प्रसिद्ध कहानी रामलीला, वाचन स्वर शिशिर कुमार कर्ण का था। और अब अमिताभ की कुछ काव्य रचनाएं।
2: लीची। कहीं भी रहूं, लीची मुझे मेरे बचपन में रोसड़ा ले जाती है। जब घर के पीछे सियार बोलता और मैं डर से कांपता था। कहीं भी रहूं, लीची मुझे मेरे बचपन में रोसड़ा ले जाती है। जब घर के पीछे सियार बोलता और मैं डर से कांपता था। अमेरिका से सूखे दूध की बोरियां आती, चपरासी मुझे कंधे पर लादकर मेला ले जाता। विशाल बरगद के नीचे बकरे की बलि दी जाती, विशाल बरगद के नीचे बकरे की बलि दी जाती। खून से धरती लाल हो जाती, बहुत सारा मांस हमारे घर आता, बहुत सारा मांस हमारे घर आता। खुली गुमटी पर चरवाहे कट जाते, खुली गुमटी पर चरवाहे कट जाते, गाय कट जाती। धड़ से अलग हाथ पैर मुंड देखकर, धड़ से अलग हाथ पैर मुंड देखकर नींद गायब हो जाती। गेंदे के फूलों का बाग कुछ दूर तक साथ चलता, गेंदे के फूलों का बाग कुछ दूर तक साथ चलता। बारिश के बाद की धूप में, बारिश के बाद की धूप में चमकती पेड़ पर लदी लीचियाँ मेरा सारा डर चूस लेती, बारिश के बाद की धूप में चमकती पेड़ पर लदी लीचियाँ मेरा सारा डर चूस लेती। कहीं भी रहूं, लीची मुझे मेरे बचपन में रोसड़ा ले जाती है। दूसरी कविता है कुबौल में। कुबौल गांव में मुझे पता चला कि गाय बैल अगर 5 दिनों तक लगातार पानी में खड़े रहें तो उनके खुर इस तरह सड़ जाते हैं कि बाद में उनकी मौत हो जाती है। कुबौल गांव में मुझे पता चला कि गाय बैल अगर 5 दिनों तक लगातार पानी में खड़े रहें तो उनके खुर इस तरह सड़ जाते हैं कि बाद में उनकी मौत हो जाती है। कुबौल गांव में मुझे पता चला कि दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट की 2 दुकानों की कमाई से गांव में 50 कमरों वाली कोठी बनाई जा सकती है। कुबौल गांव में मुझे पता चला कि दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट की 2 दुकानों की कमाई से गांव में 50 कमरों वाली कोठी बनाई जा सकती है। कुबौल गांव में मुझे पता चला कि एक बड़े गांव में इतने छोटे छोटे काम होते हैं कि वह 70 पार कर चुकी करीब 125 विधवा औरतों को औलादों द्वारा छोड़ दिए जाने के बावजूद सालों जिंदा रख सकता है। कुबौल गांव में मुझे पता चला कि एक बड़े गांव में इतने छोटे छोटे काम होते हैं कि वह 70 पार कर चुकी

0: कि करीब 125 विधवा औरतों को औलादों द्वारा छोड़ दिए जाने के बावजूद सालों जिंदा रख सकता है। कुबौल गांव में मुझे पता चला कि बूढ़ी विधवाएं परदेश जा बसे निर्दयी बच्चों से अंत तक मदद की उम्मीद नहीं छोड़ती। कुबौल गांव में मुझे पता चला कि बूढ़ी विधवाएं परदेश जा बसे निर्दयी बच्चों से अंत तक मदद की उम्मीद नहीं छोड़ती। उनकी छुट्टियों और पर्व त्योहारों पर मिलने की आस कभी नहीं मरती। उनकी छुट्टियों और पर्व त्योहारों पर बच्चों से मिलने की आस कभी नहीं मरती। वे बिना रोए गाए और आपा खोए आदमी की निष्ठुरता का घंटों बखान कर सकती हैं। कुबौल गांव में मुझे पता चला कि इंसान मरने के पहले तक यह समझने की कोशिश करता है कि आखिर कौन सी बुरी शक्तियां हैं जिन्होंने उनके बच्चों को इतना निर्दयी बना दिया है। कुबौल में मेरी माँ हिंदू थी। वह पूजा पाठ उपवासों का अनंत सिलसिला थी। जात पात भी करती ही थी जितना कर सकती थी। दो बार ऐसा हुआ कि एक चमार औरत की दो नवजात मरे हुए बच्चों को दफना कर आया और कड़ी ठंड में बिना नहाए माँ ने अंदर नहीं घुसने दिया। 17 साल में दोनों बेटियों को ब्याह दिया, जाति कुल गोत्र का भी ख्याल रखा। वह मुसलमानों के लिए घर में अलग बर्तन रखती थी मगर उनसे नफरत नहीं करती थी। उसके पास इतनी सत्ता नहीं थी कि वह सांप्रदायिक हो जाती। वह पढ़ी लिखी नहीं थी मगर अफसर की बीवी वाला रौब उसमें था। बात न सुनने वाले चपरासियों की तरफ वह देखती भी नहीं थी। आज्ञाकारी चपरासियों से वह दुनिया जहान की बातें करती, उनके बाल बच्चों के बारे में भी पूछती। नौकरानियों की वह मालकिन थी। एक साथ चतुर, कंजूस और काम निकालने वाली उदारता से भरपूर, वह हर वक्त अपने शोषण के खिलाफ आसमान सर पर उठाए रखती, हाथ खड़े कर देती, रजाई में घुसकर सो जाती, घड़ी ड्रेसिंग टेबल के लिए रूठ जाती, उसे सुंदर देखने की फिक्र रहती। अगर हफ्ते भर वह घर से बाहर नहीं निकल पाती तो उसका दम फूलने लगता। पति तो क्या वह बच्चों के लिए भी निर्विकार, समर्पित या सेल्फलेस नहीं थी? फूलों जैसी तो वह बिल्कुल नहीं थी जिसे गुलदस्ते में सजाकर पेश करूं। वह अक्सर झूठ बोलती थी और हमें झूठ बोलने से मना करती थी। हिंदी कविता का मसाला तो जी वह बिल्कुल नहीं थी।
1: अभी आप सुन रहे थे काव्य पाठ अमिताभ से। इसी के साथ है साहित्य के कार्यक्रम का आज का ये अंक अब समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता कुसुमाकर दुबे के साथ अमलानाथ ठाकुर को दीजिए विदा। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे साहित्य की, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।
3: भोर होते उठ जाओ किएक तक इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत फूल प्रकृति में घोराए लगत ऊर्जा आबा वाला काल लेल
4: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
5: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है, आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खाब की।
6: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
7: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी।

कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक कई क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, पेश है फिल्म संगीत। कहते हैं जब आसमान पर बादलों का पहरा हो और ठंडी बयाड़ में दिलों की धड़कनें मचलने लगे, तो समझ लीजिए कि संगीत की रुत आ गई है। आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसे सुरेले सफर पर जहां प्यासी जमीन और तड़पते दिलों की आवाज़ बादलों से गुहार लगाती है।

सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म प्यासा सावन में। संतोष आनंद के लिखे इस गाने को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। राहों में नजरें बिछाए बैठे हैं कब से, किसी अपने का इंतजार है दिल को, और जब बात दिल की आरजू की हो तो तन्हाई का यह आलम और भी खूबसूरत हो जाता है।

महेंद्र कपूर और सलमा आगा को अभी आप सुन रहे थे फिल्म निकाह में। हसन कमाल के लिखे इस गाने को संगीत दिया था रवि ने। अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म उमराव जान से, आशा भोसले की आवाज में।

जब चाहत दूरियों की मोहताज नहीं रहती और याद ही जीने का सहारा बन जाती है, तब दिल कुछ ऐसा ही कहता है।

सावन को आने दो। इस फिल्म का ये गाना भी आप सुन रहे थे यशुदास की आवाज में। इंडिवर के लिखे इस गाने को संगीत दिया था राज कमल ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। जिंदगी के सफर में रास्ते कभी सुनसान नहीं होते। कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो यादों का कारवां बन जाती हैं।

पाकीज़ा फिल्म का ये गाना भी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। कैफी आज़मी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था गुलाम मोहम्मद ने। अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आहिस्ता आहिस्ता से, भूपिंदर सिंह और आशा भोसले की आवाज़ों में।

निकाह फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर, आशा भोसले और सलमा आगा की आवाजों में। हसन कमाल के लिखे इस गाने को संगीत दिया था रवि ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म राजकुमार से, मोहम्मद रफी की आवाज में। शैलेंद्र के लिखे इस गाने को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

मोहम्मद रफ़ी को अभी आप सुन रहे थे फिल्म राजकुमार में। हसरत जयपुरी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक

0: को पारित किया एक रिपोर्ट।
1: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है।
2: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पर पिछले 10 वर्षों में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से मैं बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। राजस्थान के जयपुर में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की 16वीं बैठक आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। बैठक में ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व व्यापार संगठन के नियमों पर आधारित निष्पक्ष और विकासोन्मुख व्यापार व्यवस्था का समर्थन करता है। उन्होंने विकासशील देशों के खाद्य सुरक्षा हितों की रक्षा पर भी जोर दिया। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, माही और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी बारिश, गरज और बिजली कड़कने की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 has been passed by the Parliament, with the Lok Sabha approving it today. Rajya Sabha had